एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। श्रोताओं, आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः की 5:56 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं। हिंदी समाचार थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य

0: आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश पांच प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार अभी हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 6:05 हुए हैं। जो पेश है देश वंदना और भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। स्वर्ग से प्यारा देश हमारा सबकी आंखों का तारा है। सच कहें तो प्राणों से बढ़कर ये हमको प्यारा है।

ब्रज सरवरी का लिखा और संगीतबद्ध किया भक्ति गीत आपने सुना अनुजा सिन्हा की आवाज में। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं।

निर्देशन सुरिंदर कोहली का था। आराधना कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, मनुष्य के जीवन की परिस्थितियां केवल भाग्य का परिणाम नहीं होती, बल्कि उसके विचारों, कर्मों और मनोभावों से निर्मित होती है। जैसा हमारा चिंतन होता है, वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बनता है और वैसा ही जीवन का परिवेश भी बनने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि जैसी मन स्थिति वैसी परिस्थिति। यदि हमारे विचार सकारात्मक, कर्म श्रेष्ठ और संकल्प दृढ़ हैं तो विपरीत परिस्थितियां भी धीरे धीरे अनुकूल बनने लगती हैं।

जितेंद्र रघुवंशी की भक्ति रचना आपने सुनी, हरविंदर बब्बी के संगीत निर्देशन में, मधु गिरित्रा और साथियों के स्वर में। आइए सुनिए आराधना कार्यक्रम में आखिरी भक्ति रचना।

खेती अब पशु के संतुलन पोषण के महत्व संगी हुआ। जैसे कि जाना था आप सब, दूध देवैया गाय हुए, भैंस हुए या दूसरा दुधारू पशु, वो मन के बढ़िया स्वास्थ्य और ज्यादा उत्पादन के आधार सिर्फ दाना पानी नहीं हुआ, बल्कि संतुलित पोषण और साल भर के हरा चारा के उपलब्धता तक आए। तो चलो आज के जानकारी ल विस्तार से जानी। हमारे देश में संगी हुआ खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरा खवाए। खेती ले अनाज मिलते तब पशुपालन ले दूध गोबर जैविक खाद और अतिरिक्त आमदनी मिलते। फिर जोन बात ऊपर कई किसान मन ध्यान नहीं देवाए चेत नहीं कराए वो है पशु मन के सही पोषण। बहुत किसान भाई मन सिर्फ भूसा या पैरा खवा के सोचते हैं कि पशु के जरूरत पूरा हो गए, फिर ये बात सही नो है। जैसे मनखे मन पर संतुलित भोजन जरूरी होते है न भाई, मने हमन हमेशा कथन के भोजन के थाली में दाल रहे रोटी रहे चावल रहे हरा सब्जी रहे दूध रहे दही, मतलब संपूर्ण संतुलित आहार हमार थाली में होना चाहिए। वैसा ही पशु मन पर घलो संतुलित आहार जरूरी होते। तो संतुलित आहार में का होना चाहिए और काबर होना चाहिए आवा एला जानी। पशु के भोजन में हरा चारा सूखा चारा दाना मिश्रण खनिज लवण और साफ पानी ये पांचों चीज के संतुलित मात्रा होना जरूरी है। का एक बार और सुना, हरा चारा सूखा चारा दाना के मिश्रण वाला दाना और खनिज लवण और साफ पानी। हरा चारा में प्रोटीन विटामिन और खनिज तत्व भरपूर रहते, एखर सेवन ले पशु के पाचन बढ़िया रहते, दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ते, प्रजनन क्षमता तको सुधरते और बीमारी कम होते। अब सवाल उठते कि किसान मन साल भर हरा चारा कैसे पाही, तो भाई ए बार अपन खेत के कुछ हिस्सा हरा चारा खेती पर रखना चाहिए। बरसात के मौसम में तो ज्वार मक्का बाजरा लोबिया जैसा चारा फसल लगाए जा सकते है, और जाड़ के मौसम में बरसीम जई और रिजगा की खेती बहुत लाभदायक होते। अगर किसान साल भर हरा चारा चाहते तो नेपियर बाजरा शंकर घास जैसा बहुवर्षीय हरा चारा होते ओला आप मन लगा के एकर 12 महीना हरा चारा ले सका था। हरा चारा के खेती ले किसान मन के दाना पर होए वाला खर्चा कलो कम हो जाते है। जैसे कि हमन गरुआ वाला दाना खवा था ना, तो यदि आप हरियर चारा खिलाहा तो अलग से दाना खिला के जरूरत नहीं पड़े। अब बात करा था साइलेज के, तो बरसात के समय जब हरा चारा ज्यादा हो जाते तो ओकर साइलेज बना के रख सकते हैं। साइलेज का होते, साइलेज मतलब होते हरा चारा ला वैज्ञानिक तरीका ले सुरक्षित रखे के तरीका। जो उन समय हरा चारा के कमी हो जाही वो समय आप साइलेज जो बना के रखे रही है वो आप हरा चारा के रूप में खवा सका था गरुआ मल्ला। अब जानो के पशु मल्ला कतका पानी चाहिए, तो दुधारू गाय या भैंस ला दिन में 50 से 80 लीटर तक साफ पानी के जरूरत पड़ते। पानी के कमी ले दूध उत्पादन तुरंत कम हो जाते, तो एक बार जितका ओला पानी के आवश्यकता है उतका जरूर पियावा। संगी हुआ पशु मतलब रोजाना खनिज मिश्रण और नून जेला हम नमक भी कहते हैं जरूर देवाओ। एक उत्पादन बढ़ते हड्डी मजबूत रहते और गाय मन में गर्भ धारण की समस्या जो रहती है कम हो जाते। बहुत जन किसान मन दाना तो देते फिर खनिज मिश्रण नहीं देवाए, एक गलती ले नुकसान हो सकत है। और एक दूसरा जरूरी बात है, चारा ला एक बेर ज्यादा मात्रा में नहीं देना है, बल्कि दिन भर में 2-3 बेर थोड़ थोड़ करके देवा। एकर से कारत है पाचन बढ़िया रहते। अगर हरा चारा खवावा थावा तो ओकर संग सूखा चारा घलो देवा। सिर्फ हरा चारा या सिर्फ सूखा चारा दोनों सही न है, तो दोनों ला मिंझार मिंझार के खवावा। अगर पशु दूध देवा थे तो ओका दूध उत्पादन के हिसाब ले दाना मिश्रण की मात्रा भी तय कर देना चाहिए कि अतका अतका दाना मिला के ओला खवाबो करके। और जो गर्भवती पशु मल्ला आखिरी 2 महीना में विशेष पोषण देना जरूरी होते, कर ले स्वस्थ बछड़ा पैदा होते और आगे जो नो गाय है दूध दी ओकरो उत्पादन बढ़िया बढ़ जाते। तो संगी हुआ आज के समय में पशुपालन सिर्फ परंपरा नो है बल्कि कमाई के बढ़िया साधन बन गए। अगर हम सही नस्ल सही पोषण और सही समय में टीकाकरण ऊपर ध्यान देवो तो दूध उत्पादन तो बढ़ी और आमदनी घलो बढ़ी। तो याद रखो हरा चारा है सस्ता आहार, संतुलित पोषण है बढ़िया और उत्पादन के आधार। तो जौन किसान अपन खेत में साल भर के चारा योजना बनाते ओला बाजार ले महंगा चारा खरीदे के जरूरत कम पड़ते। तो संगवारी हुआ खेती के बाद कार्यक्रम में हम आज जाने के चारा खेती और पशु मन के संतुलित पोषण ले दूध उत्पादन और पशु के स्वास्थ्य और किसान के आमदनी

0: चेतन कृष्ण मल्होत्रा का गाया और संगीतबद्ध किया भक्ति गीत आपने सुना। इसे लिखा था प्रमोद कुमार शर्मा ने और इसी के साथ आज की आराधना संपन्न हुई। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 6:30 हुए हैं। खेती की बात कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है हरा चारा की खेती और पशुओं के संतुलन पोषण का महत्व। वाचन स्वर चित्रलेखा तिवारी के।
1: किसान संगी हुआ राम राम, जय जोहार। आज हमन बात करबो एक ऐसन हा विषय के ऊपर जिन हा किसान भाई बहनी मन पर बहुते जरूरी है। विषय है हरा चारा के खेती।

0: तीनों में बढ़ोतरी होते। और आज के कार्यक्रम में आज के कल नवा विषय के संग फिर उपस्थित होबो। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार।
1: कार्यक्रम खेती की बात में अभी आप जानकारी सुन रहे थे। विषय था हरा चारा की खेती और पशुओं के संतुलन पोषण का महत्व। वाचन स्वर चित्रलेखा तिवारी के थे। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। लीजिए प्रस्तुत है रामचरितमानस का गायन। मुख्य गायक कलाकार हैं कविता कृष्णमूर्ति और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का है।

राजा दशरथ के महलों में नववधुओं के स्वागत सत्कार तथा अन्य विधियों की समाप्ति के साथ रात्रि का आगमन होता है। सभी कुमार उनीदे हो रहे हैं, किंतु माताओं की जिज्ञासा का अंत होता नहीं दिखता। राम लक्ष्मण जैसे सुकुमार बालकों ने किस प्रकार ताड़का जैसी भयानक राक्षसी तथा मारीच और सुबाहु जैसे बलशाली राक्षसों का वध किया होगा, किस प्रकार ऋषि मुनियों के यज्ञ में डाली जाने वाली विघ्न बाधाओं का नाश करके दोनों किशोरों ने गुरु कृपा से विद्या पाई, जिज्ञासाओं का अंत नहीं। दीर्घ अवधि के बाद पुत्रों का मुख देखकर माताएं हर्ष ममता जनित उद्गार तथा तृप्ति से ओतप्रोत हो रही हैं। अपने विनय भरे वचन से माताओं के प्रश्नों के उत्तर देकर श्री राम उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा गुरु और ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाकर नींद की गोद में विश्राम करने लगते हैं।

रामचरित मानस का गायन अभी आप सुन रहे थे। मुख्य गायक कलाकार थी कविता कृष्णमूर्ति। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। श्रोताओं, नवविहान कार्यक्रम के अंतर्गत आज छोटी सी चर्चा होगी अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन के बारे में।

श्रोताओं, अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख शहरी विकास योजना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य देश के शहरों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं, विशेषकर जल आपूर्ति, सीवरेज नेटवर्क और हरित क्षेत्रों को विकसित करके नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। श्रोताओं, ये मिशन 25 जून 2015 को देश भर के 500 चयनित शहरों में शुरू किया गया था, जिसमें लगभग 60% शहरी आबादी शामिल थी। यह मिशन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक विकास मिशन है।

श्रोताओं, अमृत योजना यानी कि अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन के मुख्य लक्ष्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति के तहत हर घर में नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल और पर्याप्त जल कनेक्शन सुनिश्चित करना है। सीवरेज और प्रबंधन के तहत शहरों में सीवरेज नेटवर्क, सीवरेज ट्रीटमेंट और सेप्टेज प्रबंधन की उचित व्यवस्था करना है। जल निकासी के तहत बारिश के पानी से जल भराव और बाढ़ की समस्या को रोकने के लिए तूफानी जल निकासी यानी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का निर्माण करना है। हरियाली और पार्क के तहत शहरों में हरियाली बढ़ाना और बच्चों और बुजुर्गों के लिए पार्कों और खुले स्थानों का विकास करना है। हरित परिवहन के तहत प्रदूषण कम करने के लिए साइकिल ट्रैक, पैदल चलने के रास्ते और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है। श्रोताओं, इस योजना के तहत अमृत 2.0 इसे 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था, जिसे 5 वर्षों की अवधि 2021-22 से 2025-26 के लिए लागू किया गया है। इसका लक्ष्य शहरों को आत्मनिर्भर और जल सुरक्षित बनाना है। इसके तहत वैधानिक कस्बों में जलापूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज और सीवरेज कवरेज का विस्तार किया जा रहा है। इस चरण में जल निकायों के पुनरुद्धार और जल संरक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है। श्रोताओं, इस योजना और संबंधित राज्यवार कार्यों की विस्तृत जानकारी आप आधिकारिक आवास और शहरी कार्य मंत्रालय MOHUA की वेबसाइट पर देख सकते हैं। योजना और इससे जुड़े सुधारों की विस्तृत जानकारी के लिए आप दृष्टि, IAS या टेस्ट बुक के लेखों को भी पढ़ सकते हैं। ये थी छोटी सी जानकारी अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन के बारे में।

कार्यक्रम नवविहान के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन के बारे में छोटी सी जानकारी। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। श्रोताओं, इस समय आप सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। सुबह 8:30 पर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए। रायपुर केंद्र से ही रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार सुबह 9:55 पर और 11:55 पर। कार्यक्रम गांधी चर्चा आप सुनेंगे सुबह 7:20 पर। आज का विषय होगा गांधी जी और सहकारिता। प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की होगी और सहयोग किया है विजय गुप्त ने। यादों के झरोखे से पुराने फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर और आपकी पसंद पेश करेंगे सुबह 10:30 पर। कार्यक्रम आज सुबह का प्रसारण समय सुबह 7:05 पर। सुबह 10:00 छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के कार्यक्रम गुंजे स्वर गांव के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे श्रवण भक्ति गीत बाल मुकुंद पटेल और साथियों से। साथ ही सुनेगा गंगादास और साथियों का गाया राजा नल के किस्सा। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण समय सुबह 11:00।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। सुबह 9 बजे से 9:55 तक, 11:30 से 11:55 तक, 12 बजे से शाम 5 बजे तक और फिर रात 9:15 से रात 11 बजे तक। शाम 5 बजे सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। शाम 5:35 पर युवा जगत कार्यक्रम में आज की बात का विषय जल संरक्षण और हमारा दायित्व, साथ ही सुनेगा क्रम मेरा शहर। ईमेल करें गीत सुने शाम 6:20 पर और शाम 7 बजे आप सुनेंगे। शाम 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में क्रम बेरा के गोठ में चर्चा का विषय बदलत पर्यावरण और हमर जीवन संग खेती में प्रभाव, दलहनी तिलहनी फसलों में जल प्रबंधन, इस विषय पर शाम 7:30 पर सुनेगा फोन इन कार्यक्रम विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश पांडे, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान कृषि महाविद्यालय बिलासपुर। संचालन किया है राजू भैया ने, साथ ही सुनेगा गीत मौसम मंडी की जानकारी और किसान भाई बहनों को सामयिक सुझाव भी दिए जाएंगे। रजनीगंधा कार्यक्रम का प्रसारण आप सुनेंगे रात 8:15 पर। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 6:55 होने ही वाले हैं। संस्कृत समाचार थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

0: जीत येषः पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादं समेत्य सर्वेषु रूपेषु अभिव्यक्तिषु आतंकवादस्य हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ गतवर्षे अप्रैल मासस्य द्वाविंशति दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम् आतंक्याक्रमणं कट्वालोचितवन्तौ। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ हिंद प्रशांत क्षेत्रस्य उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं विस्तारयितुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वस्य आधार स्तंभेषु अन्यतमार्थिक सुरक्षा प्रधानतायाः विषये भारत जापान देशौ परस्परं प्रतिबद्धतां पुनः दृढ़ीकृतवन्तौ। आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत् आर्थिक सुरक्षा सहभागित्वं परस्पर विश्वासस्य सहभागी मूल्यानां सम्बद्ध हितानां च आधारेण वर्तते। उभयोः पक्षयोः समृद्धिः, सुरक्षा, आर्थिक भविष्यं च सुदृढतया परस्परं सम्बद्धमस्ति इति मान्यता अस्ति। अद्यतनीकृतस्य मुक्तस्य च इंडो पैसिफिक इत्यस्य तथा च म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन्स महासागर इति उपक्रमस्य समन्वयः उभयोः पक्षयोः कृते आर्थिक सुरक्षा सहकारं वर्धयितुम् आवश्यकं प्रोत्साहनं प्रददाति इति घोषिता अस्ति। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला अद्य कोलकातायां पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नवनिर्वाचितेभ्यः सदस्येभ्यः समिति व्यवस्था, वित्तीय निरीक्षणं, संसदीय विशेषाधिकाराः, विधायकेषु उदयोन्मुख आंकिकीयोपक्रमाः इत्यादीनां संसदीय विधायी कार्याणां विविध पक्षेभ्यः परिचय प्रदानं वर्तते। पंचायती राज मंत्रालयः षोडश वित्तायोगस्य अनुशंसानां विषये विचारार्थम् अद्य नवदिल्ल्यां राज्यस्य पंचायती राज मंत्रिणां एकां राष्ट्रिय कार्यशालाम् आयोजयति। कार्यशालायाः अध्यक्षतां केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंहः, केन्द्रीय राज्य मंत्रिणः प्रोफेसर एसपी सिंह बघेलस्य उपस्थितौ करिष्यति। कार्यशालावधौ चर्चा वित्त मंत्रालयस्य व्यय विभाग द्वारा प्रख्यापितस्य षोडश वित्तायोग ग्रामीण स्थानीय निकायानुदानस्य कार्यान्वयनाय परिचालन दिग्निर्देशेषु केन्द्रता भविष्यति। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा अद्य जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम बालटाल मार्गयोः आरभ्यते। सप्तपञ्चाशत् दिवसीयायां तीर्थयात्रायां सम्पूर्णे भारतदेशात् लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्रयात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं, प्राकृतिकरूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च प्रायः 88,000-3,000 मीटर परिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां गच्छन्ति। आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं 40 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचार

0: सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईजी ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का भी उल्लेख किया। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि इस संबंध में ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे गए हैं। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांधरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामने के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज अंतिम 32 के मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आज सुबह।

0: आज सुबह।
1: श्रोताओं, जून के आखिरी और जुलाई के शुरू होते ही घरों में अलग सी हलचल देखने को मिलती है, क्योंकि लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने लगते हैं और ऐसा ही कुछ परिवर्तन हम अपने आसपास भी देखते हैं। तेज चिलचिलाती धूप और उमस झेलने के बाद मानसून का आगमन होता है। मानसून सक्रिय होता है और आगे बढ़ता है। और साथियों, इस बदलते मौसम के साथ आज सुबह कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ सीमा साहू।

श्रोताओं, भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिवर्ष जुलाई के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाता है वन महोत्सव सप्ताह। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना और देश में हरित आवरण को बढ़ाना है। इस सप्ताह को मनाने का आरंभ वर्ष 1950 में तत्कालीन कृषि मंत्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने किया था। श्रोताओं, जुलाई का समय भारत में मानसून के आगमन का होता है। इस दौरान लगाए गए पौधों के जीवित रहने की संभावना अधिक होती है। वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के अलावा इस उत्सव का उद्देश्य सामाजिक जिम्मेदारी की भावना पैदा करना और लोगों को पर्यावरण की देखभाल के लिए प्रोत्साहित करना भी है। श्रोताओं, वन महोत्सव और पर्यावरण संरक्षण की बात चली है तो बता दें, हर साल 3 जुलाई यानी आज के दिन को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग के हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूक करना और पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को अपनाना है। श्रोताओं, प्लास्टिक बैग सैकड़ों सालों तक नष्ट नहीं होते। ये मिट्टी और जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं, जिससे समुद्री जीवों और स्थलीय जीवों को गंभीर खतरा होता है। श्रोताओं, ये वैश्विक पहल पहली बार 2008 में स्पेन के कैटालोनिया क्षेत्र में बैग फ्री वर्ल्ड द्वारा शुरू की गई थी और तब से ये एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है। एक प्लास्टिक बैग का उपयोगी जीवन केवल 12 से 20 मिनट का होता है, लेकिन इसे नष्ट होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं और ये पर्यावरण, जीवों और मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। श्रोताओं, भारत सरकार द्वारा 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, आयात, भंडारण और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा चुका है। छोटी छोटी पर्यावरण अनुकूल आदतें अपनाकर हम और आप भी इस अभियान में योगदान दे सकते हैं। खरीदारी करते समय हमेशा घर से कपड़े या जूट का थैला साथ लेके जाएं। सिंगल यूज वाली प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग को ना कहें और यदि आपके पास पहले से प्लास्टिक थैलियां हैं तो उन्हें फेंकने के बजाय रिसाइकलिंग के लिए दें और लोगों को भी इस बारे में बताएं। और अब आइए साथियों, आज सुबह कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुन लेते हैं।

0: है आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: नमस्कार मित्रों, यातायात पुलिस बिलासपुर की ओर से जिले की यातायात संबंधी जानकारी के साथ मैं हूं उमाशंकर पांडे। लीजिए सुनिए आज का ट्रैफिक अपडेट साथ बिलासपुर। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कोटवार एसोसिएशन आप छत्तीसगढ़ के प्रांतीय संघर्ष समिति के आह्वान पर आज कोटवारों द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन प्रस्तुत किए जाने की योजना है। कोटवारों के द्वारा आज पूर्वाह्न 11 बजे नेहरू चौक में धरना, पश्चात कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया जाएगा। धरना में शामिल सभी सदस्यों से अनुरोध है और सर्वविदित भी है कि नेहरू चौक बिलासपुर जिले का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक चौक है, जिसके इर्द गिर्द सैकड़ों शासकीय अशासकीय कार्यालय और माननीय जिला न्यायालय भी स्थित है। इसलिए ध्यान रखें, आपके धरना प्रदर्शन या ज्ञापन सौंपते समय तनिक भी यातायात बाधित ना हो, क्योंकि यहाँ यातायात बाधित होने से शासकीय कार्य भी प्रभावित होते हैं। अतः धरना के समय सड़क पूरी तरह खाली रखें और ज्ञापन सौंपते समय भी कलेक्टर कार्यालय गेट में इस प्रकार भीड़ न लगाएं जिससे यातायात में किसी प्रकार की रुकावट हो। इसके साथ ही शहर से लेकर संपूर्ण बिलासपुर जिले में यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, ये सच है कि मोबाइल फोन हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। लगभग हर क्षेत्र में मोबाइल अपना स्थान बना चुका है। वार्तालाप या संदेशों के आदान प्रदान, मनोरंजन, देश विदेश के समाचार, शिक्षा, पैसों के लेन देन जैसे अनेकों कार्य मोबाइल फोन से हो रहे हैं। लोग उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते हर वक्त मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, किंतु ध्यान रहे अति सर्वत्र वर्जित। अतः किसी भी चीज की अधिकता या सीमा से अधिक उपयोग भी घातक हुआ करता है। वहां चलाते हुए मोबाइल से बातें करते या गाना सुनते तो सड़क दुर्घटना का घटित होना आम बात हो चुकी है, किंतु अब लोग पैदल चलते भी मोबाइल का प्रयोग करते सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग सूर्योदय के पूर्व मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं, किंतु पैदल चलते या दौड़ते भी मोबाइल से जुड़े रहते हैं। सुबह सुबह पैदल चलने वाले प्रायः सभी इसी कारण सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। अतः समय रहते सतर्क हो जाइए, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
0: ये था आज का ट्रैफिक अपडेट। श्रोताओं, भारत में सहकारिता आंदोलन और सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 29 जून से 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य सहकार से समृद्धि के संकल्प को मजबूत करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना और किसानों, महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। श्रोताओं, इस विशेष सप्ताह के दौरान देश भर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की विभिन्न सोसाइटियों में ध्वजारोहण, किसान क्रेडिट कार्ड वितरण और योजनाओं की जानकारी देकर किसानों को जागरूक करने जैसे मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और साथियों, सहकारिता सप्ताह की बात चली है तो बता दें कि आज का हमारा गांधी चर्चा कार्यक्रम भी इसी पर केंद्रित होगा। विषय होगा गांधी जी और सहकारिता। प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की होगी। तो साथियों, कार्यक्रम में बने रहिएगा हमारे साथ और सुनना ना भूलिएगा। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बात कुलभूषण पंडित यानी राजकुमार, एक भारतीय अभिनेता की, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। 4 दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने 70 फिल्मों में अभिनय किया और उन्हें भारतीय सिनेमा के महानतम अभिनेताओं में से एक माना जाता है। बड़े बड़े सितारों के साथ काम करने के बावजूद और पारंपरिक रूप से आकर्षक न होने के बावजूद उनके तीक्ष्ण उच्चारण वाले संवाद अक्सर फिल्म का सबसे यादगार तत्व बन जाते थे। परिष्कार और नाटकीय गरिमा से ओतप्रोत उनकी शैली ने उन्हें उनके

आपकालीनों से अलग किया और उन्हें हिंदी सिनेमा के अग्रणी संवाद राजाओं में से एक के रूप में स्थापित किया। 1996 में आज ही के दिन यानी 3 जुलाई को निधन हुआ था संवाद अदायगी के बिजोड़ बादशाह राजकुमार जी का। उन्हें हम याद करते हैं और आइए सुनते हैं उन्हीं पर फिल्माया ये गाना।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह, ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 7:20 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है।

कार्यक्रम गांधी चर्चा आज का विषय है गांधी जी और सहकारिता। प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की और सहयोग विजय गुप्त का।

नमस्कार श्रोताओं, गांधी चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है सहकारिता और गांधी जी। हम सब अभी सहकारिता सप्ताह मना रहे हैं। जब हम सहकार शब्द सुनते हैं तो मन में सहज ही एक भाव उभरता है, साथ चलने का, साथ बढ़ने का और साथ मिलकर समृद्ध होने का। यही तो सहकारिता का मूल मंत्र है। और यदि हम इस भावना की जड़ें खोजें तो हम पाएंगे कि महात्मा गांधी के संपूर्ण जीवन दर्शन में सहकारिता एक जीवंत धारा की तरह प्रवाहित होती रही है। हालांकि गांधी जी ने आधुनिक तरीके से जिस तरह से आज सहकारी समितियां हैं उसका कोई विस्तृत मॉडल तो प्रस्तुत नहीं किया था, लेकिन उनके विचारों का मूल आधार ऐसा ही समाज था जहां व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए जीता है। वे कहते थे, व्यक्ति का कल्याण समाज के कल्याण से जुड़ा है। गांधी जी के लिए स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी। उनका सपना था ऐसा भारत जहां गांव आत्मनिर्भर हो, लोग परस्पर सहयोग से अपनी आवश्यकताएं पूरी करें और आर्थिक विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। और यही भावना सहकारिता आंदोलन की आत्मा है। गांधी जी का एक विचार था, भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है। वे चाहते थे कि गांव केवल कृषि का केंद्र न रहे बल्कि उत्पादन, कुटीर उद्योग, शिक्षा और सामाजिक जीवन के भी सशक्त केंद्र के रूप में उभरे। और ये तभी संभव होता जब लोग आपसी प्रतियोगिता से ज्यादा सहयोग को महत्व देते। इसी सोच से उन्होंने चरखा और खादी को केवल वस्त्र बनाने का साधन नहीं बल्कि सामूहिक श्रम, स्वावलंबन और आत्मसम्मान का प्रतीक बनाया। जब एक गांव के लोग मिलकर सूत काटते थे, बुनाई करते थे और अपने ही हाथों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे तो एक प्रकार की सहकारिता ही थी। यहाँ लाभ केवल आर्थिक नहीं था बल्कि यहाँ पर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता साथ साथ बढ़ती थी। गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा कि संपत्ति का वास्तविक स्वामी समाज है। जिसके पास अधिक साधन है उसका उपयोग उन व्यक्तियों को केवल अपने हित के लिए नहीं करना चाहिए बल्कि समाज के कल्याण के लिए करना चाहिए। और यह बात भी सहकारिता के मूल सिद्धांतों से गहराई से जुड़ी है। इस संदर्भ में उनके जीवन का एक प्रेरक प्रसंग हमें और स्पष्ट रूप से ये बात बताता है। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने फिनिक्स सेटलमेंट और बाद में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। श्रोताओं, वहां रहने वाले सभी लोग मिलजुल कर खेती करते, भोजन बनाते, सफाई करते, बच्चों को पढ़ाते और दैनिक कार्यों की जिम्मेदारी को साझा करते थे। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं माना जाता था। श्रम का सम्मान था और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना थी। गांधी जी खुद भी झाड़ू लगाते, शौचालय साफ करते और खेती में हाथ बटाते। उनका विश्वास था कि जब हर व्यक्ति अपने हिस्से का श्रम करेगा और उत्तरदायित्व को निभाएगा तभी सच्चा समाज बनेगा। जब वे भारत लौटे तो उनके आश्रम साबरमती और सेवाग्राम में भी यही व्यवस्था थी। आश्रम का जीवन सामूहिक श्रम, सादगी, अनुशासन और सहयोग पर निर्भर था। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देता था और सब मिलकर एक परिवार की तरह रहते थे। और यही सहकारिता का व्यवहारिक रूप है। खेती के संदर्भ में गांधी जी के बड़े स्पष्ट विचार थे कि जमीन का मालिक तो वही है जो उस पर मेहनत करता है। हिंदुस्तान के लोग यदि खेती की तरक्की न कर सके तो वो कोई और काम भी नहीं कर सकते हैं। जिस धंधे से 70-75% लोगों की आजीविका चलती है यदि उपेक्षा की जाए उसकी तो वो आत्मघाती है। और ये मानते थे गांधी जी और कहते थे कि खेती को अगर सहकारी पद्धति पर ठीक रीति से चलाया जाए तो उसका सुपरिणाम किसानों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। खेती एक ऐसी कला है जिसका उत्पादन कार्य अपने हाथों से संपन्न होता है।

यदि गांव के सारे लोग एक साथ काम करें, सहयोग करें, तो सभी का कल्याण होगा। गांधी जी कहते थे कि मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि जब हम अपनी जमीन भी सामुदायिक या सहकारी पद्धति से जोतेंगे, तभी उससे हमें पूरा फायदा मिलेगा, बनिस्बत इसके कि गांव की खेती अलग अलग 100 टुकड़ों में बढ़ जाए। क्या ये बेहतर नहीं है कि 100 कुटुंब सारे गांव की खेती सहयोग से करें? वे कहते थे, मेरी कल्पना की सहकारी खेती जमीन की शक्ल ही बदल देगी और लोगों की गरीबी और आलसीपन को भगा देगी। गांधी चर्चा में आइए अब आगे सुनते हैं अनूप जलोटा की आवाज में गांधी जी का प्रिय भजन।

कार्यक्रम गांधी चर्चा का प्रसारण अभी किया जा रहा था। प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की थी, सहयोग विजय गुप्त का, और आज का विषय था गांधी जी और सहकारिता। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों के झरोखे से।

परवेज शमसी का लिखा गीत आपने सुना सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फिल्म थी

0: हमराज फिल्म का गाना आपने सुना महेंद्र कपूर की आवाज़ में। गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने और धुन तैयार की थी रवि ने। पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें

0: चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म वासना से। यादों के झरोखे से कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
5: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
5: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
5: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
6: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अभी आपने काला बाजार फिल्म का गाना सुना। इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने, धुन तैयार की थी सचिन देव बर्मन ने।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल।

0: बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
2: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज
3: और सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
4: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
5: यादों के झरोखे से कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सूचना सुनिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष के कम उम्र के बालक बालिकाओं को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। नामांकन या अनुशंसा ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक जमा किया जा सकता है। विस्तृत विवरण राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
6: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: आशा भोसले और साथियों का गाया नील कमल फिल्म का गाना आपने सुना। गीतकार थे साहिर लुधियानवी, धुन तैयार की थी रवि ने। और इसी के साथ पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से अब समाप्त होता है। FM एंड 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने ही वाले हैं। समाचार प्रभात थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से

0: संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता रणब्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। यह घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों

0: श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
1: बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जट्टा आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतर रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमेरिका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको से होगा। अमेरिका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बाद मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका

0: का है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाये रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज जापानीज काउंटर पार्ट सनाए तकाईची स्ट्रांगली कंडेम टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इन ऑल हिज फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। Election Commission seeks responses from rival factions of Trinamool Congress regarding competing claims about parties' organizational elections and authorized signatories. Annual Sri Amarnath Yatra begins from both Pehelgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei to skip Father Ali Khamenei's funeral over security fears. Spain beat Austria 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup. And BCCI announces schedule for India's 2-match test series against Sri Lanka to be played from the 15th to the 27th of next month.

श्रोताओं, ये आवाज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इस आवाज ने पूरे देश को मुस्कुराने पर भी मजबूर किया और सोचने पर भी। ये वही आवाज है जिसमें लोक की मिट्टी की सौंधी महक है, रंगमंच की तपस्या है और जीवन के अनगिनत रंगों का अनुभव है। जी हाँ, रघुवीर यादव एक ऐसा नाम जिसने 60 के दशक से अब तक हर पीढ़ी को अपना कायल बना लिया है। नाटकों का मंचीय संसार हो या टीवी धारावाहिक मुंगेरी लाल के हसीन सपने, चाचा चौधरी, या फिर उनके यादगार किरदार जो उन्होंने फिल्मों में निभाए हैं, जैसे मैसी साहब, सलाम बॉम्बे, पीपली लाइव या वाटर में, और अब पूरे देश को जोड़ता पंचायत सीरीज में उनका किरदार प्रधान। उनके किरदार, उनके गीत हम सब के जेहन में बसे हुए।

0: अग्रज नाट्य दल बिलासपुर द्वारा पिछले दिनों बिलासपुर में 4 दिवसीय योगेश स्मृति नाट्य महोत्सव का आगाज हुआ। रंगमय हुआ बिलासपुर और इस रंग यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण रहा प्रसिद्ध रंगकर्मी और अभिनेता रघुवीर यादव द्वारा मंच पर प्रस्तुत नाटक पियानो। हम सबका ये सौभाग्य रहा कि पियानो का मंचन हमने मंच से देखा और हमने सीधे सीधे उनका अभिनय और उस पूरे मंचन के दौरान जो हमारी एकाग्रता उस पूरे कार्यक्रम में बनी रही वो भी बड़ी अद्भुत रही। उनकी आंखें बोलती हैं, खामोशी संवाद बन जाती है और उनकी आवाज सीधे दिल तक पहुंच जाती है। अपने बिलासपुर प्रवास में हमारे छोटे से अनुरोध पर रघुवीर यादव जी आज आकाशवाणी के स्टूडियो में श्रोताओं से रूबरू हैं। आकाशवाणी बिलासपुर की इस विशेष भेंटवार्ता में हम हृदय से स्वागत करते हैं भारतीय रंगमंच और सिनेमा के अप्रतिम अभिनेता, संवेदनशील गायक और हमारे आज के अतिथि रघुवीर यादव जी का। आपका स्वागत और अभिनंदन आकाशवाणी बिलासपुर में।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बातचीत चूंकि आपके नाटक से ही शुरू हुई है तो मैं पहले वहीं से ही बात शुरू करना चाहूंगी, पियानो से ही।
1: जी।
0: और समाज की एक बहुत बड़ी समस्या को बड़े ही सहज सरल ढंग से आपने मुख्य रूप से उसको सामने प्रकट किया और उस नाटक के माध्यम से बहुत सारी चीजें हमारे सामने आईं। थिएटर का लक्ष्य, थिएटर का उद्देश्य, हमारी संवेदनाएं, हमारे अंदर जो घट रही घटनाओं की अभिव्यक्ति, सब कुछ दिखाई दिया। तो ये प्रेरणा इस नाटक को लेने की, क्योंकि सब कुछ इसमें आपका था, अभिनय भी, निर्देशन भी, कास्टिंग भी, सब आपने खुद किया इसका।
1: जी, जी।
0: कैसे ये नाटक इतना प्रभावी बन पड़ा?
1: एक्चुअली ये नाटक फेरेंस कैरेंथी का एक प्ले है जो क्लासरूम प्रोडक्शन के लिए उन्होंने लिखा था। तो जब मैंने ये प्ले पढ़ा, उसका ट्रांसलेशन भी पढ़ा, तो मुझे दम तो था नाटक में, लेकिन वो एक्सरसाइज, बतौर एक्सरसाइज की तरह वो लिखा गया था।
0: जी जी।
1: तो मैंने फिर इसको चाहा कि, क्योंकि आज जो जमाना है अकेलेपन से बहुत
0: जूझ रहा है।
1: हाँ, जूझ रहा है
0: जी।
1: और हर शख्स ऐसा भटका हुआ है और ऐसे लगता है, तो ये तो मेरे जहन में, तब वो मेरे अंदर थी ये बात। फिर क्या है कि मेरा था म्यूजिक से ताल्लुक, तो मैं पियानो है कि वो पियानो बेचना चाहती है और एक शख्स है जो और दोनों तूफान आ गया है, मतलब पूरा मुंबई में बारिश है, तो मैंने उस तरह की बारिश है, बाहर नहीं निकल पा रहे, तो बस एक शख्स है जो मजे लेने के लिए। तो मेरे जहन में आया कि वो पियानो, क्योंकि अकेलेपन, अकेली रह गई है और पियानो बेच रही है, जो उसकी जिंदगी में वो साथ रहा, तब मुझे मेरे जहन में आया कि म्यूजिक तो एक ऐसा है कि अकेलापन महसूस होने ही नहीं देता। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ, ये मेरे ही साथ हुआ कि म्यूजिक ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। कभी भी कोई भी परेशानी, उलझन, कुछ भी हुआ, कितनी भी आफत मुसीबतें आई, म्यूजिक ने मुझे हमेशा पकड़ के खींच लिया और खींच के एक नया रास्ता दिखा दिया।
0: क्या बात।
1: हाँ, तो मैंने फिर उसको, उसका जो एडेप्टेशन किया, तो फिर उसमें मैंने ये डाला कि भैया अगर आपके पास म्यूजिक है तो उसे जाने मत दीजिए, अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो तो तमाम एक उम्र क्या, वो तो कई उम्रों के लिए कम है।
0: सच। हाँ, जी जी।
1: कि आप उम्र कितनी भी उम्र तक बजाते रहिए, करते रहिए, तो ऐसा लगता है कि उम्र बड़ी छोटी सी लगती है। तो ये मुझे लगा, तो फिर मैंने कहा कि जमाना उसी तरह का है कि लोग अकेले भटक रहे हैं, तो अकेलेपन का एक वो है कि एक सुझाव है कि आप म्यूजिक इख्तियार कर लीजिए और फिर देखिए आपका अकेलापन कैसे गायब होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा।
0: क्या बात है। और ये सारी बातें एक नाटक के माध्यम से हर व्यक्ति तक बड़ी सुंदर ढंग से पहुंची हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। उसके पीछे जो आपकी कला साधना दिख रही थी कि एक क्षण के लिए भी मंच से यदि डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, एकाग्रता भंग नहीं होती है, तो कलाकार की कितनी बड़ी साधना उसके पीछे है कि वो बांध के उतनी देर तक सारे दर्शकों को रख सकता है। तो अब मैं थोड़ा सा आपके जीवन की तरफ आना चाहूंगी, क्योंकि आपके बारे में बहुत सारी बातें हर जगह सभी को पता है कि आपका बचपन कैसे बीता, आप कैसे बाहर निकले वहां से और क्या हुआ, लेकिन फिर भी हमारे श्रोताओं के लिए हम आपके द्वारा सुनना चाहेंगे कि कैसे कैसे रास्तों से चलते चलते ये यात्रा तय हुई है।
1: जी, एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो ये 50s के आसपास की बात है और उस वक्त बिल्कुल मेरे ख्याल से जनसंख्या भी बड़ी कम हुआ करती, बहुत दूर दूर तक सब जंगल और ये था। तो मेरा बचपन, मेरा, मैं किसान हूँ, किसान फैमिली को बिलोंग करता हूँ
0: जी,
1: बैलगाड़ी

0: चलाया करता था, भैंसे चलाया करता था, दूध का धंधा होता, यादव हूँ तो जाहिर है बस यही धंधे कर पाते थे
1: बिल्कुल।
0: और खेती वेती होती रहती थी। तो मुझे सबसे पहले म्यूजिक से मेरा ताल्लुक है, तो सबसे पहले जो मेरा म्यूजिक का एहसास, जो स्वर मुझे मिले, वो मैं आधारताल, जबलपुर में एक जगह है, वहाँ एक तालाब है जिसकी वजह से वो नाम पड़ा आधारताल। वो तालाब के बगल के में एक टीला है, टीला पे एक मकान हुआ करता जो मेरे नाना जी का था, वहीं हम रहते थे उसी में। तो वहीं वो जमीन पड़ी हुई थी नाना जी की, वहीं खेती वेती किया करते थे, तो हम गर्मियों में वहां जाया करते थे। तो मुझे गर्मियों की इसलिए याद है, जाते तो हमेशा थे लेकिन गर्मियों की याद है कि मैं 3-3.5 साल का रहा हूंगा। तो वहां जो खेतों की मेड़ से एक पापड़ बेचने वाला निकलता था, सिर्फ एक घर के लिए वो पापड़ दूर से बेचता था। अब मैं 3.5 साल का हूं और मैं उसको सुनता था, तो वो पापड़ बेचता था कि मोम का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो,
1: क्या बात,
0: मोम का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। तो हम उसको बुलाते थे, पापड़ बेचते हुए, मोम का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। फिर आके बैठ जाता था, फिर पापड़ देने लग जाता था। बस ये जो मैंने और इतनी आत्मा से इतना रूहानी ये सब जी बेचने वाले भी गाड़ा के मांगने आते थे। एक सूरदास जी, वो भी वो रसखान का एक भजन गाते हुए निकलते थे, तो मैं उनके पीछे पीछे चला जाता था, ऐसा लगता है मैं भी भीख मांगने लगूं इनके साथ में, इतना मजा। तो वो रसखान का गाते थे, वो अपनी उनकी पत्नी थी, अंधे थे वो, पत्नी थी, पत्नी के कंधे पे हाथ रख के और गाते हुए निकलते थे, मैं उनके पीछे पीछे जाता था। वो था कि आज गई हो तो भो रही हो, रस खान रही कभी नंद के भो नहीं, भाको जियो जुग लाख करो रही, जसमती को सुख जात कहो नहीं। अरे तेली लगाई लगाई के अंजन भो है, बनाया बनाया जिठो नहीं, डारी हमें लनिहारती आनन भारती, जो चुचकारत छो नहीं, धूर भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनिया कटी पीरी कछौटी। और वाचा भी को रस खान बिलो, कत भारती काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी।
1: वाह वाह वाह, आपके बचपन की जो यादें हैं और बचपन में जो सुर आपके अंदर गए हैं धुन के रूप में, उसको तो आपने बहुत बहुत ही सुंदर ढंग से आज हमारे श्रोताओं के लिए प्रस्तुत किया है। और संगीत के ये जो बीज, जो छोटे छोटे अलग अलग घटनाओं के द्वारा, चाहे वो मूंगफली बेचने वाला हो, पापड़ बेचने वाला हो, उन सब से आपने ग्रहण किया
0: जी, यही सब लोग उस्ताद हैं मेरे। हाँ, तो लोग ढूंढते रहे तो मुझे तो पूरी पूरी पूरी कायनात ऐसा लगता है उस्ताद है, पेड़ पौधे चिड़ियों पक्षियों से। मैं फिर गाना गाता तो एक फैक्ट्री से वो बजता था सायरन। तो वो जब बजता था तो उससे मैं आवाज में लाके फिर बड़ी देर तक गाता रहता था। एक बात ये है कि ईश्वर देता सभी को है, अगर हम उसको पहचान लेना तो चीजें बड़ी आसान सी हो जाती हैं, हम पहचानते नहीं। और दूसरी बात यह है कि माँ बाप को भी मैंने देखा कि बच्चों को भटकाने बड़ा उनका हाथ होता है कि पड़ोस का बच्चा ये कर रहा है तो वहां चले जाओ, वो इंजीनियर है तो वो करना कुछ और चाहते उसे कुछ और करवाते हैं, फिर यहाँ भटकाव शुरू हो जाता है। तो मुझे भी आया लेकिन बहुत ज्यादा मुझे मना, मेरे नाना जी खुद ही मंदिर बनवा दिया था उन्होंने, और मंदिर में सब वहां के जो कोई जात पात कुछ नहीं होता था। फिर स्कूल भी बनाया लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन, अभी भी है जबलपुर में, तो बच्चे वहीं पढ़ने के लिए आते थे, मालूम नहीं था कि कौन किस जात का है, सब लोग वहां इकट्ठे आके वहां पढ़ा करते थे और वहीं से सब लोग सीखते रहते थे।
1: बहुत सारा इनपुट्स आपको अपने छोटे से गांव में ही मिल गया था।
0: ये मैं एक बात बता दूं, सब जगह है ये। अब तो खैर जो ये सब ये फोन और ये सारा आ जाए तो मेरे ख्याल से वो जो जड़ें हैं, वो जो जमीन है, वो थोड़ी सी मिटते हुए नजर आ रही है।
1: जी,
0: नहीं तो छत्तीसगढ़ भी कितना खूबसूरत, यहाँ के लोग वहां भी थे, वो भी बहुत
1: यहाँ की भी लोक संस्कृति, जितना लोक के प्रति आपका अनुराग है और लोक से आपने जो ग्रहण किया है वो आपको सभी जगह एक साम में दिखाता है, चाहे बुंदेलखंड में जाए।

0: आए, चाहे आप मालवा में जाएं, चाहे आप यहाँ छत्तीसगढ़ में आए, वो सब के अंदर प्रकृति की जो सुगंध रची बसी है
1: जी
0: वो बिल्कुल वैसी ही रहती है, उसमें कोई अलगाव नहीं रहता। तो आप तो निकल गए थे, गांव से ही बाहर निकल गए थे, कुछ खोज रहे थे, कुछ तो खोज लिया था,
1: जी
0: कुछ और पाने के लिए निकल ही गए थे।
1: जी
0: तो वो निकलने बाद की जो यात्रा थी वो काफी लंबी रही और उसने आपको दिशाएं दे दी जिंदगी
1: जी
0: की।
1: जी जी
0: जी,
1: जी क्या
0: उसके
1: है कि
0: बारे में।
1: मैं वो तो मैं मालूम होगा सभी को कि मैं हायर सेकेंडरी फेल हो
0: जी
1: गया था, तो शर्मिंदगी से बचने के लिए, क्योंकि वहां सब लोग का बस एक ही इरादा था कि बच्चा 7वीं 8वीं तक पढ़ जाए, उसके बाद तो फैक्ट्री में डाल दो उसको, उसके बाद शादी कर दो, उसके बाद ये
0: जी
1: बस
0: जी
1: यही था। तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता था, मुझे ऐसा लगता है हटके करो ना, ये क्यों सब कुछ यही, सब लोग एक ही जैसा करेंगे तो मजा क्या है जिंदगी का। बस फिर वो बहाना मिल गया, तो आज भी मैं शुक्रगुजार हूं उस मालिक का कि उसने मुझे फेल कर दिया।
0: हाँ, सच बात है।
1: हाँ,
0: नहीं है,
1: मुझे तब से लगा कि इंसान को फेल होना भी कितना जरूरी है, और हमेशा कुछ टूटता है तभी कुछ बनता है, जब जब टूटा है तभी तभी कुछ ना कुछ बन ही जाता है, और ऐसा बनता है कि उस टूटने को उस वक्त इतना पॉजिटिव ले लेते हैं कि या मालिक अच्छा किया उस वक्त टूटा वो।
0: जी।
1: हाँ, तो फिर गया मैंने पहली दफा थिएटर, नाम जब वो घर से गया तो ललितपुर में नाटक कंपनी लगी हुई थी, यन्नू कपूर के फादर की नाटक कंपनी थी,
0: जी
1: उसका
0: जी
1: नाम था भोपाल थिएटर कंपनी, वहां पाकिस्तान के थे, लाहौर के वहां के रहने वाले थे, लेकिन पारसी थिएटर के नाम से वो था बस। तो वहां फिर मैं हो गया, क्योंकि मैं जिसके साथ गया था प्रोफेशनल भगोड़ा था वो, जहां भी जाता भाग उसका 2-4 दिन बाद भाग ही जाता था, तो उसके साथ गया तो उसकी आदत थी, वहां छोड़ के चला गया, तो फिर मैं इनके पास गया।
0: अकेला छोड़ के गया आपको।
1: हाँ,
0: ओके
1: तो
0: जी।
1: गया तो फिर मैं नाटक कंपनी के मालिक जो थे वो सुबह सुबह पहुंच गया कि ऐसा ऐसा है, तो क्या करते, मैंने कहा गाना गाता हूँ, उनका सुनाओ, तो मैं बुंदेलखंडी, मुझे साज शाम में फर्क मालूम नहीं था, मैंने सुना दिया कि बदली तेरी नजर तो नजारे बदल गए, ये चांदनी ये चांद सितारे बदल गए, मैं गा के सुना देता हूँ।
0: हाँ।

0: तेरी नजर
1: तो ये
0: तो कहने
1: उच्चारण
0: लगे।
1: उच्चारण वाला पार्ट फिर धीरे
0: हाँ तो नहीं तो फिर
1: धीरे
0: उन्होंने कहा बेटा गाते तो सुरीला हो लेकिन तुम्हारा तलफ़ुज़ बड़ा खराब है। तो मैंने कहा कि जी तबले पे गाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। अब मुझे क्या मालूम तलफ़ुज़ का मतलब क्या होता है। तो हंसने लगे सारे लोग हैं। तो हंसे तो फिर मुझे फिर शर्मिंदगी हुई। तो कहने लगे बेटा तलफ़ुज़ का मतलब उच्चारण होता है, तलफ़ुज़ का मतलब प्रोनंसिएशन होता है। तो मैंने कहा हाँ मैं ठीक कर लूंगा। तो मुझे 2 रुपए 50 पैसे में उन्होंने रख लिया। और फिर वो शर्मिंदगी।
1: ये 60 के दशक की बात है।
0: जी जी जी जी 67 के बात है।
1: हाँ
0: तो उन्होंने मुझे रख लिया 2.5 रुपए रोज पे। और वो शर्मिंदगी वो जो तबला वाला फिर मैंने कहा मैं तबला ठीक करके ही छोड़ूंगा। उसके बाद फिर मैंने 6 और 1 साल के अंदर उर्दू लिखनी पढ़नी भी सीखी वहां।
1: वाह वाह वाह क्या बात है
0: उससे फिर।
1: जी।
0: और मैंने देखा कि उर्दू जबान जो सुनना सिखाती है जा जा शा सा, तो वो सुनना। तो वो फिर वहां फिर रहने के बाद फिर आहिस्ते आहिस्ते शुरू में गाना गाता था। फिर उन्होंने मैं एक्टर बना दिया। पहली
1: जी
0: बार
1: जी
0: सिपाही बना मैं। उसे फिर रोया मैं कि क्या मुझे हाथों पकड़ के खड़ा कर, बोलना कुछ नहीं था लेकिन खड़ा कर दिया, बड़ा अच्छा नहीं, भाला पकड़ा के खड़ा कर दिया था। वो अनारकली नाटक होता था उसमें। खैर वहां से फिर मुझे लगा सब लोग कहने लगे बेटा कुछ तो करना पड़ेगा, सीखो ये। तब सीखना फिर शुरू किया, फिर आग लगी।
1: आपकी पढ़ाई लेकिन आपने जारी रखी ना।
0: हाँ नहीं फिर उसके बाद फिर मैं हायर सेकेंडरी का एग्जाम देने दोबारा से गया, वहां जबलपुर
1: ओके
0: गया। फिर कर लिया था
1: जी
0: मैंने।
1: जी जी
0: हाँ हाँ
1: जी जी तो
0: वो कर
1: ये
0: लिया।
1: जो अंदर से आपके अंदर आगे बढ़ने की जो एक बात थी वो लगातार बनी रही। फिर आप एनएसडी तक भी गए। फिर एनएसडी में एक अलग ही ढंग
0: जी
1: से आपकी प्रतिभा
0: जी
1: उसे एक अलग उठान मिला।
0: जी
1: तो वो अनुभव कोई यादगार क्षण वहां के जो आपको वहां से इतने वर्षों तक जोड़े रखे सिनेमा में आने से पहले।
0: क्या है कि एक तो वहां थिएटर मुझे समझ आया, यहाँ पारसी थिएटर।
1: बिल्कुल
0: और जो खानाबदोशी में जो मुझे सीखने मिला, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे खूबसूरत दिन वही थे। और हमेशा इंसान कमियों में सीखता है, अभाव में ही सीखता है। अगर सब कुछ दे दिया जाए तो कुछ तो। मैं इस मामले में इत्तेफाक से मैं लकी रहा कि मुझे वो बिल्कुल। उसके बाद जब मेरा

0: इंटरव्यू हुआ वहां, मुझे पता लगा कि थिएटर सिखाया जाता है।
1: जी जी
0: उसी वक्त मेरी नौकरी सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में भी लग रही, तो वहां 450 रुपए थे, यहाँ सीखने के लिए 200 रुपए था स्कॉलरशिप।
1: जी जी
0: तो मैंने कहा मैं ये करूंगा, 450 नहीं चाहिए मुझे, 200 रुपए चाहिए।
1: क्या बात।
0: मैं चला गया, भर दिया फॉर्म, और अलकाजी साहब थे तो वहां इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू हुआ तो 6 साल पारसी थिएटर का वो, जब इंटरव्यू हुआ तो 45 मिनट तक इंटरव्यू चला। तो अलका साहब ने खुद ही कह दिया कि भैया हम आपके स्कॉलरशिप भी दे दी और अब आ जाओ, हम आपको सिलेक्ट कर लिए।
1: देखिए ये अनुभव आपका कितना
0: जी,
1: आम है,
0: जी,
1: सच बात है।
0: फिर मैंने 3 साल वहां ट्रेनिंग की, और मैंने एक्टिंग में नहीं किया, मैंने स्टेज क्राफ्ट में किया। क्योंकि मैंने उनसे कहा कि मुझे सब कुछ सीखना, तो उन्होंने स्टेज क्राफ्ट में डाल दिया। अब मेरे क्लास के सारे बच्चे, मेरी क्लास की क्या दूसरी और भी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, उन दिनों राज बब्बर भी वहीं थे और पंकज कपूर, ये सारे लोग थे उस वक्त। तो कहने लगे तू तो एक्टर, ये तो मजदूरों का काम है। मैंने कहा मुझे मजदूरी ही करना है। फिर उसमें जो स्टेज क्राफ्ट में मुझे मजा आया है, फिर मैं कारपेंट्री और ये उससे डिजाइनिंग और मेकअप और सारा कुछ सीखता रहा।
1: इस दौरान आपका संगीत का जो रुझान है, उसको
0: संगीत तो कहाँ छूटता है, संगीत तो मैं बिल्कुल अलग से टाइम निकाल के, और संगीत की वजह से ही फिर और भी चीजें मुझे सीखने को मिली। एक तो क्या है, एहसास और ये जो इमोशंस की जो बारीकियां वो संगीत से ही बड़ी जल्दी पकड़ में आती है, बड़ी जल्दी पकड़ में आती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी,
0: तो
1: जी,
0: ये
1: जी।
0: मेरे साथ था, तो फिर बस लगा।
1: इतने सारे वाद्य यंत्र आप बजा लेते हैं
0: जी,
1: तो गांव से तो कुछ तबला आपने
0: कुछ
1: कहा।
0: नहीं कुछ नहीं जी, मेरे पास वो तबला तो वो भी नहीं आता, उसको तबला समझ रहा। हारमोनियम में हाथ नहीं लगाने एनएसडी गया, तब फिर मुझे हारमोनियम पहली दफा मैंने, क्योंकि वहां छू नहीं देते वो पार्श्व थिएटर में।
1: हाँ अच्छा, हाँ। नहीं मुझे लगा आपने कहा तो उसका कनेक्शन।
0: नहीं
1: जी, हाँ, जी।
0: तो हारमोनियम था वहाँ, मेरे मंदिर में रखा हुआ था, लेकिन इतना वो नहीं था, नहीं बजा पा रहा था मैं, क्योंकि पढ़ने लिखने में लगा हुआ, तो फिर घर से भागना भी था, अगर वहाँ हारमोनियम सीख लेता फिर वहीं मंडली बना लेता मैं, तो ये भी जरूरी था। तो ईश्वर की तरफ से जो होता है। फिर एनएसडी आए, वहाँ फिर मैंने हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट, फिर सितार और ये जो जो है, तो बस ऐसे ही दिल बहलाने के लिए बहुत ज्यादा।
1: लेकिन आपके द्वारा जो फ्लूट बज रही थी
0: जी जी,
1: मतलब बांसुरी आप इतना सुंदर बजा रहे थे स्टेज में, लाइव बज रही थी, तो वो तो बता रही है कि आपने कितनी गहराई तक संगीत को साधा है।
0: तो एक तो क्राफ्ट, स्टेज क्राफ्ट में था, तो फिर बनाना भी आ गया, फिर बनाना भी सीख लिया। मेरे पास करीब 1500 करीब आसपास, और कई तरह की फ्लूट बना रखी मैंने, को इम्प्रोवाइज करता रहता हूँ, तो मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे तो हर उसमें, ये पाइप अगर घर में पड़ा होता इसका मैं फ्लूट बना लेता। पीवीसी पाइप हमारा वो एक बार वो आया, प्लम्बर आया, तो उसका पाइप चोरी हो गया घर में लगा था, मैंने कहा घर से कौन, पता लगा मैंने पाइप काट के फ्लूट बना लिए।
1: क्या बात है सर, मतलब जुनून था ये, ऐसा नहीं कह सकते, ये आपके अंदर की प्रतिभा का अतिरेक था कि आप किसी भी जो भी चीज आपको सामने दिख रही थी उसको आप एक वाद्य यंत्र में बदल दे रहे थे फ्लूट के रूप में। अद्भुत बात रही। और फिल्मों की तरफ जो बातें, हमने तो आपको मतलब मैं तो ये कहूँ कि पूरे भारत में आप कई पीढ़ियों के प्रणेता रहे। मतलब हमारे बचपन में हमने चाचा चौधरी और मुंगेरी लाल के हसीन सपने से शुरुआत की, आज की जनरेशन आपको पंचायत में देखकर खुश हो रही है, तो आप तो सभी जनरेशन, सभी दौर के पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये बात जो है कि फिल्मों में जो शिफ्ट हुआ आपका, कि आप पहली बार जब फिल्मों में, तो क्या आपने अपनी इच्छा से अभिनय चुना है, कैसे आना?
0: नहीं, अभिनय तो था, लेकिन फिल्मों के अभिनय का मुझे वो नहीं था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि करूंगा तो अच्छे तरीके से करूंगा। लोगों ने कोशिश की कॉमेडियन बनाने की, तो मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता था, क्योंकि इतनी जिंदगी सीखने में लगाई और सिर्फ मुझे एक ठप्पा लगाना चाह रहे, तो मैं, क्योंकि काफी लोग कह भी रहे थे जब एनएसडी 3 साल पूरे किए, कोर्स खत्म किया, तो वहाँ पे कह रहे थे कि आ जाओ बम्बई आ जाओ। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो थिएटर करूंगा। मैं इत्तेफाक से मुझे वहाँ रेपर्टरी में, एनएसडी रेपर्टरी में, तो मैं 10 साल फिर उसमें रहा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: कई फिल्मों को मैंने मना किया, छोटा मोटा मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। फिर किस्मत वही, मैसी साहब मिल गई मुझे, तो मैसी साहब मैंने वहीं रह के की दिल्ली में, सलाम बॉम्बे वहीं रह के की, सही परंजपी की, मैंने 3 फिल्में की वो भी वहीं रह के। बाद में मुझे शेखर कपूर पकड़ के ले गए अपनी फिल्म के लिए।
1: जी जी जी।
0: क्यों, मैंने उनकी फिल्म को मना कर दिया।
1: बिल्कुल।
0: कि कहीं से फोन आया उनका कि वो एक फिल्म बना रहे हैं दुश्मनी, उसमें कॉमेडियन का रोल है। तो मैंने फौरन कहा नहीं मुझे नहीं करना। कह रहे शेखर कपूर कर रहे, मैंने कहा कोई कर रहा हूं, मैं कॉमेडियन का नहीं करना मुझे। तो शेखर खुद ही मेरे घर पहुंच गए, मुझे फिर वो ले गया, फिर उसके बाद फिर वो सिलसिला शुरू हुआ।
1: और मैं श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगी कि मैसी साहब को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली और उसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिला। और उसके बाद की कई फिल्में ऐसी हैं, करीब 7-8 फिल्में ऐसी हैं जिन्हें ऑस्कर से भी नॉमिनेट किया गया, ऑस्कर के लिए

0: सिलेक्ट किया गया,
1: जी
0: चयनित किया गया। तो ये सारी उपलब्धियां आपके खाते में, मुझे तो लगता है उपलब्धियों की किताब है, जो मैं इस इंटरव्यू में तो नहीं बता सकूंगी, लेकिन आपके अभिनय की बात हो, आपके संगीत की बात हो, आपके वादन की बात हो, आपके स्टेज क्राफ्ट की बात हो, इतनी सारी कलाओं को आप अपने में समेटे हुए हैं, और रंगमंच आपका बेस बना, आधार बना है।
1: जी
0: अभी यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे रंगमंच के लिए जब वर्कशॉप में आते हैं,
1: जी
0: बड़े उत्साह से आते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी बीच में मुझे ऐसा लगा कि समाज के साथ जुड़ने के लिए कुछ झरोखे चाहिए होते हैं, जहां से उनकी बात हम तक आए, हम उन्हें कुछ बता सके। ये छोटी छोटी खिड़कियों में ये थिएटर्स बड़े प्रभावशाली हैं,
1: जी
0: तो उन सारे लोगों को जो थिएटर से जुड़ना चाहते हैं,
1: जी
0: क्या क्या हासिल किया जा सकता है जिंदगी में थिएटर से जुड़ के?
1: एक तो जिंदगी का सलीका थिएटर से ही मिलता है। आप अगर थिएटर से जुड़े हैं तो एक तो कभी अकेला नहीं महसूस करेंगे, और थिएटर को एक्टिंग के उसमें ना लें। अगर ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि हम एक्टिंग करने के लिए थिएटर, जिंदगी सीखने के लिए अगर आपको जाना है तो थिएटर ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ सब कुछ सीखने मिलेगा, और सीखना पड़ेगा आपको,
0: जी
1: क्योंकि थिएटर में ऐसा कोई काम नहीं जो आपको नहीं आना चाहिए। वो झाड़ू लगाने से लेके और कपड़े धोने से लेके और खाना बनाने से लेके सब कुछ, सबसे पहले जिम्मेदारी यही होती है कि आपको किचन संभालना आना चाहिए, क्योंकि वो जो रस का स्वाद जो आप तैयार करते, वही जिंदगी का स्वाद है कि आप कैसे अपनी जिंदगी को संवारते हैं। और क्या है कि सीखने के लिए समंदर पड़ा हुआ है पूरा। एक जिंदगी बड़ी छोटी सी लगती है, सच कह दूं, जिंदगी इतनी छोटी है कि इतना कुछ पड़ा हुआ है। और अगर आपने पहले से तय कर लिया कि मुझे वो बनना है, जैसे आपने मंजिल बना ली तो आप तो बन तो जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या है? इसलिए मैंने कोई मंजिल मंजिल नहीं बनाई, मैंने सीखना बस रास्ता बनाना चाहा है कि रास्ता बनाते चलूं, कहीं ध्यान नहीं जाता, अवार्ड ये मिल जाए वो, एकदम जिम्मेदारी लगती है कि आप सही रास्ते पे हैं। बस ये पता लग जाता है अगर कोई अवार्ड मिल जाता है कि सही रास्ते पे हैं, उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं कि मैं बस अब बन गया। बनता कभी नहीं है, सच कह रहा
0: बिल्कुल
1: हूँ,
0: बिल्कुल
1: जितना सीखते उतना खालीपन लगता है। तो एक तो मुझे तैरने में मज़ा नहीं है, मुझे डूबने में ज़्यादा मज़ा आता है कि डूब के अगर कोई काम किया जाए तो देखिए उसका कुछ और ही प्रभाव पड़ता है, असर होता है। कोई भी काम अगर डूब के किया जाए बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी। कल का जो नाटक था उसने बहुत सारी बातों के साथ साथ संवेदनशीलता के एक पक्ष को भी बड़े प्रबल रूप में रखा। एक मजाक के रूप में एक बातचीत शुरू होती है, बाद में एक संवेदनशील एक
1: जी
0: इंसान के रूप में बदलना, और फिर तो ये थिएटर के साथ भी मुझे लगता है कि ये जो कलाएं हैं, आज जो संवेदनहीनता के दौर से हम गुजर रहे हैं, प्रकृति के प्रति हम बोलते हैं लेकिन हम आपस में भी संवेदनहीन हो
1: बिल्कुल
0: रहे हैं,
1: जी जी जी
0: तो ये
1: जी
0: थिएटर किस प्रकार इस चीज को हमारे जीवन में वापस ला सकता है?
1: बस यही है, जैसा मैंने कल वो प्ले, यही इसीलिए मैंने किया कि भैया ये कुछ तो एक अख्तियार कर लीजिए, कोई एक चीज तो, चाहे वो पेंटिंग हो चाहे कुछ हो, अब कुछ तो एक आपका साथी होना चाहिए। हैं, इंसान साथियों में नहीं आते।
0: जी
1: हाँ, यही कोई एक कला है, अगर आप उसे अख्तियार कर लें तो फिर
2: शिमारू के
1: देखिए
2: नए
1: जिंदगी
2: वीडियोस के
1: कितनी,
2: लिए
1: लेकिन
2: सब्सक्राइब
1: डूब के करना
2: कीजिए
1: पड़ेगा,
2: और
1: चाहे
2: बेल
1: दिल
2: आइकन
1: से
2: को
1: करना
2: दबाना
1: पड़ेगा,
2: ना
1: ये नहीं कि
2: भूलें।
1: करने के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए, तो बस
0: गहराई
1: यही
0: में
1: है।
0: जाए।
1: जी जी
0: बहुत
1: जी
0: एक
1: बस
0: ही नाटक आप कई बार कई मंचों पे करते हैं,
1: जी
0: क्या कुछ नया हो जाता है? जैसे एक राग मालकोश कोई
1: जी
0: प्रस्तुत
1: जी
0: करता है एक
1: जी
0: मंच
1: जी
0: पे, अगली बार फिर राग मालकोश ही गाता, फिर
1: जी
0: भी वो नया होता है।
1: हाँ, क्योंकि मैंने बांध के कुछ नहीं रखा है कि रट्टे मार के मैं बिल्कुल नहीं करता, समझ के, और वो है उस तरह से मैंने रिहर्स किया इस नाटक को, तो हर दिन चेंज हो जाता है, हर दिन कुछ ना कुछ फर्क आ जाए, और मज़ा उसी में है।
0: वाह
1: एक
0: वाह।
1: जैसे में नहीं आता मज़ा, एक जैसे मज़ा ही नहीं आता, तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि कल जैसे किया था आज ही वैसे नहीं,
0: जी
1: फिर ऑडियंस को देख के भी फिर कुछ
0: इम्प्रोवाइज होता है।
1: हाँ,
0: जी
1: जी
0: कई सारी भाषाओं पर आपका अधिकार है
1: जी
0: और कई सारे डायलॉग्स आपके बहुत सारे लोगों तक पहुंचते हैं और लोगों को बहुत हंसाते हैं। आप हर भाव में बड़े पारंगत हैं, आप हंसा भी सकते हैं, रुला भी सकते हैं, गंभीर भी हो जाते हैं, तो ऐसी कोई बात हमारे श्रोताओं तक इस रेडियो के माध्यम से पहुंचे?
1: वो जो रास्ते में दवा बेचने वाले नहीं होते हैं, तो मैंने एक बार करके दिखा दिया था, यूं इम्प्रोवाइज है वो सारा। तो
0: जी
1: लो जी उठ बैठ, मुश्किल कुशा है जिसको काटे काला नाग कई पैर जिए, लो भाई मेरे सज्जनों जिसको काटे जुल्फ नागर मांग कर पानी ना पिए, अजगर करे न चाकरी पंछी करे ना काम, दास मलू का कह गए सबके दादा राम, बच्चे जरा बैठ जा, तो मेहरबान कदरदान उगाल दान थूक दान फीक दान, आपकी बस्ती में आपके नगर में हर माई की 24 तारीख को आता हूँ, क्यों आता हूँ किस लिए आता हूँ बताऊंगा, पेट में दर्द होता है मसूड़ा सूख गया है, पेट में दर्द होता है जो दवा बताऊंगा, एक तोला गद्दी पर रख के फांकी मारू, ऊपर से ठंडा पानी पियो सुबह को खाओ शाम को, ना मर्ज रहेगा ना मरीज रहेगा, दांतों में दर्द हो गया मसूड़ा सूख गया है, जो मंजन बताऊंगा, एक तो लगती पर के दो घिसे इस तरह मारो, दो घिसे उस तरह मारो, ठंडे पानी से कुल्ली करो 3200 बार, बस भूलना।

0: क्या बात है सर, बहुत सुंदर बहुत
1: थैंक यू
0: सुंदर।
1: सो मच
0: कितने अद्भुत अनुभव आपको अपनी इस रंग यात्रा के दौरान हुए हैं,
1: जी।
0: और ये खुशी, ये हंसी, ये जो आनंद है आपके जीवन में, और उमंग लाए और
1: थैंक यू सो मच,
0: आप
1: थैंक यू
0: बहुत
1: थैंक
0: आगे
1: यू
0: तक
1: थैंक यू
0: जाएं।
1: थैंक यू।
0: बहुत ही अच्छी बातचीत, बहुत सारे पक्षों को हमने आज इस बातचीत में समेटने की कोशिश की है। हमारे श्रोताओं में बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी लोग आज आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
1: एक तो ऑडियंस को देख के बड़ा अच्छा लगा मुझे, और ऐसा लगता है कि बार बार वापस आता रहूं। और क्या है कि सिर्फ ऐसा लगता है कि सिर्फ परफॉर्म करनी, यहाँ से भी कुछ सीख के ही जाता हूँ कि जिस तरह के लोग, जिस तरह से प्यार यहाँ मिलता है, तो ऐसा लगता है कि क्यों ना में शामिल रहें। तो बस यही है, और बस यहाँ जो थिएटर रंगकर्मी है उनसे कहना चाहूँगा कि वक्त ज़ाया ना करें, अपने आप को पहचानें, क्योंकि खूबी सबके अंदर ईश्वर ने दी हुई है। खामियां भी हैं, खूबियां भी हैं, तो खामियों को खूबियों में तब्दील करिए, और जो खूबियां उनको और बेहतर बनाने की कोशिश करिए। सीधी बात यह है, वक्त जाया ना करो, लेजी
0: बिल्कुल,
1: मत बनो, प्लीज।
0: बहुत अच्छा लगा आज रघुवीर यादव जी हमारे साथ रहे, और वाकई में आपकी ये सृजनधर्मिता, इसी तरह आपकी मंजिल, जैसा आपने कहा कि आप मंजिल को देख कर नहीं चल रहे हैं बल्कि यात्रा के अलग अलग पड़ाव में आप लोगों से जुड़ रहे हैं, प्रकृति से जुड़ रहे हैं, और सारी बातों को साथ लेकर आपके अंदर जो कुछ भी है उसे उड़ेल कर आप दे रहे हैं हम सबको। ये यात्रा ऐसी ही बनी रहे, आपकी सृजनधर्मिता से आप लोगों को यूं ही प्रेरणा और मनोरंजन देते रहें, यही मेरी कामना रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर
1: थैंक
0: यहाँ
1: यू
0: आने
1: सो
0: के
1: मच,
0: लिए और
1: थैंक यू सो
0: बातचीत
1: मच,
0: करने
1: थैंक
0: के
1: यू,
0: लिए।
1: थैंक यू।

0: इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भारत के प्रसिद्ध अभिनेता और रंगकर्मी श्री रघुवीर यादव से लिए भेंट वार्ता। भेंट करता थी सुप्रिया भारतीयन। यह आकाशवाणी बिलासपुर की प्रस्तुति थी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिले, इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजने वाले हैं। श्रोताओं, आपसे लेकर 9:55 तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है चित्रलोक कार्यक्रम में। आइए अब आपको सुनवाते हैं विशाल दादलानी का गाया हुआ पटियाला हाउस फिल्म का ये गाना। लिखा है अन्विता दत्त ने, शंकर एहसान लॉय का संगीत है।

आइए अब सुनते हैं जब तक है जान फिल्म का गाना नीति मोहन की आवाज में, साथ में है रैप सोफिया अशरफ का, गुलजार के बोल ए आर रहमान का संगीत।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। आइए सुनते हैं जीरो फिल्म का ये गाना, अभय जोधपुरकर का गाया हुआ। इरशाद कामिल के बोल हैं और अजय अतुल का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब सुनिए अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर का गाया हुआ वजीर फिल्म का ये गाना। गुरप्रीत सैनी और दीपक रमोला ने इस फिल्म के गाने लिखे हैं और रोचक कोहली का संगीत है।

सबसे भारी यारी जिंदगी से भी प्यारी। अब चित्रलोक कार्यक्रम का ये गाना जसलीन रॉयल की आवाज में डियर जिंदगी फिल्म से कौसर मुनीम ने लिखा है और अमित त्रिवेदी ने संगीत तैयार किया है।

जिंदगी से प्यार है, गीतों में करार है। सुबह भीनी हो जाए, शाम खुलकर मुस्कुराए, इन गीतों के साथ ये कहती है माइक से ऐप तक खींची दोस्ती की डोर। मगर वक्त पर कहाँ चलता है किसी का जोर, ऐसे ये डोर खींचती रहे, एक दूसरे को सुनने सुनाने का एहसास जगा रहे। लव यू जिंदगी, तमाम पलों के साथ शुक्रिया कहते रहे हम और आप। अब दीजिए राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी।

0: गए।
1: राजकुमार यानी कुलभूषण पंडित। राजकुमार फिल्मों में आने से पहले मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर थे। उस जमाने में ये ओहदा अपनी आन बान के साथ सुसज्जित करने के बाद उसी चाल से वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। अपनी अनोखी अदाकारी और खास शैली के डायलॉग डिलीवरी से अपना एक मुकाम बनाया और उसे जिस बुलंदी पर पहुंचाया उसे छुपाना फिर किसी और की बस की बात नहीं रही। शुरुआत तो कोई धमाकेदार नहीं हुई मगर रंगीली में उन्हें पहला मेजर ब्रेक मिला। वर्ष था 1952। उनकी नायिका थी रेहाना। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं मर्यादा फिल्म का ये गाना जो बनी थी 1971 में।
2: कहते हैं हर दयार में आती है फिर बहार, खिलते हैं फूल भी वहां दौरे खिजां के बाद।

0: पेश प्रोग्राम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने जानी राजकुमार पर।
1: दिल गया रौनके हयात गई,

राजकुमार एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने हर भूमिका को सजीव कर दिया है, वो फिर मदर इंडिया का मजबूर किसान हो या दिल एक मंदिर का कैंसर ग्रसित मरीज हो। जिस भूमिका को कुछ भी स्कोप नहीं होता उसमें भी वो अपनी अदाकारी व लाजवाब संवादों की अदायगी से जैसे रंग भर देते।

राजकुमार देखने में एक साधारण व्यक्तित्व के मालिक थे। न हीरो जैसा रंग रूप था उनका, पर फिर भी अपनी बेमिसाल अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसे पाने में हर कोई सफल नहीं होता। फूल बने अंगारे इस फिल्म में वो फौजी बने हैं। इस फिल्म के गाने भी काफी पॉपुलर हुए हैं और उन्हें पर्दे पर गाया है राजकुमार ने। गाने का रोमानी अंदाज और राजकुमार की पुरकैफ अदायगी से जैसे चार चांद लग गए हैं।

1959 में उनकी तीन फिल्में आई थीं, उजाला, अर्धांगनी और शरारत। और भी कई फिल्में आती रही थीं, जैसे 1960 में दिल अपना और प्रीत पराई, दिल एक मंदिर और काजल।

0: राजकुमार अपने असली रंग में आए 1965 में बीआर फिल्म्स की प्रस्तुति मल्टी स्टारर फिल्म वक्त में। निर्देशक थे यश चोपड़ा। वास्तव में इसी फिल्म से लोगों को उनकी अनोखी संवाद अदायगी के दर्शन हुए।
1: माल आखिर खरीदार के पास ही जाता है चिनॉय सेठ।
2: माल क्या लाए?
1: आज फिर अपने आप को बेचने आया हूं।
2: ओ, कीमत?
1: चिनॉय सेठ रवि मेरा भाई है।
2: तुम्हारा भाई?
1: सगा भाई।
2: यह रात कब मालूम हुआ? तो
1: मंगनी से एक दिन पहले। उस रात जब मैं उससे निरवी की जान लेने की नियत से गया था, और आज वो सब खुशियां लुट गईं। मीना और रवि की मंगनी टूट गई। रवि घर छोड़कर चला गया। मित्तल रवि के बाप का नाम जानना चाहता है, और वो नाम सिर्फ मैं बता सकता हूं।
2: फिर बताते क्यों नहीं?
1: इसलिए कि मेरा एक माजी है, और वो माजी सिर्फ एक आदमी जानता है।
2: और वो आदमी मैं।
1: हाँ, सौदा ये है चिनॉय सेठ कि मैं अपनी आत्मा आपके हाथ बेचता हूं। जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा। जो कहेंगे आप वही करूंगा, और आप अपनी जबान बंद रखेंगे ताकि मेरे गुनाहों का साया रवि के आने वाली जिंदगी पर न पड़े।

बीआर फिल्म्स के साथ उनका रिश्ता इस प्रोडक्शंस की अगली फिल्म हमराज में भी रहा, जो आई थी 1967 में। इस फिल्म का उन पर फिल्माया गया ये गाना आज भी उतना ही पॉपुलर है।

एक साल बाद यानी 1968 में सुप्रसिद्ध उपन्यासकार गुलशन नंदा के उपन्यास पर आधारित फिल्म नीलकमल में एक पेचीदा रोल उन्हें मिला। उस रोल को भी उन्होंने अपनी अद्भुत अभिनय क्षमता से ऐसा साकार किया कि बयान करना मुश्किल।

ने तरह की एक अद्भुत फिल्म है जिसका हर किरदार डायलॉग पोएट्री के रूप में बोलता है, फिर भी कहीं पर भी नाटकीयता नजर नहीं आती। ये चेतन आनंद के निर्देशन का तो कमाल था ही, पर मेन रोल कर रहे फिल्म के रांझा यानी राजकुमार की एक्टिंग का भी लोहा हर एक को मानना ही पड़ा है।

1972 में फतेहपुर शीखरी के बैकग्राउंड पर एक ऐतिहासिक लगने वाली फिल्म बनी थी लाल पत्थर। वो भी एक जीता जागता नमूना है राजकुमार की अदाकारी का।

इसी साल यानी 1972 में रिलीज हुई थी कमाल अमरोही की यादगार फिल्म पाकीजा। हर दृष्टि से संपन्न ये फिल्म भी एक दस्तावेज है। कमाल अमरोही के कमाल के डायलॉग राजकुमार ने बाकमाल तरीके से कहे हैं कि भुलाए नहीं बनते। आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे।

फिल्म मेरे हुजूर लखनवी तहजीब का बेजोड़ नमूना है। इसमें बदनाम नवाब सलीम का किरदार भी बड़ी ही शान शौकत के साथ तबीयत से निभाया है राजकुमार ने।

0: मुस्लिम अख्तर, हमने अख्तर को दौलत दी ये सच है, हमने अख्तर को अख्तर नवाब बनाया ये भी सच है, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा कि आप गलत रास्तों पर जाए और आवारगी का चोला पहनकर कल का नवाब सलीम बन जाए। खुदा की कसम हमने ये कभी नहीं सोचा, हमने ये कभी नहीं सोचा कि हमारी दी हुई दौलत से एक ऐसा मकबरा बनाया जाए जिसमें सिर्फ हमारे दिल की ठंडक के लिए आपका सुहाग आपसे छीन कर दफन कर दिया जाए। आपको अगर अब भी यकीन नहीं है तो बच्चे के सर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं। नहीं नहीं, आपका क्या भरोसा, इस वक्त तो आप ये भी कह देंगी कि मेरे बच्चे की झूठी कसम खाते हैं।
1: नहीं नहीं, आप बच्चे की झूठी कसम नहीं खा सकते। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई, परेशानी ने मुझे पागल बना दिया है, तन मन की सूद खो बैठी हूँ, न जाने आपको क्या क्या कह गई, मुझे माफ कर दीजिए।
0: मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना, अब आप ये बताइए कि अख्तर।
1: जी हाँ, बात तो पुरानी है, लेकिन मुझे उस वक्त मालूम हुई जब वो नशे में कितनी फिरदौस का नाम दे रहे थे।
0: जाइए, आप इत्मीनान से घर जाइए। लखनऊ में ऐसी वो कौन सी फिरदौस है जिसे हम नहीं जानते।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 9:55 होने ही वाले हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। राजधानी रायपुर में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही खेती किसानी के काम में आई तेजी, निर्धारित लक्ष्य का लगभग 13% बोनी का कार्य पूरा हुआ। अब समाचार विस्तार से। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। कार्यशाला में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। राजधानी रायपुर में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। सहकारिता विभाग और अपेक्स बैंक द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से किसान, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होंगे। कृषि मंडपम ऑडिटोरियम में होने वाले इस 2 दिवसीय सम्मेलन में सहकारिता, कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले आज सुबह रायपुर के मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में युवा, विद्यार्थी, किसान, सहकारी संस्थाओं के सदस्य और विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थयात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। श्रद्धालु लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यह यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही खेती किसानी के काम में तेजी आ गई है। अब तक लगभग 6,25,000 हेक्टेयर

हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी पूरी हो चुकी है, जो निर्धारित लक्ष्य का लगभग 13% है। इस खरीफ सीजन में राज्य में 48,69,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों को मांग के अनुरूप खाद और प्रमाणित बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही खाद बीज वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कार्रवाई करने को कहा है। कृषि विभाग के अनुसार अब तक किसानों को 7,28,000 मीट्रिक टन उर्वरक और 3,00,000 क्विंटल से अधिक प्रमाणित बीज वितरित किए जा चुके हैं। मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। वहीं प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हुई। वहीं दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में एक दो स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले के औंधी क्षेत्र में कल आए आंधी तूफान में एक पेड़ 11 KV विद्युत लाइन पर गिर गया, जिससे आसपास के दर्जनों गांव में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। सूचना मिलने पर विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची और देर शाम तक विद्युत आपूर्ति को बहाल किया गया। युवाओं, महिलाओं, किसानों और नए उद्यमियों को स्वरोजगार और उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने जिला व्यापार और उद्योग केंद्र द्वारा आज सुकमा में तेजस कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला में विशेषज्ञ प्रतिभागियों को स्टार्टअप पंजीकरण, विभिन्न शासकीय योजना, ऋण, बैंक और वित्तीय सहायता, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और व्यवसाय शुरू करने और उससे आगे बढ़ाने के बारे में जानकारी देंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। राजधानी रायपुर में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही खेती किसानी के काम में आई तेजी, निर्धारित लक्ष्य का लगभग 13% बोनी का कार्य पूरा हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम गुंजे स्वर गांव के। आज आप सुनेंगे श्रवण भक्ति गीत बाल मुकुंद पटेल और साथियों से, और राजा नल के किस्सा गंगादास और साथियों का गाया हुआ। कार्यक्रम में पहले सुनी बाल मुकुंद पटेल और साथियों का गाया श्रवण भक्ति गीत।

0: प्रधान बेटा रहे जी।
1: हाँ
0: श्रवण कुमार।
2: अच्छा
0: माता पिता के परम भक्त है भैया।
1: हाँ
0: माता पिता ला बिना भोजन कराए अपन भोजन नहीं करे।
1: हाँ
0: माता पिता के आज्ञा लेकर के
1: हाँ
0: गुरु के घर में पढ़े जावे विद्या प्राप्त करे।
2: आजी
0: माता पिता के सेवा में
1: हाँ
0: कभू कमी होवन नहीं दीच।
1: हाँ
0: एक दिन अंधी अंधा के थे बेटा सरवान।
2: हाँ भैया
0: अब तक जवान हो गए बेटा।
1: हाँ
0: नारी पुरुष रहना संसार में गाड़ी के दो पहिया के बरोबर है बेटा।
1: हाँ
0: सरवान एक काम करते बेटा।
1: हाँ

0: शादी कर ले बेटा। हाँ भैया।
1: हाँ
0: श्रवण कुमार बा नारी खोजे पर।
2: हाँ जी
0: नाऊ ब्राह्मण ल भेजे है।
1: हाँ
0: ज्ञानवती नाम की लड़की।
1: हाँ
0: शांतिपुर में बहुत सुंदर रहे।
2: अच्छा जी
0: श्रवण के लायक रहे।
1: हाँ
0: ओकरे संग में बाबू।
1: हाँ
0: श्रवण कुमार की आज लगन पत्रिका बिहावल धरा दी।
2: अच्छा
0: श्रवण के बिहाव।
1: हाँ
0: ज्ञानवती लड़की के साथ में
2: ये भाई
0: हो गेगा।
1: हाँ
0: सुंदर नारीला श्रवण कुमार।
1: हाँ
0: अगाई अपने

0: ए नारी
1: ही मन मोर ब्रह्मा विष्णु महेश ही मन मोर पूजा है।
0: हाँ सबो देवताए जी
1: ही मन गंगा यमुना त्रिवेणी है। अरे नारी ते तन मन धन से कर सेवा करवे।
0: हाँ
1: ज्ञानवती बोले हाओ प्राणनाथ मैं जरूर सेवा करूँ।
0: अच्छा
1: ये चंडाली नारी है।
0: हाँ
1: एक दिन सेवा करी दो दिन एक महीना दो महीना।
0: हाँ
1: थे कहाँ के अंधरी अंधरक सेवा करत करत पति पत्नी के कभू सुख नहीं मिली।
0: या
1: ये चंडाल चंडालीन मतलब कैसे के मरे तो मोला सुख मिला दाई की ही।
0: हाँ
1: न तो खाए के सुख न पिए के सुख।
0: हाँ
1: एक दिन वो नारी हा कुम्हार के घर में गीच।
0: हाँ
1: और कुम्हार लगे थे भैया कुम्हार
0: हाँ जी
1: मोर बर एक सुंदर हड़िया बना दे भैया।
0: हाँ
1: कुम्हार के थे कसना हंडी बनावा भाई।
0: हाँ
1: तो ए हंडी ला तो एक काम कर दुए खोली के ये लाते हर गवाना दे भाई। एक कुम्हार भैया एला दू खोली

0: एकर पैसा ले ले महाराज।
1: हाँ।
0: एकर भेदला कोनो झन जाने।
2: हाँ जी।
0: तू खोल के हंडी बनवा लीजगा।
1: हाँ।
0: घर में लाके एक ठन खोल में खीर पेज रांध है बाबू।
1: हाँ।
0: आ एक ठन मा मटहा पेज
2: या
0: मही डारे रहे हो मा।
2: हाँ जी।
0: रोज के अपन पति और अपन हा खीर पूड़ी खावे।
2: अच्छा।
0: और अंधी अंधा ला।
1: हाँ।
0: वो महेरू पेज ला देवाए
2: देवाए जी,
0: ताकि बैरी मन जल्दी मर जाती।
2: हाँ।
0: तो मोला सुख मिलती
2: या
0: असने वो चंडाली नारी कराए। अंधी अंधा कथे नारी बहु के आले सुख करबो कहें।
1: हाँ।
0: हमला कैसना भोजन मिला थे
2: या
0: अंधरी के थे सुन ना जोड़ी, जैसे भी मिला थे बेटा बहुल हमर मन के बात पता नहीं चलना चाहिए। खा के जिंदगी ला सुखी रख।
2: हाँ जी।
0: पानी मांगेगा।
1: हाँ।
0: तो बाहरी लेके पटक दे
2: या गुस्सा के।
0: अंधी अंधा महा दुखी दिन ला काटत रहे।
1: हाँ।
0: एक दिन श्रवण कुमार कहती अरे नारी।
1: हाँ।
0: माता पिता के संग मैके संग बैठ के आज भोजन करना है।
2: अच्छा जी।
0: सब अलग अलग थाली में।
1: हाँ।
0: वो नारी भोजन लेके।
1: हाँ।
0: राजमहल में मड़ावा था
2: ये भाई।
0: श्रवण कुमार खाते खाते कहती पिताजी आज आपके थाली के मैं और

0: माँ पिताजी मैं थोड़ा आपके प्रसाद पाना चाहता हूँ पिताजी आपके थाली के।
1: हाँ।
0: अंधी अंधा कहे नहीं सरवन नहीं बेटा नहीं नहीं मत खा बेटा लेकिन श्रवण कुमार जाके माता पिता के थाली के
1: हाँ
0: वो खट्टा मेहरू भेजला खा के देखते तो खट्टा रहे जी
2: या
0: अपन थाली के लिए दिखाए
1: हाँ
0: तो खीर में बने रहे।
2: अच्छा
0: श्रवण कुमार बोले पिताजी
1: हाँ
0: तब का दिले नारी के विपत्ति ने बोला नहीं बताए पिता
2: नहीं बता रहे वाह
0: धिक्कार है तुला चंडाली नारी
2: वाह भाजी
0: मोरिष्ट देव माता पिता लते महान दुख दिए
1: हाँ
0: पिताजी
1: हाँ
0: डंडा श्रवण कुमार गिरे है पिता ये कर लिए मोला अच्छा।

0: चंडाली नारी
1: हाँ।
0: तै घर ले इसी वक्त चले जा
1: हाँ।
0: तै त्रियाज तोला मारे में पाप लगी।
2: सही बात है।
0: एक नौकर ला साथ लगा दीजिए
1: हाँ।
0: बोले जाए चंडाली लेकर मायके में छोड़ के आ जा।
2: वाह
0: भैया
2: हाँ जी।
0: ज्ञानवती हाथ जोड़ के बोले मुला क्षमा कर दे स्वामी हाँ। मैं गलती कर रहे अब की बात गलती नहीं करा
1: हाँ।
0: श्रवण कुमार बोले नहीं जे मोर माता पिता ला दुख दे है
1: हाँ।
0: एकर फल ला तुला भोगना पड़ी रागी
1: हाँ।
0: माता पिता करा हाथ जोड़ के बोलते पिताजी आपे मन के कहे मैं शादी करे
1: हाँ।
0: बिहाव करे नारी ला घर में लाए हो मैं का जनाओ की चंडाली तुहर कर धोखा करी
1: हाँ।
0: का सेवा करो पिता अंधी अंधा कथे सुन ना श्रवण कुमार एक काम है बेटा
1: हाँ।

0: गूंजे स्वर गांव के कार्यक्रम की शुरुआत में आपने सुना श्रवण भक्ति गीत बाल मुकुंद पटेल और साथियों का गाया हुआ।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
3: गुंजे स्वर गांव की कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं गंगा दास और साथियों का गाया राजा नल के किस्सा।

0: की भैया
1: हो
0: नरवरगढ़ में राजा नर रहे।
1: अच्छा
0: गढ़ पिंगला में राजा बन रहे
1: हो।
0: उम्र के कथाला
1: हो
0: सुंदर मजा के राजा नर रहे तो कहाँ चले संगवारी
1: कहाँ चले भैया
0: तन्नापा दुख बुढ़ापा दुख पा के राजा नर रहे।

0: राजी भैया
1: हो
0: समय में
1: हो
0: राजा नर रहते हैं
1: हो
0: साहू के घर में नौकरी लगे है भैया।
1: अच्छा
0: रात के समय में राजा नर रहला तेला साहू रहते पूछा था भैया
1: हो
0: का कहे जी
1: का कहे
0: सुंदर वार नर रहते साहू के घर में रात बितात हवे
1: हो
0: वहाँ पर में रानी देवंती और राजा नल दोनों कोई वहाँ हवे।
1: अच्छा
0: काकर घर साहू के घर में
1: हो
0: रात दिन साहू पासा खेल के पूरा जहजात लहाज रहा भैया।
1: अच्छा
0: वही समय में माया बीबी के झगड़ा फंस गए
1: हो
0: साहू आ समय के।
1: अच्छा
0: तब नल रहते कहने लगे
1: हो
0: अरे भैया का रात दिन पिटी काटा हो तो कारण का है।
1: अच्छा

0: वो समय में सवैन कहा है
1: का कहा है
0: झगड़ा ला सुन के राजा नल पूछने लगे
1: का
0: रात दिन तुमन कटर किटिर होत हो जी हम तो यार मिजवान हन
1: हाँ।
0: वो समय के बात में सवैन कहा है सुन ले राजा महाराज कथा मैं आप काला बताऊं
1: हाँ।
0: अरे हमारे यहाँ रात दिन रात में जाते
1: अच्छा
0: तब कहाँ जाते तुम्हारे यहाँ साहुआ
1: कहाँ जाते
0: राजगढ़ पिंगला में जाते जे में राजा बहन के घर में जाके रात दिन पासा में
1: हाँ।
0: सारी जहाजात और धन दुगानी ला हार गए
1: हाँ।
0: एकर खातिर हम नहा
1: हाँ।
0: नर पुरुष दोनों झगड़ा घर में मते हवे
1: अच्छा
0: यहाँ बचलना राजा नल सुन के
1: हाँ।
0: का कहा है भैया
1: का कहा है भैया
0: राजा लड़ा सुन के वही समय में समय ला कहा है तोर साहूला मोर जगह में भेज दे ते हर रात के समय में
1: अच्छा
0: जे समय खेले ले जाहे उसी समय वो साहूला मोर जगह भेज दे कहा थे
1: हाँ।
0: राजा नल
1: अच्छा
0: वो समय में का होते जी
1: का हो भैया।

0: जाते भैया।
1: हाँ।
0: साहुन के बात ला सुन के राजा नल के पास में चले गए।
1: चले गए
0: और जाके कहा हाथ जोड़ के पूछने लगे।
1: हाँ।
0: ते महाराज कैसे मुलाते है बलाहत 12 बजे रात के आपके बंगला में आऊं।
1: अच्छा
0: वही समय में राजा नल कहने लगे।
1: हाँ।
0: सुन ले साहू कथे ते जाके पास में आज पूरा जहाजात ला धन संपत्ति सोना चांदी ला सब तय हार के हवा।
1: अच्छा
0: एकर खातिर मैं तोला बतावत हूँ।
1: हाँ।
0: कि आज तय राजा बन के घर में तय पासा खेले ला जात है। एकर खातिर मैं तोला आज में बतावत हूँ कहीं के राजा।

0: छोड़ के राजा नल के पास में बैठ गए भैया।
1: हाँ।
0: तो राजा नल का कहे जी?
1: का कहे?
0: तय कहाँ चले रात के समय में?
1: हाँ।
0: मैं पासा खेले जाता हूँ।
1: अच्छा
0: संगवारी भैया, ऐसे के राजा

0: उस समय में राजा नल कहने लगे,
1: हाँ
0: देख जी साहू तय जात आज पासा खिलेला।
1: अच्छा
0: कोई मत जाने वहाँ खिलाड़ी है।
1: हाँ
0: ऐसे बड़ा धीर से ते मन में कही बे।
1: अच्छा
0: अरे जा रे पासा भलसत होवे राजा नल के।
1: हाँ
0: ते पासा पलट जा।
1: हाँ
0: ऐसे ते पासा वहाँ पर में जाके फेंक बे।
1: अच्छा
0: ऐसे साहू ला राजा नल रहा।
1: हाँ
0: और वहाँ घर में उड़ा बतावा थे भैया।
1: अच्छा
0: एती के कथा का होते जी
1: का होते
0: साहू रहते 12 बजे रात के समय में वहाँ तो

0: पासा में साहू रहा थे हा।
1: हो।
0: राजा बहन के घर में जाके पासा खेलेला बैठ गए।
1: अच्छा
0: हर राजा बहन के घर में जब पासा खेलेला बैठे है तो पूरा जहाजात लग तो हार गिरा जी।
1: अच्छा
0: वही वचन राजा नल दे रहा थे वो चलना ख्याल करके साहू हा।
1: हो।
0: जा रे भलसत हो बे राजा नल के कथे मोर दे हुए पासा वापस पलट जा कह के वहाँ पर मैं सुमरन कराए।
1: अच्छा
0: साहू रहते धन संपत्ति हारे रहा तेरा भैया। वहाँ पर मैं जीत के।
1: अच्छा
0: और पहट 5 बजे रात में राजा बन के घर ला वापस साहू आने लगा थे।
1: अच्छा
0: यहाँ पर मैं का हो थे गुरुदेव।
1: हाँ।
0: सुंदर मजा के साहू रहते हा।
1: हाँ।
0: राजा नल सो रहा है।
1: हाँ।
0: वही तरफ से आने लगा है।
1: हाँ।
0: पर्ची में राजा नल रहा है और भीतर अंगना में साहू और सवैन दोनों कोई रहा जी।
1: हाँ।
0: वहाँ पर कुटिया में वो मनहा गर्भ गुसर में।
1: हाँ।

गंगा दास और साथियों का गाया राजा नल के किस्सा आपने सुना, और इसी के साथ गुंजे स्वर गांव के कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आपके पत्रों और आपकी पसंद के गानों को लेकर आज मैं हूँ आपके साथ सीमा साहू। स्वागत है साथियों आपका कार्यक्रम में, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में जुदाई फिल्म से। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, और इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा, शारदा, दामिनी वर्मा ने। ग्राम पहाड़ा अहिवारा जिला दुर्ग से पोषण, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछोर। दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, बाजार परा बेमित्रा से भाई भरत लाल सिन्हा, लव कुमार और लक्की सिन्हा, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र, खुशी, रौनक सेन, नैला बोरसरा जांजगीर से हैं हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद, अमन कुमार, मीनाक्षी, उमाबाई, ठगिया देवी, अंजुलता, विष्णु प्रसाद, मोंगरा देवी मिश्रा और प्यारे लाल मिश्रा।

आपकी पसंद कार्यक्रम का पहला गाना आपने सुना जुदाई फिल्म से, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में एक दूजे के लिए फिल्म का गाना। गीत लिखा है एक बार फिर आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है हथनी पारा भाटापारा से दुर्गा दुर्गेश्वरी गीतू मुकेश वर्मा हरीश किरण दुलारी वर्मा ने। रुआ बांधा सनिचरी बाजार भिलाई से हैं सुशील सेया कल्पना सौरभ शौर्य और शुभम जैन। नेहरू वार्ड भाटापारा से हैं प्रेमलाल साहू भूपेंद्र दुष्यंत राघवेंद्र साहू। मोहन पारा कल्तरा से अभिनव अभिषेक और उमा देवी साहू। रिंगनी से दिनेश और करुणा वर्मा। भाटापारा से दानसिंह

रावत, दानु पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ, नीरज रावत, पेंशन बाड़ा रायपुर से हैं, सोमनाथ यादव, वंदना, सूर्य प्रकाश, शीला, कनक, गुनगुन, बेबी, तन्मय यादव।

एक दूजे के लिए इस फिल्म का गाना भी आपने सुना, लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आपकी पसंद कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुन लें।

0: देखते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: नमस्कार मित्रों, यातायात पुलिस बिलासपुर की ओर से जिले की यातायात संबंधी जानकारी के साथ मैं हूं उमाशंकर पांडे। लीजिए सुनिए आज का ट्रैफिक अपडेट साथ बिलासपुर। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कोटवार एसोसिएशन आप छत्तीसगढ़ के प्रांतीय संघर्ष समिति के आह्वान पर आज कोटवारों द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन प्रस्तुत किए जाने की योजना है। कोटवारों के द्वारा आज पूर्वाह्न 11 बजे नेहरू चौक में धरना, पश्चात कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया जाएगा। धरना में शामिल सभी सदस्यों से अनुरोध है और सर्वविदित भी है कि नेहरू चौक बिलासपुर जिले का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक चौक है, जिसके इर्द गिर्द सैकड़ों शासकीय अशासकीय कार्यालय और माननीय जिला न्यायालय भी स्थित है। इसलिए ध्यान रखें, आपके धरना प्रदर्शन या ज्ञापन सौंपते समय तनिक भी यातायात बाधित ना हो, क्योंकि यहाँ यातायात बाधित होने से शासकीय कार्य भी प्रभावित होते हैं। अतः धरना के समय सड़क पूरी तरह खाली रखें और ज्ञापन सौंपते समय भी कलेक्टर कार्यालय गेट में इस प्रकार भीड़ न लगाएं जिससे यातायात में किसी प्रकार की रुकावट हो। इसके साथ ही शहर से लेकर संपूर्ण बिलासपुर जिले में यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, ये सच है कि मोबाइल फोन हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। लगभग हर क्षेत्र में मोबाइल अपना स्थान बना चुका है। वार्तालाप या संदेशों के आदान प्रदान, मनोरंजन, देश विदेश के समाचार, शिक्षा, पैसों के लेन देन जैसे अनेकों कार्य मोबाइल फोन से हो रहे हैं। लोग उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते हर वक्त मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, किंतु ध्यान रहे अति सर्वत्र वर्जित। अतः किसी भी चीज की अधिकता या सीमा से अधिक उपयोग भी घातक हुआ करता है। वहां चलाते हुए मोबाइल से बातें करते या गाना सुनते तो सड़क दुर्घटना का घटित होना आम बात हो चुकी है, किंतु अब लोग पैदल चलते भी मोबाइल का प्रयोग करते सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग सूर्योदय के पूर्व मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं, किंतु पैदल चलते या दौड़ते भी मोबाइल से जुड़े रहते हैं। सुबह सुबह पैदल चलने वाले प्रायः सभी इसी कारण सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। अतः समय रहते सतर्क हो जाइए, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
0: ये था आज का ट्रैफिक अपडेट।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है साथियों। अगला गाना आप सभी श्रोताओं की पसंद पर ग्राम बुड़गहन से राम दुलारी, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता, शशिकांता प्रजापति, पोटिया कलादुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक और सीमा साहू, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम बेगम, परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम राजा, लूत्रा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम और मोहम्मद अजीज, भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चोआराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, लेखराम यदु, राधे

श्याम जितेंद्र साहू, मारवाड़ी को अभाटा पारा से सिया राम और अश्विनी पांडे, सोनाडीह से सुब्रत चौधरी और बेबी अनिशा, रायपुर से हैं नीलू मेघ। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं अंजाम फिल्म का गाना अभिजीत की आवाज़ में। गीत लिखा है समीर ने और धुन तैयार की है आनंद मिलिंद ने।

अंजाम फिल्म का गाना आपने सुना अभिजीत की आवाज़ में, और अब आइए सुनते हैं आपकी पसंद कार्यक्रम का आखिरी गाना अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। गीत लिखा है समीर ने, धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने, और इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है दतरंगी भाटापारा से नोखीलाल वर्मा, हीरामणि, पारसमणि और पुष्पेंद्रमणि वर्मा ने। ग्राम दरचूरा से हैं ददुआ साहू, भूरी, संतोषी, दुलौरिन, रेखा, मोतीलाल, कामेश्वरी और प्रीतम कुमार साहू। ग्राम रसेड़ा कलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, कीर्ति कुमार, संध्या, डिकेश कुमार, वासु, डॉली और पूर्वेश साहू। ग्राम महमदपुर भक्तिन बाजार अकलतरा से हैं रमेश कैवर्त, राजकुमारी आरती कैवर्त। महादेवघाट अमलेश्वर से डोमन, सुमन, मिथलेश, तारनी, सूरत, सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर। भाटापारा दतरेंगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार वर्मा, प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले आप हैं गौतम नगर जिला नांदेड़ से। शांति नगर भाटापारा से हैं मिलव दास, कुलदीप, संतोष दास, संदीप दास, अजीत दास, कुलदीप, बिरझा, संजना और लक्की। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की पसंद पर साजन चले ससुराल फिल्म का गाना अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में।

साजन चली ससुराल, इस फिल्म का गाना भी आपने सुना अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। गीत लिखा था समीर ने, संगीत तैयार किया था नदीम श्रवण ने। और इसी के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, इस समय सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए पेश है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं,
3: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
2: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।
3: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा, चलिए श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
2: ठीक है, तो श्रोताओं

0: उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है।
1: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
0: श्रोताओ, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओ, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
1: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
0: श्रोताओ, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
1: श्रोताओ, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है।
0: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप हैं। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
1: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते।
0: जी
1: धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
0: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं। और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है,
0: जी,
1: लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
0: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की। लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
1: फिर धीरे धीरे शोध होते गए और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
0: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
0: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
3: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगी,
4: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
5: हाँ, 2000 साल पहले।
4: नानी माँ?
6: हाँ निधि।
4: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
6: अरे यही।

0: हूँ। आ जाओ निधि, आओ आधिका बेटी।
1: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं? क्या कर रही हो?
0: हाँ हाँ बताती हूँ, जल्दी क्या है।
1: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
0: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आधिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
1: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
0: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
1: नाना नानी के शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
0: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
1: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है?
0: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
1: हाँ हाँ मामा जी से पूछेंगे।
0: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना?
1: मामा जी।
2: अरे निधि, ओ आधिका, कैसी कट रही है तुम्हारी छुट्टियाँ?
3: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है
1: जी। उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
2: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
3: ये किसी खुदरी से शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
2: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भूर्ज वृक्ष कहा जाता है।
1: अच्छा, भूर्ज वृक्ष?
2: हाँ, भूर्ज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
3: पांडुलिपि? ये हमें कहाँ मिली है
2: निधि? ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
3: अच्छा,
2: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
1: ये किस भाषा में है?
2: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने, ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
1: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
2: हाँ हाँ बताता हूँ, अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
1: अच्छा,
2: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना, इसको उकेरना भी कहते हैं।
1: अच्छा,
2: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
3: अच्छा,
2: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं, और शिलालेख को
3: एपिग्राफ।
2: शाबाश निधि।
3: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
2: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है, ये अभिलेख हमें

0: की मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
1: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
0: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
2: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
2: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर, श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
4: आशा है श्रोता मित्रों, आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
3: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
4: जी।
3: लेकिन आज श्रोताओं, आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रही
4: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
3: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
5: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कारंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे।

0: ये क्या? ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं। इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ, देख रहा हूँ। पर सच पूछिए तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस, वहीं खड़े रहो। शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा, तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। ज़हे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूँ, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा, वाह। और
0: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
1: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
0: चल बेटा मोती।
1: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की इस हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपतशाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
0: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
3: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कार्यों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
0: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए। कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
3: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
2: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया।

0: उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
1: अलख निरंजन।
2: साधु बाबा।
1: अब अच्छा,
2: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
1: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ। अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं
2: क्या?
1: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
2: है?
1: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
2: अच्छा,
1: हाँ,
2: बहुत बड़ी फौज है।
1: और नहीं तो क्या बच्चा। अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है। बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
2: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
1: अच्छा,
2: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
1: है? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
2: बिल्कुल है।
1: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
2: उसका भी इंतजाम है।
1: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
2: देखो है? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
1: नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे।
2: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
1: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
2: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूँ, बदन सिंह, रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।

0: पुरुष वेश में लड़ रही रानी की बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
1: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
2: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनू, तू हाथी को संभाल।
1: हाथी को

0: क्या संभालू रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप, ओह कितना खून बह रहा है।
1: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनु।
2: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
1: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
2: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
1: अच्छा तो गनु बेटा, तू अपनी कटार मुझे दे।
0: रानी माँ।

0: ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी मां।
1: अच्छा तो गनु बेटा, तू अपनी कटार मुझे दे।
2: रानी मां,
0: रानी मां,
2: रानी मां,
3: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती मां। मैं तुम्हारा महावत हूं, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।
4: श्रोताओं, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी का। ये बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। इस समय 11:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब से लेकर 11:55 तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
8: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
9: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
10: विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजें पेश है।

0: छाया गांगुली की आवाज में यह गजल अभी आप सुन रहे थे।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: हिंदी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूर नहीं रह सकता, एक बिन, तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। इस समय 11:55 होने वाले हैं। अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार। समाचारों के बाद हम जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा से, जिसे आप सुनेंगे शाम 5 बजे तक।
1: आकाशवाणी रायपुर, फिलहाल आइए प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ, मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। राजधानी रायपुर में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। कार्यशाला में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। राजधानी रायपुर में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। सहकारिता विभाग और अपेक्स बैंक द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से किसान, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होंगे। कृषि मंडपम ऑडिटोरियम में होने वाले इस 2 दिवसीय सम्मेलन में सहकारिता, कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले आज सुबह रायपुर के मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में युवा, विद्यार्थी, किसान, सहकारी संस्थाओं के सदस्य और विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और शालाओं के युक्तियुक्तकरण की नीति पर मुहर लगा दी है। इस नीति को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ विद्यालयीन शिक्षक कर्मचारी संघ सहित प्रदेश भर के शिक्षकों की सभी 24 से अधिक याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस विभुदत्त गुरु की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा कि शिक्षकों का स्कूलों में तर्कहीन या असमान वितरण सुधारने के लिए सरकार का यह कदम जनहित में है। नया रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में कल 4 जुलाई से चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। 2 दिवसीय इस शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे। इस शिविर का उद्देश्य बदलते तकनीकी परिवेश के अनुरूप शासन को और प्रभावी बनाना है। शिविर में सरकार की अब तक की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की प्राथमिकताओं की समीक्षा की जाएगी। मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। वहीं प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हुई। वहीं दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश

की गई है। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के औंधी क्षेत्र में कल आए आंधी तूफान में एक पेड़ 11 केवी विद्युत लाइन पर गिर गया, जिससे आसपास के दर्जनों गांव में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। सूचना मिलने पर विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची और देर शाम तक विद्युत आपूर्ति को बहाल किया गया। छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस अवसर पर आयोजित अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि संजय अग्रवाल के अनुभव का लाभ प्रदेशवासियों को मिलेगा, योग और सर्वव्यापी होगा और जन जन तक पहुंचेगा, लोग अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। राजधानी रायपुर में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसे साझेदार हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्ष में भारत और फ्रांस के बीच व्यापार दोगुना हो गया है। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर और इंडिया स्टैक जैसी डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइचे ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कारागार में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में

0: देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने स्पष्ट किया है कि विजिंगम बंदरगाह में हिस्सेदारी में कोई भी बदलाव सरकार की अनुमति के बिना संभव नहीं है। श्री सतीशन ने यह भी बताया कि एक विदेशी कंपनी द्वारा 49% हिस्सेदारी के निवेश की घोषणा राज्य सरकार को सूचित किए बिना की गई थी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के सत्र में 0.5% की बढ़ोतरी हुई। सेंसेक्स 511 अंक बढ़कर 78,013 पर, जबकि निफ्टी लगभग 160 अंक की वृद्धि के साथ 24,336 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। मिलो न तुम तो हम फिल्म है हे राजा, लता मंगेशकर की आवाज, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत है।

जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने

0: सासुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: कलाकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें।
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

होटल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। अमित कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में इंदिवर के बोल थे, उषा खन्ना का संगीत था। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, ना हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, विविध भारती पर रोजाना दिन में 1 बजे आप सुनते हैं सुरीला सफर। इस कार्यक्रम में विविध भारती और उसके श्रोता सोशल मीडिया का हाथ पकड़कर तय करते हैं एक सुरीला सफर। जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए ये खास जानकारी है। सुरीले गाने, दिलचस्प पहेलियां और बहुत सारी बातें। हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं। इस एक पैराग्राफ में वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। आपको पढ़कर अंदाजा लगाना है कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का मजा तो इस बात में ही है कि गानों की आपकी और हमारी लिस्ट मैच कर जाए। आज वैसे हमारी लिस्ट मैच कर रही है, क्योंकि हम विविध भारती के फेसबुक पेज पर सैर कर रहे हैं इस समय। तो ध्यान से आप पढ़ लीजिए आज की इबारत, हम पढ़कर सुना देते हैं। रिमझिम बरसता सावन, सावन की एक शाम थी, बाहर रिमझिम सावन की फुहारें बरस रही थीं और भीगी फिजाओं में कहीं दूर तराने गूंज रहे थे। सावन में पड़ते हैं झूले, झूले में पवन ने उड़ाया आंचल, घिरे थे बादल, दिल ने कहा घर आजा घेराए बदरा सवरिया जोड़ लीजिएगा। तभी निगाहें मस्ताना लिए वो परदेसी सामने आकर खड़ा हो गया। निगाहें मस्ताना से कौन सा गाना याद आया? देव आनंद वाला वो गाना याद आया जिसमें नूतन भी है और साइकिल पे चले जा रहे हैं? कौन सा है? फिल्म याद कीजिए। वैसे हमें तो याद है, मेरी धड़कनें रुक सी गईं, लगा जैसे उसने पुकारा हो और मैं अनजाने में ही उसकी ओर खींची चली आई। यहाँ पर कौन सा गाना याद आया लिखिए फटाफट विविध भारती के फेसबुक पेज पर, अभी हम जाकर वहां पढ़ेंगे। उसी पल लगा जैसे परदेसी मेरा दिल लग गया, तब से हम उसके प्यार में सारा आलम खो बैठे। यहाँ कौन सा गाना याद आया? मुझे लगता है आप सबको वही गाना याद आया होगा जो मैंने चुना है, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे। फिर लगी लगन ऐसी गहरी कि ये नाता जन्म जन्म का बन गया, अब इतना तो कह दो कि तुमसे ही प्यार है। यहाँ पर बहुत ही मशहूर गाना आप विविध भारती से अक्सर सुनते हैं, याद आ गया होगा, कौन सा है जरा बताइएगा। इस एक इकरार की खातिर मैंने बड़ी शिद्दत से, मैंने रंग ली आज चुनरिया अपने प्रेम के गहरे रंग में, हुस्न का वो सारा नूर आज आंखों में उतर आया है जो केवल उसी के लिए है। उसी के लिए भी बहुत सारे गाने हैं, बताइए आप। तो कौन से गाने हो सकते हैं और कौन से वो शब्द हैं जिन पर गाने आपने चुने हैं, और आपको क्या लगता है इन शब्दों पर कौन से गाने सुनवाए जाएंगे? तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला, लेकिन उससे पहले हम जरा आपको याद दिला दें, पता नहीं आपको याद

है कि नहीं, आज जाने माने अभिनेता राजकुमार की याद का दिन है। कुछ गाने उनकी याद को भी समर्पित हैं। तो बताइए उनकी कौन सी फिल्म आपकी बेहद पसंदीदा फिल्में हैं? और हाँ, झूला, सावन, घटा, बादल कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके लिए हमारे श्रोता टिप्पणी कर चुके हैं और आप सबने गाने भी लिखे हैं तो इबारत भी लिखी है बहुत सारे लोगों ने। तो आप भी इबारत लिख सकते हैं, झूला, सावन, घटा, बादल, जो भी शब्द आज की इबारत में शामिल किए हैं, और साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। हाँ, साथ में ये भी साझा कीजिए, झूले वाली कौन सी यादें हैं, झूले की पींग वाली कौन सी यादें हैं, और झूला कौन से पेड़ पर अब लगता है, डाला जाता है। पहले तो नीम का पेड़ होता था, मजबूत पेड़ कि टूटने का डर नहीं होता था, लेकिन अब बड़े कमजोर तने वाले पेड़ हैं आसपास। तो नीम का पेड़ पता नहीं आपके इर्द गिर्द है भी कि नहीं। वैसे गांव में अभी भी ये परंपरा है कि सावन आने से पहले ही झूले डाल दिए जाते हैं। तो सावन की याद महिलाएं खासतौर से, ससुराल में पहला सावन कैसा था, तो आप यादें साझा कीजिए। हम सुनवा रहे ये गाना, क्या यही गाना सोचा था आपने कि हम सुनवाएंगे, या कोई और गाना आपने सुना था, सोचा था? राजकुमार फिल्म का गाना है, हीरोइन का नाम जरा बता दीजिए आप।

राजकुमार फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत था और हमने हीरोइन का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही लिखा है साधना और बहुत सारे श्रोताओं ने तुरंत तुरंत लिख डाला कि इबारत में कौन से गाने थे। किसी ने लिखा है रिमझिम की गिरे सावन, सावन के झूले पड़े, कौन परदेसी मेरा दिल ले गया, और एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर बारिश के आगमन पर आधारित है, सचमुच गर्मी के दिन हटने का संकेत।

0: बारिश का आना देता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीले सफर में शायद रिमझिम बरसात, सावन के झूले इन्हीं शब्दों के साथ सजने वाली है। और एक श्रोता ने टिप्पणी की है कि रिमझिम फुहारें जब धरती को भिगोती हैं तो मन भी अनगिनत मधुर यादों में भीग जाता है। झूलों की मस्ती, पवन का शीतल स्पर्श और घर गिरते बादलों के बीच किसी अपने के आने की आस दिल में नई धड़कनें जगा देती है। फिर एक परदेसी मुस्कान के साथ दिल चुरा लेता है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें झूले की याद तो ननिहाल के साथ ही छूट गई, ननिहाल की याद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि 28 तारीख से सावन लग रहा है। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि बारिश की भीगी फुहारों के बीच सावन का सुहाना मौसम, प्रेमी से पहली मुलाकात, दिल का इकरार, जन्म जन्म का साथ, प्रेम के रंग में रंगी चुनरिया, यही पूरी इबारत का भाव है। इसलिए आज का सुरीला सफर में अधिकतर गीत सावन, रिमझिम, बारिश, बादल, परदेसी, दिल, प्यार, इकरार, चुनरिया, नूर जैसे शब्दों पर आधारित होंगे। भाई बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह लिखा है, बहुत सारे गाने लिखे हैं, क्या करें हम, कौन सा वाला गाना सुनवाएं, कौन सा छोड़ें। लेकिन आज खास बात यह है कि आपकी लिस्ट में जो गाने हैं हमारी लिस्ट में भी है।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: गीतकार का नाम जरा बताइए।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं तो बताइए।

घराना फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार रवि। और ये हमारा सवाल भी था, सभी श्रोताओं ने सही लिखा है, एक आध श्रोता ने गीतकार का नाम गलत बताया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, बचपन में हम जहाँ रहते थे वहीं एक नीम का पेड़ था जिस पर झूला बांधा जाता था। एक बार मैं झूल रहा था और झूले को बहुत ऊपर तेज करता हुआ झूल रहा था, तभी पटिए से रस्सी सरक गई और मैं सर के बल नीचे गिर गया। वो तो भगवान की दया से कोई अनहोनी नहीं हुई। ऐसी घटनाएं पहले हुआ करती थी, लेकिन तब इम्यूनिटी लोगों की बहुत मजबूत थी, चोट जल्दी से ठीक हो जाती थी, चोट ठीक जल्दी से ठीक हो जाया करता था। और वो चोट भी ऐसी होती थी कि कई बार माँ पिता साथ में होते थे, भाई बहन साथ में होते थे, उनके जो प्यार का फाहा होता था ना, उससे भी चोट हरण हो जाती थी। लेकिन ये जो घटना घटित हुई ये थोड़ी रिस्की थी, तो जब भी कभी आप झूले पर झूलें तो इतनी ऊंचाई तक मत जाएं कि गिरने का डर हो। वैसे भी इतनी ऊंचाई पर अमूमन नहीं जाना चाहिए कि गिरने का डर बना रहे। एक श्रोता की टिप्पणी है।

है कि तभी उस मस्ताने परदेसी ने सामने आकर दस्तक दी। मेरी धड़कनें थम गई और मैं अनजाने ही उसकी ओर खींची चली गई। मेरी इबारत से इन्होंने हेर फेर करके लिखा है कुछ। एक श्रोता ने लिखा है कि रिमझिम बरसे बदरवा फिल्म रतन, गायिका जोराबाई अंबाले वाली। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ सावन में झूले का चलन नहीं है, अतः चौखट में ही रस्सी बांधकर बच्चों को हम झुलाते हैं। और अब तो आप बालकनी में, बरांडे में, आंगन में, जो घरों में छत होती है, छतों में कुछ लोहे की छड़ लगाकर झूले डाल लिए जाते हैं, लेकिन वो जो पेड़ के नीचे के झूले की बात होती है वो निराली होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि सचमुच ही तुमने पुकारा और हम इस सुरीले सफर में चले आए, कुछ यादों की बारात लेकर आए और कुछ मौसम का अंदाज लेकर आए। घनघोर छाए बादल कुछ बरस रहे हैं, कुछ गरज रहे हैं, कुछ लुका छिपी खेल रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुबह जब मैं जागा तो मुझे ऐसा लगा कि रात को हमारे शहर अजमेर में झमाझम बारिश हुई है और मैं सोता रहा। सुबह छत पर छतरी लगाकर पहुंचा तो भीगा मौसम, रिमझिम बरसता सावन, खुशी से झूमते पेड़ घर के गार्डन में और आसपास के घरों में, और सामने मनमोहक पहाड़ों का नजारा। क्या बात है भाई। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि हवाएं, बहारें, फूल और खुशबू, रंग, उमंग, संगीत, सावन का मौसम सच में जादूगर है। कोयल का पंचम महक रहा है और धरती सुगंध की सरगम से गुनगुना उठी है। वैसे तो बसंत के मौसम को ऋतुओं का सिरमौर कहा जाता है, मगर सावन की ऋतु भी कुछ कम नहीं है। ये मौसम अपने रंग भरी कूची से पूरी प्रकृति को सजा देता है। मौसम से बंधे मन लिए घूमते हैं, आंखें ऋतु निहारती हैं और मन उसके मुताबिक शब्दों के मोती चुन गीत गुनगुनाने लगता है। जैसे ऋतु वैसा मन और वैसा ही गीत। लीजिए सुनिए फिल्म मंजिल, बताइए कौन है हीरो, कौन है हीरोइन।

मंजिल फिल्म का गाना था और हमारे सभी श्रोताओं ने लिखा है मौशमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन होते हैं। फिल्म मंजिल रिमझिम गिरे सावन मुंबई के बेहतरीन दृश्य में है। मरीन ड्राइव पर फिल्माया गया था ये गाना और बहुत ही सुंदर दृश्य है। मरीन ड्राइव से जो ऊंची ऊंची समंदर की लहरें आती हैं उसी में भीग रहे थे और इस समय तो बारिश के मौसम में वैसा ही नज़ारा है, बिल्कुल सड़कों तक पानी आ जाता है। लेकिन हाँ, खतरा भी होता है, इसलिए हम बार बार श्रोताओं से कहते हैं कि जो भी मुंबई में हैं या घूमने आते हैं, मरीन ड्राइव पर जाते हैं, तो जब ऊंची लहरें उठे और चेतावनी हो तो बहुत नज़दीक ना जाएं, समंदर के नज़दीक ना जाएं, वो खतरा बहुत ज़्यादा होता है। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, बारिश की हर एक बूंद दिल की सूखी जमीन पर प्यार का एहसास बनकर उतरती है। बारिश की रिमझिम में भी एक अलग ही सुकून छुपा होता है। भीगी हवाएं होती हैं, झूमते पेड़ और बरसती फुहारें। एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत सावन की रिमझिम फुहारों के बीच जन्म लेने वाले उस प्रेम की कोमल अनुभूति है, जहां प्रकृति, संगीत और मन के भाव एकाकार हो जाते हैं। रिमझिम फुहारें जब धरती को भिगोती हैं, तब मन के सूने कोने में भी अनकहे भाव अंकुरित होने लगते हैं। ये उसी भीगे एहसास की कहानी है, जहां बादलों की गूंज, झूलों की मस्ती और मधुर तरानों की मिठास मिलकर प्रेम को एक शाश्वत स्वर देते हैं, जहां सावन की हर बूंद मानो प्रिय के स्पर्श का आभास कराती है और हर धड़कन एक ही नाम का संगीत बन जाती है। प्रेम का ये रंग ऐसा है जो एक बार मन पर चढ़ जाए तो हर सावन उसी प्रिय की याद और प्रतीक्षा का उत्साह बन जाता है। तो बताइए, झूले के दौरान जब कभी आपने झूला झूला हो तो क्या प्रिय की याद आई है या प्रिय साथ में रहे हैं? कोई याद है तो जरूर साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। ये झूले वाला ही गीत बहू बेगम फिल्म, बताइए कौन है हीरोइन, गीतकार का नाम भी बताइए जरा। लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं। बूझिए हीरोइन का नाम और गीतकार का नाम। है बहू बेगम,

बहू बेगम फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजें थी। गीतकार का नाम नहीं बता सकते अभी क्योंकि आपकी ओर से जवाब नहीं आया है, और हीरोइन का नाम पूछा था वो भी अभी हमें नहीं मिला है। तो जब आप जवाब बताएंगे तब हम बताएंगे कि सही जवाब क्या था। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में झूलों का बड़ा शौक था, अभी भी झूला देखने पर तो एक बार जरूर ही बैठ जाते हैं। पींग ऊंचा उड़ाने में गिर गई और हाथ टूट गया, तब से थोड़ा डर लगता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि ओ निगाहें मस्ताना, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, इतना तो कह दो तुमसे ही प्यार है। मतलब गाने के बोल इन्होंने लिखे जो हमने इबारत दी थी। और जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर नहीं है उन्हें बता दें कि हम इस प्रोग्राम में एक इबारत लिखते हैं और उस इबारत से श्रोता शब्द ढूंढकर गाने हमें सुझाते हैं, और हम भी पहले से गाने कुछ ढूंढ के रखते हैं और फिर उसी अनुरूप टिप्पणियां आती हैं और श्रोताओं की टिप्पणियां हम इसमें शामिल करते चलते हैं। तो आज की इबारत जरा एक बार हम दोहरा देते हैं जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े नहीं उनके लिए। रिमझिम बरसता सावन, सावन की एक शाम थी, बाहर रिमझिम सावन की फुहारें बरस रही थी और भीगी फिजाओं में कहीं दूर तराने गूंज रहे थे। सावन में पड़ते हैं झूले, झूले में पवन ने उड़ाया आंचल, घिरे थे बादल, दिल ने कहा घर आजा घिराए बदरा डैश डैश डैश। तभी निगाहें मस्ताना लिए वो परदेसी सामने आकर खड़ा हो गया, मेरी धड़कनें रुक सी गईं, लगा जैसे उसने पुकारा हो और मैं अनजाने में ही उसकी ओर खींची चली आई। उसी पल लगा जैसे परदेसी मेरा दिल ले गया, तब से हम उसके प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। लगी ऐसी लगन गहरी की ये नाता जन्म जन्म का बन गया, अब इतना तो कह दो कि तुमसे ही प्यार है, बस एक इकरार की खातिर मैंने बड़ी शिद्दत से रंग ली आज चुनरिया अपने प्रेम के गहरे रंगों में, हुस्न का वो सारा नूर आज आंखों में उतर आया है जो केवल उसी के लिए है। और अब देख रहे हैं कि हमारे श्रोता कौन सी टिप्पणी लेकर आए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत साल पहले हमारे गांव में, गांव के बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होता था जिसमें सावन के आते ही झूले पड़ जाते थे, औरतें झूलती और गीत गाती थीं। तो अब आगे बढ़े और अगला गीत सुनवाते हैं आपको। ये जरा बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम।

घर आ जा घिर आए। कभी आपने किसी के इंतजार में ये गाना गाया है? फिल्म थी छोटे नवाब। अगर गाया है तो जरूर बताइएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और अब हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों की तो बहुत तादाद है, लगभग यूं कहें कि बाढ़ तो नकारात्मक हो जाता है, लेकिन हाँ बहुत लंबी तादाद में टिप्पणियां आ रही हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से हम पढ़ते जाएं। जरा संक्षेप में लिखिए तो ज्यादा तादाद में टिप्पणी शामिल हो सके। एक श्रोता ने लिखा है कि मदमस्त मौसम की मादकता को मधुमेह बनाती इबारत है, हुस्न इश्क को ऊर्जा उत्सर्जित करती शीतल बयार, और रिमझिम फुहार मानो प्रकृति प्रदत्त प्रेमांजलि हो और प्रेमी युगल को आवाहन कर रहा हो। इस प्रेम रस में सराबोर हो, सर्वस्व लुटा प्रेम में हो जाओ, रिमझिम के तरानों के सुरीले सरगम सफर का इंतजार है। भाई इंतजार तो खत्म हो चुका है और अब ये सुरीला सफर जारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई आहा आज तो गजब के गाने हैं और हमने आपको देखा था मुंबई में बारिश में भीगते हुए। आप सब भी भीगते हैं बारिश में। आप अपनी यादें भी साझा करते चलिए और कोई खास याद है, कोई खास बात है तो जरूर बताइए। कौन सी वाली बारिश आपको याद आती है, बचपन वाली बारिश या बड़े हुए तब की बारिश? अब तो बारिश से डरते भी होंगे, भीग जाएंगे तो कहीं सर्दी जुकाम हो जाएगा। बचपन में वो डर नहीं था, खौफ नहीं था, क्योंकि ये पता नहीं होता है कि बीमार होने के नुकसान क्या होते हैं। चलिए बहरहाल आगे बढ़े। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीत तो इबारत में ही छुपे हुए हैं, फिर हम नहीं बताते, पर हाँ शब्द तो बता ही सकते हैं ना। तो सावन झूला, बदरा तराना, परदेसी दिल प्यार, और नूर मस्ताना इकरार, और भी बहुत कुछ है। एक श्रोता ने लिखा है क्योंकि आज सुरीला सफर बेहद सुरीला होने वाला है, क्योंकि रिमझिम के तराने लेकर बरसात जो हो रही है और एक परदेसी आकर मेरा दिल ले गया है जिसके प्यार में हम सारा आलम खो बैठे। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यार भरा नमस्कार और गानों के बोल लिखे हैं, पड़ गए झूले सवन ऋतु आए रे, एक परदेसी मेरा दिल ले गया। दरअसल आज आपके गाने और हमारे गाने बहुत मैच हो रहे हैं तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो गाने हम आप सुनना चाहते हैं वो हम लेकर आए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये मौसम भीगा भीगा, हवा भी ज़्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल, तुमको पाने का इरादा है, और हम घर से छाता लेकर निकलते हैं तो बारिश नहीं होती और कभी कभी इतनी जोर से होती है कि छाता होकर भी भीगना पड़ता है और कई बार हवा के कारण छाता उल्टा भी हो जाता है, लेकिन भीगने में क्या मजा होता है ये तो आप बताएंगी, रेडियो सखी बताएंगी आज के सुरीला सफर प्रोग्राम में। वो तो भाई आप सभी बता रहे हैं ना, और हम तो आपकी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक उन्होंने आगे लिखा है कि आज जाने माने अभिनेता राजकुमार का स्मृति दिन है। राजकुमार संवाद बोलने के उनके विशिष्ट ढंग से जाने जाते थे और जानी आज उनकी फिल्म के भी कुछ गीत शामिल हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं और पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं जिसके लिए हमारे

0: बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, तो जरा आप बताइए कि कौन है हीरो हीरोइन। शुरू में हम बता चुके हैं वैसे।
1: एक समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के

जाना, चाहत कलबों पे ना माने दे, यही प्यार का है जमाना। ओहो ओ निगाहें मस्ताना, देख

0: मस्ताना।
1: पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना था किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत था, देव आनंद और नूतन होते हैं इस फिल्म में, और बहुत सारे श्रोताओं ने दरअसल इस गाने का जिक्र किया था, इसलिए ये गाना यहाँ पर बिल्कुल प्रासंगिक था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने सुरीले सफर के शुरू में ही फिल्म जगत के ऐसे महाराजा को याद किया जिन्हें दुनिया राजकुमार के नाम से जानती है। सचमुच अद्भुत शख्सियत थी उनकी, गले में स्कार्फ, बात करने का रौबदार तरीका, सफेद जूते पहनकर जब वो जानी कहते थे तो सिनेमा घरों में तालियां रुकने का नाम नहीं लेती थी। यूं तो उन्होंने कई यादगार किरदार निभाए हैं, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है उनकी फिल्म वक्त का राजा का किरदार। फिल्म में वो एक चोर थे, लेकिन उनका रौब किसी महाराजा से कम नहीं था। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने राजकुमार जी से जुड़ी हुई लिखी हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस बात के लिए। एक श्रोता ने लिखा है, सावन के झूले सिर्फ झूला नहीं, मन की उड़ान और भावनाओं का उत्सव है, आनंद है, और ये आनंद स्वयं के अकेले प्राप्त करने से नहीं दूसरों को देने से भी है।

तभी आनंद की अनुभूति सार्थक है। सावन के आते ही हरियाली छाती है, धरती को झुलसती गर्मी से राहत मिलती है। हवाओं में कोमल और रेशमी ठंडक के साथ मिट्टी की सौंधी महक घुलती जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी टिप्पणी तो सिर्फ एक लाइन की है, तो शामिल नहीं हुई भाई, लेकिन आगे तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ इतनी सी शिकायत लिखी है तो कैसे शामिल हो सकती है। बहरहाल, एक श्रोता ने लिखा है कि इतने दिन से मौसम और बारिश के गीत बज रहे हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम हमारे शहर के मौसम से मैच हुआ है। शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप सभी का। सुनिए अब ये गीत और याद कीजिए अपनी कोई खास बात। संगीतकार का नाम जरा बताइए और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई खास बात भी बताइए। बारिश का मौसम और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई बात है बताइएगा जरा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। गीतकार कौन है ये भी बताइए। फिल्म है दुल्हन एक रात की,

हमने आपसे पूछा था कि कौन है संगीतकार और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई खास बात है। बहुत सारे श्रोताओं ने, कुछ श्रोताओं ने जवाब सटीक दिया है। संगीतकार मदन मोहन, और ये जो जुलाई का भीगा मौसम है, बार बार मदन मोहन की याद दिलाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो भीगे मौसम से हमारे मन से जुड़ जाते हैं। 14 जुलाई मदन मोहन साहब की याद का दिन है, उनका स्मृति दिवस है। कुछ श्रोताओं ने सही सही लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन के झूले केवल डालियों पर नहीं पड़ते, वे तो हर बरस हमारे मन में भी बचपन की मीठी यादों को फिर से झूला झुलाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं चेरापूंजी से लिख रहा हूँ, मेरा यहाँ पर उठना बैठना सोना जागना सब कुछ बरसात में ही होता है, और विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा मेरे साथ रहती है। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में नाजायज फिल्म का गीत सुनवाइए। एक श्रोता ने लिखा है, सावन के झूले सिर्फ झूले नहीं है, मन की उड़ान और भावनाओं का उत्साह।

सो है, आनंद है, और ये आनंद स्वयं के अकेले प्राप्त करने से नहीं दूसरों को देने से भी है, तभी यह आनंद की अनुभूति सार्थक है। सावन के आते ही हरियाली छाती है, धरती को झुलसती गर्मी से राहत मिलती है। भाई अभी जो चेरापूंजी से जो श्रोता लिख रहे हैं कि विविध भारती सुन रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है ये जानकर कि उतनी दूर से विविध भारती से जुड़े हुए हैं। जरा वहाँ के कुछ आबो हवा के बारे में, वहाँ के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, और ये भी बताइए कि जब हमेशा बरसात होती है तो आपको एहसास कैसा होता है, क्योंकि जब लगातार बारिश हो तो कई बार ऊब भी होती है एक ही मौसम से। जैसे मुंबई में भी तकरीबन 4-5 महीने बारिश होती रहती है, तो बारिश की शुरुआत तो बड़ी सुखद लगती है लेकिन धीरे धीरे ऊब सी होने लगती है। तो बहुत सारे इलाके हैं जहाँ घनघोर बरसात होती है, तो आप अपने बारिश से जुड़े हुए अनुभव साझा करते रहिए, और जो आप जिन श्रोता ने चेरापूंजी से लिखा उनसे खास अनुरोध कि आप अपने अनुभव लिखिए। हाँ तो दोस्तों, हमने आपसे ये पूछा था कि संगीतकार का नाम मदन मोहन और फिल्म थी दुल्हन एक रात की, इसी फिल्म का गाना हमने अभी सुनवाया लता मंगेशकर की आवाज में, शब्दकार थे राजा मेहदी अली खां। और जब बात चलती है मदन मोहन की तो लगता है कि जुलाई के इस महीने में उनकी याद का दिन है और जून में उनका जन्मदिन, तो फिर क्यों ना एक गाना और हो जाए। तो मदन मोहन साहब के नाम ये गाना, और जरा फिल्म का नाम आप बूझिए, क्या है फिल्म का नाम।

फिल्म थी वो कौन थी, और यही था हमारा सवाल। लता मंगेशकर की आवाज थी, राजा मेहदी अली खां के बोल, मदन मोहन का संगीत था। एक आध श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया, फिल्म का नाम वो कौन थी। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि 1992 में तलाजा से ऊंचे गांव में मेरे मित्र उनके पिताजी दोनों अपने बेटों के साथ जा रहे थे कार से, और जब लौटे तो एक नदी थी जो भर आई थी, जिसकी वजह से गांव के उस पार जाना मुश्किल था। कुछ इन्होंने अलग भाषा में लिखी है जिसको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अगर गलत हो तो भाई माफ कीजिएगा। आगे इन्होंने लिखा है कि हम गांव तो चले गए, खाना खाकर लौटे, सड़क पर पानी भर गया था। ये बारिश धीमे धीमे बरस रही थी, लेकिन पानी उतर नहीं रहा था, मतलब पानी ज्यादा हो गया था। तब तक तो पूरी रात रोड पर ही बितानी पड़ी थी। एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश और पानी की बातें हैं, मुझे दो बूंद पानी फिल्म का शीर्षक गीत याद आ रहा है, राजस्थान का खाली नहर, और बारिश होने पर नहर भरे, वहां के लोगों को जीवन मिले। अब सुनते हैं सारंगा फिल्म का ये गाना, जरा आपको बताना है गीतकार और संगीतकार का नाम। देखते हैं कौन श्रोता सही जवाब दे पाते हैं, गीतकार संगीतकार, फिल्म सारंगा, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें हैं।

सारंगा फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें, गीतकार भरत व्यास, संगीतकार सरदार मलिक। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में 2 महीने की छुट्टियों के बाद जुलाई के पहले हफ्ते में स्कूल खुलते थे और एक परदेसी सामने आकर खड़ा हो जाता था। वो परदेसी कोई और नहीं था बल्कि एक रिक्शा वाला था जो स्कूल ले जाने के लिए किसी यमराज से कम नहीं लगता था। भाई अगर स्कूल नहीं गए होते, पढ़ाई नहीं की होती तो आज क्या होते, ये याद कीजिए। और बचपन का संसार बड़ा अलग ही होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। बहरहाल अब तो बहुत ही कम वक्त है कि हम आपसे कहें कि यादें साझा कीजिए। बस प्रोग्राम का आखिरी गीत है जिससे पहले हम ये टिप्पणी पढ़कर सुना दें। एक श्रोता ने लिखा है कि बादल मेरे शहर में है, बारिश होगी कि नहीं कह नहीं सकती, पर आज मुझे खुशी है कि सब्जेक्ट के रूप में मैं पास हो रही हूँ, जवाब दे रही हूँ सही। और एक श्रोता ने, मैंने रंगली आज चुनरिया के प्रेम के समर्पण की बात की है कि मन के उल्लास का बेहद मधुर गीत है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज मेरे सुझाए 4 गाने शामिल हुए, कुछ ने लिखा है कि 3 गाने शामिल हुए, किसी ने लिखा है मेरे 6 गाने मेरी पसंद के शामिल हुए। बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लग रहा जानकर। सुनिए, एक श्रोता ने इस गाने का भी जिक्र किया है और आप सब में से कितने लोगों ने सोचा था ये गाना बजेगा अभी। फिल्म है फागुन। कोई सवाल नहीं है, आप चाहें जो जानकारी दे सकते हैं। कमर जलालाबादी के बोल, आशा भोसले, मोहम्मद रफी की आवाजें, प्रोग्राम का आखिरी गाना।

फागुन फिल्म का गाना था और बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि हमने सुझाया था ये गाना। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी पसंद और हमारी पसंद एक हो गई। और एक श्रोता ने जानकारी दी, एक या कई श्रोताओं ने, कि फिल्म फागुन मधुबाला और भारत भूषण संगीतकार ओपी नैयर, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें, कमर जलालाबादी के बोल। अब प्रोग्राम का सफ़र आज

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 35वीं कड़ी।

0: राष्ट्र ध्वज आज हमारा राष्ट्रीय सम्मान बिंदु है। भारतीय संस्कृति में भी ध्वज का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय युद्धों में अग्रभाग में रहने वाले ध्वज की प्रतिष्ठा को सबसे अधिक संभाल कर रखा गया है। रामायण महाभारत काल में प्रमुख योद्धाओं के अपने अपने अलग अलग ध्वज होते थे। इतिहास काल में महाराणा प्रताप का चांगी नामक सूर्य के चित्र वाला ध्वज प्रसिद्ध था। छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा ध्वज हिंदवी स्वराज्य का प्रतीक था। आगे चलकर पेशवाओं के काल में यह ध्वज उत्तर में अटक तक फहराया गया। अंग्रेजों के विरुद्ध यह लड़ाई भले ही प्रत्यक्ष रणभूमि पर आमने सामने की न रही हो, फिर भी अंग्रेजों के यूनियन जैक को चुनौती देने के लिए ऐसे एक ध्वज की आवश्यकता थी। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी एक ध्वज के नीचे नहीं लड़ा गया था। ब्रिटिश राज सत्ता से जूझते समय भारत का अपना एक स्वतंत्र पहचान वाला राष्ट्र ध्वज हो, यह सोच सन 1900 के बाद सामने आई।
1: 1905 में बनारस में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में स्वदेशी वस्तुओं की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी में भारत का विशेष रूप से तैयार किया गया पहला ध्वज भगिनी निवेदिता ने प्रदर्शित किया था। उस पर वंदे मातरम शब्द बांग्ला लिपि में लिखे हुए थे। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को जो पहली बड़ी सभा हुई थी, उस सभा को एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में फिर से 7 अगस्त 1906 को एक सभा आयोजित की गई थी। कलकत्ता के पारसी बाग में हुई उस सभा में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के हाथों वंदे मातरम शब्दों वाला ध्वज फहराया गया। ये ध्वज कृष्ण कुमार मित्र, उनके दामाद सचिंद्रनाथ बोस, पुत्र सुकुमार मित्र, स्वामी विवेकानंद के भाई भूपेंद्रनाथ दत्त की कल्पना से तैयार हुआ था। ऊपर की हरी पट्टी पर खिलते हुए 8 कमल थे और सबसे नीचे की लाल पट्टी पर चांद सूरज अंकित थे। बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम शब्द लिखे थे।
0: बाद के विभिन्न विरोधी आंदोलनों की अनेक सभाओं में यह ध्वज फहराया गया। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द होने तक यह वंदे मातरम शब्दों वाला ध्वज लगातार उपयोग में लाया जाता रहा। इसे ही भारत का अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के आधुनिक कालखंड में फहराया गया आद्य राष्ट्र ध्वज माना जाता है। इस ध्वज का प्रभाव देश में ही नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले भारतीयों के मन पर भी पड़ा था। इस ध्वज से प्रेरणा लेकर उन्हें विदेश में भी अपना ध्वज फहराने की प्रबल

0: इच्छा हुई होगी।
1: इसके ठीक एक वर्ष बाद 21 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के अधिवेशन में भारत की प्रतिनिधि के रूप में फ्रांस से गई मादाम भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखने वाली थी, ये निश्चित हो गया था। उसी समय ध्यान में आया कि इस अधिवेशन में प्रदर्शित करने के लिए अपना स्वयं का ध्वज होना चाहिए। लंदन में पढ़ रहे सावरकर, मादाम कामा और सरदार सिंह राणा के बीच चर्चा होने लगी। अन्य देशों के तत्कालीन ध्वजों को देखते हुए अपना ध्वज भी 3 रंगों वाला विशिष्ट होना चाहिए, ऐसी कल्पना साकार हुई। ये ध्वज बनाते समय लंदन में ही पढ़ रहे कलाकार क्रांतिकारी हेमचंद्र दास कानूनगो की सहायता मिली।
0: अगस्त 1907 अधिवेशन का तीसरा दिन। सफेद साड़ी पहने हुए, पारसी पद्धति से सिर पर पल्लू लिए हुए मादाम कामा ने अपने पल्लू के नीचे छिपाया हुआ वह रंगीन ध्वज अचानक सबके सामने दोनों हाथों से ऊंचा उठा दिया। उस समय पूरे सभागृह में मादाम कामा की शुभ्र मूर्ति के कारण बिजली कौंधने जैसा आभास सारे सभागृह को हुआ। इस रंगीन ध्वज के रंग भी उतने ही तेजस्वी थे। मादाम कामा के सहज तेज को

0: ध्वज की ऊपरी पट्टी हरी थी, उस पर 8 प्रांतों के प्रतीक 8 कमल, बीच का रंग केसरिया और उस केसरिया पृष्ठभूमि पर भारतीय स्वतंत्रता के शब्द रूपी हुंकार वंदे मातरम और सबसे नीचे की लाल पट्टी पर एक ओर सूर्य तो दूसरी ओर चंद्रमा थे। ये तीनों रंग जातियों या धर्मों के रंग नहीं थे, ये भारतीय संस्कृति के रंगों और मानव जीवन के गुणात्मक अर्थ को बताने वाले थे। हरा रंग धैर्य और उत्साह का, केसरिया रंग विजय और वैराग्यपूर्ण जीवन का, तो लाल शक्ति का प्रतीक था। 8 कमल भारत के उस समय के 8 प्रांतों के प्रतीक थे, तो चांद सूरज शीतलता और ऊर्जा के प्रतीक थे।
1: मादाम कामा ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखते हुए पल्लू में छिपाकर लाया हुआ ध्वज बाहर निकालकर ऊंचा उठाते हुए कहा,
2: दिस इज द फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, बिहोल्ड इट इज बॉर्न, इट इज ऑलरेडी सैंक्टिफाइड बाय द ब्लड।
3: ये भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज है, देखो इसका जन्म हो चुका है, ये पहले ही भारत के शहीदों के रक्त से पवित्र हो चुका है। मैं आप सभी सज्जनों से आह्वान करती हूँ कि उठें और इस ध्वज को सलाम करें। मैं आपके सामने ये छोटा सा भारतीय ध्वज फहराती हूँ मित्रों, और भारतीय राष्ट्र के नाम पर आपसे न्याय के लिए लड़ने का आग्रह करती हूँ। मैं आपके सामने ये भारतीय ध्वज एक बार फहराती हूँ, और समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे अपने जीवन काल में ही भारतीय गणराज्य की स्थापना देखने की पूरी आशा है। इंडिया एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग माई लाइफ टाइम। वंदे मातरम।

विदेश में भारत का स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित किया गया यह पहला ध्वज था। इस ध्वज पर भी बीच में वंदे मातरम शब्द लिखे थे। अंतरराष्ट्रीय परिषद में इस ध्वज ने खलबली मचा दी। ऐतिहासिक मादाम कामा के ध्वज और इस कलकत्ता ध्वज में समानता है। इस ध्वज का चित्र या प्रतिकृति भारतीय क्रांतिकारियों के माध्यम से विदेश में क्रांतिकारियों तक पहुंची होगी। इन दोनों ध्वजों में महत्वपूर्ण अंतर यह था कि वंदे मातरम शब्द दोनों ध्वजों पर होने के बावजूद कलकत्ता ध्वज पर वे पीले रंग की पृष्ठभूमि पर नीले रंग में थे, जबकि मादाम कामा के ध्वज पर वे सफेद रंग में थे और वंदे मातरम में म अक्षर

हटाकर र अक्षर पर अनुस्वार लगाया गया था। 20वीं सदी के पहले दशक में एक एक वर्ष के अंतराल पर बनाए गए भारत के पहले तीनों ध्वजों पर वंदे मातरम शब्दों को ही अग्रस्थान मिलना यही विशेषता है।

सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस श्रृंखला की 35वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार नेहा देसाई, तकनीकी सहयोग रमेश धकाते, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
1: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
2: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
1: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए

0: बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह काराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के 2 जबरदस्त भूकंप आए, जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कारकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
1: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा

0: से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
2: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ

0: तीन दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

पाकीजा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। कैफ भोपाली के बोल थे गुलाम मोहम्मद का संगीत था। आइए अब सुनते हैं काजल फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में। साहिर लुधियानवी के बोल हैं रवि का संगीत।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: ऊंचे लोग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार चित्रगुप्त।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए, हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: हमराज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में। रचना थी साहिल लुधियानवी की, संगीतकार थे रवि। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज।

नूर महल फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों, मनुष्य स्वभाव से हमेशा सुख की कामना करता है और दुख से दूर भागना चाहता है, लेकिन सच तो यह है कि बिना दुख का अनुभव किए सुख के वास्तविक आनंद को समझा ही नहीं जा सकता। तपती धूप में चलने के बाद ही पेड़ की ठंडी छांव का असली सुख मिलता है। उसी तरह जीवन की कठिनाइयों और दुख से गुजरने के बाद जब सुख का आगमन होता है तो उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। सुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन का आनंद लेना सिखाता है, जबकि दुख एक मार्गदर्शक है जो हमें भीतर से मजबूत और समझदार बनाता है। तो सुख और दुख की लहरें लिए उसमें गोता खाते हुए आज अपनी सहेलियों से इन्हीं यादों इन्हीं बातों को साझा करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, तो देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, कैसे हैं आप?
0: हम बिल्कुल ठीक हैं। और बताइए आज किस सखी से बात हो रही है हमारी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम है हर्षा खन्ना। वैसे मैं बॉम्बे से हूँ, आजकल मैं अजमेर आई हूँ अपने ससुराल, और मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरा फोन लगा है आपको।
0: क्या बात है, तो बताइए हर्षा जी क्या करती हैं आप?
1: देखिए वैसे तो मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं ट्यूटर भी हूँ, मैं कविताएं लिखती हूँ और मैं ट्रांसलेटर भी हूँ। मैं इंग्लिश हिंदी मराठी में ट्रांसलेशन करती हूँ।
0: जी, ये तो एक बिल्कुल अलग तरीके का काम हो गया। ये उन्हीं के लिए संभव है जो ये दो तीन भाषाओं को बहुत अच्छे से लिख पढ़ सकता है ना?
1: जी जी।
0: तो ये किस तरह से आपने ये सोचा कि मैं ये काम भी कर सकती हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए?
1: मुझे ना वैसे भी शब्दों से बहुत प्यार है, और आपको पता है जो हमारा भारत है वो एक बहुत सारी भाषाओं का देश है।
0: जी,
1: तो जैसे मैं खुद दिल्ली से हूँ, मेरी शादी जिनसे हुई है वो राजस्थान से है, बॉम्बे में रही हूँ, गुजरात के पास है, तो मैं काफी सारी भाषाएं बोलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है।
0: जी जी।
1: इसी तरह से मुझे किसी ने एक बार कहा था कि प्लीज सर मुझे कुछ ट्रांसलेशन चाहिए, तो इंग्लिश हिंदी करते करते मैंने मराठी भी शुरू किया।
0: जी।
1: तो मराठी टू हिंदी इंग्लिश भी करती हूँ मैं।
0: जी, रेडियो सुनना पसंद करती हैं आप?
1: रेडियो ने तो मतलब बचपन से लेकर अब तक हमें वो रखा है कनेक्टेड सारी दुनिया से, खुशी में भी दुख में भी यही याद आता है।
0: बिल्कुल, और यही सवाल भी मैं आपको करना चाह रही थी कि सुख और दुख को आप कैसे देखती हैं?
1: देखिए अगर फिलोसफिकल उससे कहा जाए तो सुख और दुख जो है वो रात और दिन की तरह है, एक के बाद दूसरा आता ही है, और आपके नजरिए पे भी डिपेंड करता है आपका नजरिया क्या है। आप महलों में भी दुखी हो सकते हैं और झोपड़े में भी सुखी हो सकते हैं।
0: ये तो बहुत सटीक बात की आपने, और हर वक्त जो भी परिस्थिति सामने आए तो उसको खुशी खुशी अपनाना चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: और पॉजिटिव नजरिया रखते हुए हर्षा जी बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? हमें बेहद खुशी है आपसे बात करके।
1: मुझे ना फिल्म खिलौना का एक गीत जो है सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए
0: जी,
1: वो मैं सुनना चाहूंगी।
0: जी जी, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: आलिया भानो बोल रही हूँ, गुजरात से। हाँ
0: आलिया बानो, गुजरात से? जी आलिया बानो, कैसी हैं आप?
1: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है? पहन
0: बिल्कुल अच्छे हैं। और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों?
1: की नमाजें पढ़ती हूँ और घर पर ही रहती हूँ, और घर के जो काम होते हैं ना छोटे मोटे वो सब करवा देती हूँ।
0: तो कभी ऐसे बाहर जाना होता है, कहीं घूमने फिरने आप परिवार के साथ भी जाती हैं?
1: हाँ जाती हूँ ना परिवार के साथ ही।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ लेकिन मेरा हाथ पकड़ना पड़ता है,
0: हाँ वो
1: मुझे
0: तो
1: दिखाई
0: है।
1: नहीं देता है ना।
0: जी, ये तो सहयोग
1: हाँ
0: परिवार का मिलता ही होगा आपको। और ये
1: हाँ मेरी
0: मुझे
1: अम्मी,
0: जी
1: मेरी अम्मी है, मेरी दीदी है, मेरी दीदी है ना, मेरी अम्मी वो मेरा बहुत साथ देती है, मेरा हाथ पकड़ती है मुझे सबसे काल, मतलब घर में तो मैं खुद ही चल लेती हूँ, मुझे वॉशरूम मालूम है, सब मालूम है, कहाँ
0: जी
1: जाना है कैसे जाना है, मैं घर का तो सब जानती हूँ, लेकिन बाहर कहीं जाना होता है ना तो मुझे ये लोग हेल्प कर देते हैं।
0: जी बहुत अच्छी बात है। तो जब आप घर में चलना फिरना, कुछ काम करना होता है, तो आप कैसे अंदाजा लगाती हैं, यानी कि आप

0: कदम गिन लेती हैं, या आपको एक रोजमर्रा में आपको एक अंदाज हो गया है कि भाई बाएं तरफ ये है, दाएं तरफ ये है, किस तरह से कर पाती हैं आप?
1: नहीं, मुझे तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो मैं रहती हूँ ना, तो मुझे अंदाजा हो गया है कि किस तरफ क्या है।
0: जी
1: मतलब आना जाना होता है ना मेरा। अभी जैसे कि मैं आपसे जो बात कर रही हूँ ना,
0: जी
1: ऊपर वाले फ्लैट में कर रही हूँ,
0: अच्छा
1: हमारा एक माले का घर है ना, वहां कर रही हूँ, तो
0: जी
1: मैं
0: जी
1: नीचे से यहाँ भी आ जाती हूँ।
0: अच्छा, मतलब आप पहली
1: चर्चा
0: मंजिल नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और ऊपर ऊपर की मंजिल अपने आप कर पाती
1: हाँ,
0: हैं ये सब।
1: अब थोड़ा आप कर लेती हूँ। एक बार मुझे अगर अंदाजा हो जाए ना कि किस तरह जाना है, किस तरह जाना है, किस तरह आना है, तो मैं अपना आप ही सब कर लेती हूँ।
0: बहुत सुंदर बात है। मुझे ये बताइए आलिया जी कि सुख और दुख जीवन में तो सबके आते हैं, है ना? कठिनाइयां भी आती हैं, गम भी आते हैं, खुशियां भी आती हैं, आप इसको किस
1: बहुत
0: तरह से
1: खुश,
0: लेती हैं?
1: मैं तो बहुत खुश रहती हूँ। ऐसे तो ऊपर वाले ने मेरी आंखें छीन ली है मैडम, मुझे बहुत बुरा लगता है कभी कभी, पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि जिस हाल में खुदा रखे है उस हाल में ही रह लेना चाहिए। मैं ऊपर वाले से शिकवा भी करूंगी तो क्या हासिल होगा मुझे शिकवा करके भी। हाँ,
0: जी
1: लेकिन ऊपर वाले से मैं दुआ जरूर मांगती हूँ। कभी कभी मुझे रोना भी आ जाता है ईद त्योहार पर, जब सब लड़कियां बॉयफ्रेंडों के साथ, सहेलियों के साथ घूमती है, तो मुझे रोना भी आ जाता है कि मेरे साथ
0: जी
1: ही क्या हो रहा है। लेकिन
0: जी
1: फिर मैं अपने आंख में आंसू नहीं आने देती, ऊपर वाले से शिकवा नहीं करती। मैं ऐसा
0: देखिए
1: सोचती हूँ कि ऊपर वाला जिस हाल में रखे उस हाल में ही ले
0: जी
1: लेना
0: जी
1: चाहिए।
0: तो ये देखिए कितनी हिम्मत की बात है कि आपके पास आंखें नहीं है
1: हाँ
0: फिर भी हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हैं। आपकी बातें सुन के
1: हाँ
0: हमें बहुत अच्छा लगा और हमें उम्मीद है कि हमारी सारी सखियां जो सुन रही होगी ये कार्यक्रम, अगर जिंदगी में छोटी मोटी कठिनाइयां आएंगी तो अब शिकायत तो नहीं करेंगी। लेकिन हम आलिया जी आज जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैडम, बारिश का मौसम आया है तो मुझे बारिश का गाना सुना दीजिए। अंदाज सुनूंगा, अंदाज
0: अंदाज फिल्म
1: सुनूंगा,
0: का
1: है ना।
0: जी
1: हाँ, आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का।
0: बिल्कुल। तो चलिए सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ पहुंचे आपके पास, कॉल का इंतजार करते हुए कार्यक्रम हेलो सहेली में। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं अमिता बोल रही हूँ, मतलब मेरा कॉल लग गया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है।
0: जी हाँ अमिता जी, आपका कॉल लग गया है।
1: जी
0: तो बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैं पटना से बात कर रही हूँ।
0: पटना से आप क्या करती हैं, कैसी हैं, क्या जीवन में क्या करती हैं, गृहिणी हैं या कुछ और काम करती हैं?
1: मैं एक लेखिका हूँ,
0: क्या
1: एक
0: बात
1: शायरा
0: है
1: हूँ
0: जी।
1: जी, एक कवित्री हूँ। मेरी किताब भी है लहरी कशिश, मेरा पेन नेम है लहरी,
0: पेन नेम है आपका लहरे।
1: लहरे, और मेरी किताब जो प्रकाशित हुई है उसका नाम है लहरी कशिश।
0: ये बताइए कि किस तरह से शुरुआत हुई आपकी लिखने की?
1: मैं जब 5-6 स्टैंडर्ड में थी तो मुझे कविता पढ़ने का बहुत शौक था और मैं लिखती भी थी,
0: जी
1: थोड़ा बहुत लिखती थी शुरू में, चिड़िया पे, कौवे पे, सब पे लिखती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, बढ़ती गई, तो थोड़ी और ज्यादा कविता में, शायरी में रुझान आता गया। फिर कुछ शायरों को पढ़ा और फिर धीरे धीरे फिर मेरी डायरी, मेरी कलम और मैं, तीनों शुरू हो गए, साथ बैठ गए। मगर आजकल ये मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सब कुछ है, तो फिर एक दो कविताएं मैंने डाली तो लोगों को पसंद आने लगी, तो फिर मैं और लिखने लगी, कविताएं भी लिखना चालू की मैंने, शायरी भी, फिर प्रोग्राम में भी जाना चालू किया, होस्टिंग भी करना चालू किया।
0: अरे वाह, तो आपकी रचना तो हम जरूर सुनेंगे। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सुख और दुख, इसे आप किस तरह से लेती हैं जीवन में?
1: देखिए दीपा जी, जैसे हम शुरू से स्कूल में तब हमें पढ़ाया जाता था, तब हम रटते थे सिर्फ कि सुख और दुख सिक्के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
0: जी
1: लेकिन अब जब उसे अनुभव में मैं लेती हूँ तो मैं ये मानती हूँ कि दुख एक ऐसी सीढ़ी है ना जो हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाती है, संवेदनशील बनाती है, और जब हम इस सीढ़ी को पार कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा एक नया जन्म होता है। मैं कहना चाहूंगी कि दुख जो है ना वो अध्याय एक जो इंसान को एक नया जन्म देता है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब आपसे हम एक आपकी रचना भी सुनना चाहेंगे।
1: अब जैसे कि आप मुंबई से हैं और मुंबई की तीन चीजें बहुत फेमस हैं,
0: तो बताइए वो क्या क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि मुंबई की प्रसिद्ध हैं?
1: जी, मुंबई की लहरें, मुंबई का वड़ा पाव और मुंबई की बारिश।
0: ये बात
1: क्या मैं सही बोल रही हूँ?
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो
0: जी
1: क्या मैं आपकी मुंबई की बारिश पर कुछ सुना सकती हूँ?
0: बिल्कुल
1: और उसके बाद आप कुछ बूंदे यहाँ भी भेज दीजिए हमारे पटना में।
0: हम तो चाहते हैं हर तरफ बारिश और ये रिमझिम फुहारे हों, पटना में भी बिल्कुल बहुत जल्द आ जाएगी, लेकिन तब तक आपकी रचना को आप विविध भारती की स्टूडियो तक पहुंचाइए।
1: जी बिल्कुल, मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी एक बारिश है।
0: जी
1: जिंदगी एक बारिश है, झूम कर इसे प्यार कर, मुट्ठी में क्या कैद करेगा, बस बूंद बूंद का एहसास कर। महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, हर दिन को यूं दुश्वार न कर, मुकम्मल होंगे तेरे भी ख्वाब, इतना तो इस पे एतबार कर। क्यों दूर से ही तू तक रहा, क्यों दूर से ही तू तक रहा, हाँ छुपे ये लहरों में कई भंवर, पर साहिल तू है किनारा भी तुझमें, अपनी मौजों से बस तू प्यार कर। नींद ही तो टूटती है हरदम, नींद ही तो टूटती है हरदम, ख्वाबों से

0: प्यार बेशुमार कर लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, थम थम के चल पर और इंतजार न कर, पर और इंतजार न कर।
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही प्यारा। हमें उम्मीद है कि जितनी भी हमारी सखियां सुन रही हैं उन्हें भी ये आपकी रचना बेहद पसंद आई होगी, हमें भी बहुत अच्छी लगी और एक प्रेरणा भी मिल रही है कि हाँ ये लहरें कभी सुख की आती हैं, कभी दुख की आती है। और अब बताइए अमिता जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: एक पुरानी फिल्म है छोटी सी बात, उसका ये गाना है, न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, ये वाला गाना सुनना चाहूंगी।
1: ये सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम सुनीता अशोकराव देशमुख है। मैं अमरावती जिले से बात कर रही हूँ।
0: अमरावती से सुनीता जी, बताइए सुनीता
1: मैं
0: जी क्या करती हैं आप?
1: मैम खाना बनाने का काम करती हूँ
0: अच्छा, यानी टिफिन
1: घर में।
0: सर्विस।
1: हाँ घर में खाना बनाने को जाती। मैं रोटी ही बनाती सिर्फ। 4-5 घर के खाना बनाती दिन में, फिर बाद में दोपहर में आने के बाद में सिलाई काम करती।
0: अच्छा, यानी आप घर में जाती हैं, दूसरों के घर जाती हैं और वहाँ पे
1: हाँ
0: जाके।
1: दूसरे के घर जाकर रोटी बेल के आती, फिर
0: अच्छा,
1: बाद में घर का सिलाई काम करती, घर के काम।
0: यानी कि घर में जो लोग व्यस्त हैं वो नहीं अपना समय उतना दे पाते हैं, तो आप ये मदद कर
1: हाँ
0: देती हैं कि
1: सब
0: आप
1: जॉब करने
0: जाकर।
1: वाले हैं ना यहाँ पे,
0: जी
1: टीचर
0: जी
1: है तो टीचर क्या ही सब काम करती मैं।
0: जी और घर पे आकर के भी आप आराम नहीं करती हैं, आप फिर से बिजी हो
1: नहीं
0: जाती हैं।
1: रुके।
0: जी
1: हाँ बिजी है, पूरा शेड्यूल बिजी है।
0: तो व्यस्त रहना अच्छा रहता है ना, और हमें

0: ये भी बताइए कि दुख और सुख, ये इन दोनों चीजों को आप जीवन में कैसे देखती हैं?
1: मेरे पीछे तो दुख ही दुख है मैडम। अभी कैसा, मेरा भाई और मैं दोनों ही रहते हैं, ज्यादा नहीं टेंशन लेते हैं हम काम का, थोड़ा वो जितना अपने को है, जितने लगते अपने को रोजी
0: जी
1: उतनी कमाते, बस ज्यादा करके भी अपने तबीयत देखने वाला कोई नहीं है ना पीछे। मेरा भाई और मैं, हम दोनों ही रहते हैं, माँ पिताजी नहीं है, मेरे घर वाले गुजर गए, हाँ तो भाई के ही रहती मैं।
0: तो देखिए, कठिन से कठिन परिस्थितियां सामने आती हैं, फिर भी आप बिल्कुल खुशी के साथ और सकारात्मक
1: खुशी के साथ
0: सोच रख
1: बता,
0: के आप आगे बढ़ रही हैं, अपने आप को व्यस्त रखती हैं और खुश रहती हैं, दूसरों की भी मदद करती
1: मैम
0: हैं। और
1: मैं मेरी सहेली के नाम लेती,
0: जी ले लीजिए
1: हाँ बबीता ठाकुर और एक शहनाज शेख है।
0: जी, उन्हें भी हम नमस्कार करते हैं और चाहेंगे कि अगली बार वो भी हमें कॉल करें। अब बताइए सुनीता जी, कि आप कौन
1: हाँ
0: सा
1: हाँ
0: गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैंने साउथर्न फिल्म का कौन सा भी गीत सुना मैम।
0: चलिए तो सुनते हैं आप ही के पसंद का ये गीत।

0: अंतराल हुआ खत्म, तो जानते हैं अब किस सखी का लगने वाला है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं गुजरात बड़ौदा से सुहाना बात कर रही हूँ मैडम।
0: सुहाना, क्या बात है, गुजरात से अभी एक और कॉल आया था। आप बताइए क्या चल रहा है जीवन में, कैसी हैं आप?
1: जी मैडम, अभी तो जीवन में सब ठीक ठाक है, बरसात आता है।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं गुजरात बड़ौदा से सुहाना बात कर रही हूँ मैडम जी।
0: सुहाना, क्या बात है! गुजरात से अभी एक और कॉल आया था। आप बताइए,
1: जी
0: क्या चल रहा है जीवन में, कैसी हैं आप?
1: मैडम, अभी तो जीवन में सब ठीक ठाक है। बरसात आता है नहीं आता है, बरसात नहीं आता है, अभी गर्मी बहुत है।
0: सुहाना जी, देखिए प्रकृति का नियम है, इतनी गर्मी हमने सही है ना, तो बरसात तो अवश्य आएगी, है ना?
1: मुझे बहुत तसल्ली ले रही है और मुझे आपसे बात करने की भी बहुत खुशी लग रही है मैडम। पहली बार बात कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, बयां
0: जी, हम आपकी खुशी को,
1: नहीं कर सकती।
0: जी आपकी खुशी को हम बिल्कुल समझ रहे हैं, और हमें भी उतनी ही खुशी है जितनी सुहाना आपको खुशी है। तो बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैडम आपके पसंद का कोई भी गीत सुना दीजिए।
0: चलिए तो सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली।
0: जी, किससे बात हो रही है
1: हेलो
0: हमारी?
1: जी, मैं सुशीला महेश्वरी बोल रही हूँ भोपाल से। जी
0: सुशीला महेश्वरी, भोपाल से। जी सुशीला जी, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, और आपसे बात हो पाई है तो और अच्छे हो गए हम। अपने बारे में कुछ बताइए सुशीला जी।
1: हाँ, मैं घर में रहती हूँ, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ।
0: तो विविध भारती के कार्यक्रम पसंद हैं आपको?
1: हाँ जी, और आप लोग की सबकी आवाजें बहुत अच्छी लगती है मुझे।
0: जी, विविध भारती से
1: जी,
0: ये प्रेम ही है कि आप और हम जुड़े हुए हैं।
1: सबसे
0: और
1: पहला प्यार विवि भारती हमारे लिए, बचपन से सुनते आ रहे हैं और अभी तक सुन रहे हैं।
0: जी, तो
1: जी,
0: बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे प्यार से शुरू तेरे प्यार से खत्म,
0: जी,
1: ये
0: बहुत
1: वाला
0: ही
1: गाना सुनना है मुझे।
0: जी, बहुत सुंदर गीत है। तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते, किस सहेली से हमारी बात हो रही है?
1: मैं अंजू बोल रही हूँ, वाराणसी से।
0: वाराणसी से अंजू जी। अंजू जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: वैसे मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। ईयर मेरा जयपुर है, शादी मेरी बनारस हुई है
0: जी।
1: बनारस में हूँ, एक तरह से गृहिणी हूँ।
0: तो देखिए ना, गृहिणी का काम भी कोई कम नहीं होता। सब तो अपने काम को लेकर के घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन पीछे घर को संभालना, घर को देखना, हर चीज की व्यवस्था करना, ये गृहिणी का काम होता है। अब ये भी बताइए मुझे अंजू जी, रेडियो सुनना पसंद है? आप विविध भारती सुनती हैं?
1: हाँ बिल्कुल, विविध भारती ही सुनती हूँ ज्यादा।
0: एक मुझे बात बताइए, सुख और दुख, इसको आप किस तरह से लेती हैं?
1: सुख और दुख तो आना जाना लगा ही रहता है हर की जिंदगी में, लेकिन हाँ मैं एक पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ कि हाँ जब दुख आया तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा, एक पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ
0: जी
1: जिंदगी में।
0: जी, तो ये बात हम सबको समझने की और सीखने की है कि भाई अगर एक चीज आई है तो दूसरा भी आएगा, यानी कि दुख अगर आया है तो सुख भी आएगा, है ना जी। और अब जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती है आज?
1: मैं दिल एक मंदिर का गाना है, हम तेरे प्यार में सारा आलम को बेचे।
0: चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, कौन सी सहेली से हमारी बात हो रही है आज?
1: वैष्णवी पांडुरंग मोरे
0: कहाँ से बात कर रही है वैष्णवी आप?
1: वारंगा फाटा जिला हिंगोली।
0: वारंगा फाटा से। तो बताइए वैष्णवी, क्या करती हैं आप?
1: मैं पढ़ती हूँ
0: वैष्णवी, आपने अभी कौन सी कक्षा की एग्जाम दी?
1: 7।
0: 7th की।
1: हाँ
0: कैसी हुई परीक्षा आपकी?
1: बहुत अच्छी हुई।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। आपने जितने कॉन्फिडेंस से ये बोला ना, बहुत अच्छी थी। मतलब कि सारे पेपर्स आपने बहुत अच्छे से लिखे हैं, है ना? तो रेडियो
1: हाँ
0: सुनती हैं आप?
1: हाँ सुनती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। और पढ़ाई के अलावा मतलब रेडियो भी सुनती हैं, और क्या करती हैं?
1: हाँ
0: क्या क्या शौक है आपके?
1: गाने गाने का भी शौक है, खेलने का भी शौक है। खो
0: कौन सा खेल पसंद करते हो आप?
1: खो
0: खो खो खेलते हो? तो और भी आपकी सखियां होती होंगी जिनके साथ आप खेलती होंगी खो खो, है ना?
1: हाँ।
0: फिर घर आकर के शाम को अपना होमवर्क खत्म करना, पढ़ाई करना, ये सब चलता होगा। तो
1: हाँ।
0: वैष्णवी बताओ, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हो आप?
1: छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी।
0: तो चलिए सुनते हैं अनाड़ी फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: विजया रानी से।
0: कहाँ से बात कर रही है विजया जी?
1: अभी तो मैं हैदराबाद में हूँ, लेकिन रहती हूँ मैं पूर्णिया बिहार में, बेटे के पास आई हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। तो विजया जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी में एचओडी के पोस्ट पर मैंने काम किया है। अब मैं 5 साल पहले, आज अब 5 साल पूरा हो जाएगा मेरा, मैं रिटायर हो चुकी हूँ। दर्शन शास्त्र की अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर आप रही हैं।
1: हाँ, और मैंने 42 वर्षों तक महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी की सेवा की है, बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों के साथ रही हूँ।
0: तो विजया जी, मैं ये जानना
1: हाँ
0: चाहूंगी, आपने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया होगा, आपने बहुत सारे अनुभव उस वक्त लिए होंगे, तो आपका
1: हाँ
0: क्या
1: हाँ
0: अनुभव रहा उस वक्त जब आप पढ़ाया करती थी, जब आप कार्यरत थी?
1: तो मेरा अनुभव ये रहा कि मैंने सिर्फ विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट नहीं समझा, उनको मैंने अपनी बेटी की तरह पढ़ाया। जितने बच्चे आते गए सबको, और मैं उनसे हृदय से जुड़ जाती थी, कि मेरी कमजोरी कहिए या जो कहिए।
0: जी, ये तो कमजोरी हो नहीं सकती, ये तो ताकत है एक टीचर
1: और
0: की।
1: इतना उनको शिक्षा देने के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ, मैं उनका पर्सनल प्रॉब्लम भी सुनती थी,
0: क्योंकि आप
1: और
0: टीचर।
1: उनका जो सॉल्व कर सकती थी मैं कोशिश करती थी उसके प्रॉब्लम को सुनूं और उसको उस तरह से मुक्त रखूं जो उनके दिमाग में चल रही है बातें, घर को लेके, अपने माता पिता को लेके, ताकि उसका पढ़ने में मन लग सके, वो
0: जी
1: अपने आप को कंसंट्रेट कर सके पढ़ाई
0: जी।
1: हाँ, नहीं
0: जी
1: ये हुआ मेरे साथ। मैंने बच्चों को समय भी दिया, सिर्फ पढ़ाया नहीं,
0: जी,
1: और मुझे इसका संतोष है कहीं ना कहीं।
0: बहुत अच्छी बात है। संतोष ही परम धन कहिए या सुख कहिए। साथ में मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप दर्शन शास्त्र की शिक्षिका हैं, तो सुख
1: हाँ,
0: और दुख को आप किस तरह लेती हैं?
1: तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग ज्यादातर संवेदनाओं के स्तर पर जीते हैं।
0: जी।
1: खुशियों के क्षण में भी हम अपना आपा खो देते हैं, और दुखों के पल हमें छिन्न भिन्न कर डालते हैं,
0: जी
1: इतना तोड़ डालते हैं कि ताउम्र हम उसके आघात से उभर नहीं पाते।
0: जी
1: सुखों के क्षणों को तो हम भुला देते हैं, लेकिन दुख हमारी अंतरात्मा तक झकझोर जाता है।
0: जी
1: अब यहाँ पर मैं रुक कर सोचती हूँ कि सुख दुख के झंझावातों में हम खुद को कैसे नियंत्रित रख सकें।
0: जी, यही हम जानना चाहते हैं, और हमारे सखियां भी अवश्य जानना चाहती होंगी कि जब अति कठिन परिस्थितियां आए या बहुत ज्यादा
1: हाँ,
0: खुशी के पल आ जाएं, तो अपने आप को एक बैलेंस बना के कैसे रखें, और जो आप
1: हाँ
0: बताना चाह
1: तो
0: रही है ना कि नियंत्रण कैसे करें, वो भी बताइए।
1: हाँ, नहीं ठीक है। तो मेरा मानना है हम लोग सब स्थित प्रज्ञ तो नहीं हो सकते ना, लेकिन
0: जी
1: हमारा अनुभव कहता है कि न सुख शाश्वत है और न दुख।
0: जी
1: थोड़ा सा हम तटस्थता का अभ्यास करें, न्यूट्रलिटी का, और न्यूट्रल हो जाए अगर कुछ क्षण के लिए, और यह समझ लें कि सुख और दुख हमेशा नहीं रहेंगे। आज दुखों की घड़ी आई है, तो कल सुख भी हमारे द्वार पर आएगा।
0: जी, यानी ये पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए।
1: अपनाना होगा, और जीवन तो निर्झर की तरह बहता ही चला जाएगा, और सुख दुख तो उसकी हिलोरे हैं।
0: जी बिल्कुल सही, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में सुख और दुख की परिभाषा समझाने की कोशिश की है विजया जी। तो विजया जी बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज आप?
1: ममता फिल्म का, रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके गली बनके सभा बागे वफा में।
0: तो चलिए सुनते
1: हाँ
0: हैं ये आप ही की पसंद का सुंदर गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, शांति
0: किससे बात हो रही है हमारी?
1: राजपूत से दी,
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: जबलपुर से।
0: जी शांति जी, बताइए कैसी हैं आप?
1: ठीक है जी मैम, आप कैसी हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। और क्या चल रहा
1: कुछ
0: है इन दिनों, क्या कर रही हैं आप?
1: नहीं मैम, घर में रहते हैं, घर ही का काम, खाना पीना, घर हाउस वाइफ से घर ही में
0: जी
1: रहते हैं, कुछ नहीं।
0: जी हमारी कई
1: हाँ।
0: सखियां कहती हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं, हाउसवाइफ हैं, लेकिन हाउसवाइफ का भी काम बहुत अहमियत वाला होता है। हर काम, हर चीज आपको देखना होता है, हमें देखना होता है ना जी। घर के काम के अलावा और क्या करना पसंद है आपको?
1: और मैं विविध भारती के रात में भी सुनती हूँ, 12-1 बजे लोग सब कार्यक्रम, दोपहर में भी सुनती, सुबह भी सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को।
0: यानी कि घर के काम करते करते आपका रेडियो चलता
1: हाँ
0: रहता है।
1: मैं, हाँ मैं चालू कर लेती हूँ मोबाइल से और सुनती रहती, काम भी करती रहती
0: हाँ,
1: हूँ।
0: तो मन प्रसन्न रहता है और काम भी होता रहता है ना
1: हाँ जी
0: जी। तो बताइए
1: जी
0: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, निकाह पिक्चर का
0: चलिए सुनते
1: जी।
0: हैं आपकी पसंद
1: हाँ
0: का ये गीत।

0: हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। सखियों, आज हमने जाना जीवन के दो पहलुओं के बारे में, यानी सुख और दुख के बारे में। कई सारे जज्बात यहाँ पे साझा हुए, कुछ हुई मन की बातें, आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबान। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240024662, अंग्रेजी में 02240024662। एक और नंबर है 02228670288, अंग्रेजी में 02228670288, 022 मुंबई का STD कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें, ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज के हेलो सहेली में तकनीकी रूप से हमारी सहयोगी रही भावना सिंदल, संपादन में हमें सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखियों के दिल की जुबा हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मनीष वैद्य की कहानी सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी। वाचन स्वर ममता सिंह का है।
1: प्रेम परछाई है, नहीं वो नदी के तटों की तरह है, कभी न मिल पाने को अभिशप्त। प्रेम हमारे भीतर के नमक की तरह है, नहीं प्रेम तेजाब की तरह है, भीतर तक सब कुछ खत्म कर देने वाला। प्रेम कोमल अनुभूति है, नहीं वो विद्रोह का उद्घोष नाद है। लड़की के मन में खलबली मची है, उसके चारों तरफ घुप अंधेरा है। भीतर के अंधेरे में घुल रहा है बाहर का अंधेरा, वो उस अंधेरे की आदी थी। वो इसे जानती थी, वो अंधेरे से नहीं डरती थी, वो किसी से नहीं डरती थी। वो नदी से मछलियां ले आती।

कार करती और गोफन तान कर ऊंचे पहाड़ों से फल गिरा लेती। नदी की धार के खिलाफ तैरती हुई मछलियां उससे पीछे छूट जाती। वो अलबेली, अल्हड़, चुलबुली और अपनी ही धुन की थी, बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग। उसकी सहेलियां भी उसकी तरह नहीं थीं, थोड़ी थोड़ी करीब, फिर भी उनकी आपस में दोस्ती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्ती अपनी नानी से थी। नानी थी भी ऐसी, उम्र का फासला उनकी दोस्ती में कभी बाधा नहीं बनता। कभी नानी उसकी उम्र की हो जाया करती तो कभी वो नानी की उम्र में दाखिल हो जाया करती। वो बचपन से ही नानी के पास रहती थी। उसके माँ पिता कई साल पहले चल बसे थे, तब वो बहुत छोटी थी, इतनी कि उसे ठीक से अपने माँ पिता का चेहरा भी नहीं याद। नानी के गांव के ठीक पीछे पहाड़ था, इतना पास कि जैसे गांव उसकी गोद में हो। पहाड़ से कूदती फांदती नदी गुस्से में बहुत तेजी से बहती तो कभी मंद मंथर सी थकी मांदी किसी बुढ़िया की तरह। वो एक पहाड़ी नदी थी, पहाड़ों से फिसलकर मैदानों में बड़ी नदियों से मिल जाने वाली। जंगल के बीच चारों ओर गांव कुछ इस तरह ढका था कि बहुत पास आने पर भी उसका कोई चिन्ह नजर नहीं आता था। सागवान, पलाश, तेंदू, महुआ, शीशम के बड़े बड़े पेड़ों और झाड़ी नुमा रास्तों के बीच से यहां तक एक पगडंडी पहुंचती थी। यहां लोगों को रात बेरात चीते नाहर की गुर्राहट भरी दहाड़ सुनाई देती तो कभी रीछ की आवाजें, पर ये लोग उन आवाजों से डरते नहीं थे। वो गांव भी नहीं था, गांव जैसा कुछ था। गांव में बहुत से मकान होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं और वे खेती या दिगर काम करते हैं। वहां कुछ दुकानें होती हैं, स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाएं भी हो सकती हैं, पर वो ऐसा नहीं था। वो छोटी सी बस्ती, कुल 20-22 टपरियां होंगी और 100 के करीब लोग। किसी फलिए की तरह गांव बाकी दुनिया से खोया हुआ था। हाँ, सरकारी नक्शे में जरूर जंगल के बीच सुई की नोक की मानिंद था। नदी से कुछ दूरी पर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटे से ओटले पर पत्थर की एक मूर्ति थी। गांव के मंदिरों और दीगर जगहों पर अमूमन कई मूर्तियां हुआ करती हैं, पर ये उन मूर्तियों से बिल्कुल अलग थी। ये एक औरत का बुत था, वो देवी की तरह नहीं थी। देवी की मूर्तियों के हाथों में हथियार या फूल जैसी चीजें होती हैं। ये पत्थर की औरत उसी तरह थी जैसे यहाँ की दूसरी औरतें। बुत में वो मुस्कुराती हुई दिखती, मानो कुछ ही पलों में खिलखिलाकर हंस पड़ेगी। किस राम के इंतजार में है ये पत्थर की अहिल्या? उस लड़की के लिए वो बुत बचपन से ही किसी रहस्य की तरह था। गांव में कोई शादी करके लौटता है तो नए जोड़े को सबसे पहले यही लाया जाता। लाल ध्वजा, घी का दिया, ताजे फूल, अगरबत्ती का धुआं, लोबान का धुआं, नारियल, दानी चुनरी, ढोल ढमाकों के साथ सब यहां पूजा करते हैं। उनके साथ औरतों का हुजूम होता। उसने नानी से कई बार पूछा था, नानी हमेशा ही उसे टाल दिया करते। उसे नानी ने कई कहानियां सुनाई, पर ऐसा क्या था इस कहानी में कि उस बुत की बात आते ही वो डरने लगती? किसी अनहोनी की आशंका में उसकी आंखें फटने लगती। नानी उसे बच्चों की तरह अपने अंक में भर लेती और उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाती रहती जब वो डरती। वे शायद तब किसी तूफान से गुजर रही होती, सूखी नदी में तपती रेत का दरिया पार कर रही होती। चंदा नाम था उसका। नानी ने पहली बार उसे देखा था तो सहसा ही ये नाम उसके मुंह से निकल आया था, उसके लिए अतखिला चांद का टुकड़ा। इस तरफ काले लोगों और अंधेरों के बीच रहने वाली नानी को उसकी कंचन सी देह से नया उजाला दिखा था। तब नानी उसकी कंचन काया से डरी थी। उसकी माँ को कहा था, ज्यादा अटोपनी पड़ेगी इसे, सुंदर लड़कियां माँ बाप के लिए परेशानी का सबब होती हैं। हाँ, उसके आने पर आधी रात पीतल की थाली बजाई गई थी। अंधेरी रात में दूर तक थाली की आवाज गूंजती रही। नानी को तब क्या मालूम था कि आगे चंदा को उसे ही अटोपना पड़ेगी और उसे ही अतिरिक्त सावधानी भी रखनी होगी। चंदा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके अनुपात में नानी की चिंताएं भी बढ़ने लगी थीं। नानी कहती, ये दूसरों की अमानत है,
इसका

शादी ब्याह हो जाए तो मेरी चिंता खत्म, फिर मैं चैन से मर सकूंगी। उसने बचपन से बस नानी को ही देखा था, वही उसके लिए माँ बाप थी। उसने अपने बचपन की सारी चाहतें नानी को ही पूरे करते देखा था। नानी कभी उस पर चढ़ जाती तो कुढ़ने लगती, तार सी लंबी हो चली है पर अक्कल बच्चों जैसी, जब देखो घोड़ी जैसी दांत पिलकाती रहती है, उलल बछेरी कहीं की, सारा दिन यहाँ वहां घूमती रहती है। अरे जमाना बहुत खराब है, कल को कुछ हो गया तो कहाँ मुँह छुपाऊंगी मैं। पर नानी की डांट जैसे ठंड की धूप, भीतर ही भीतर उसमें अपनेपन की गुनगुनी आँच होती है।

वो नानी को जैसे तैसे मना ही लेती। कुछ ही पलों में नानी भी भूल जाती तो उसे कब याद रहता। उम्र बढ़ने के साथ लड़की की देह से चंदन की खुशबू का सोता फूटने लगा। वो चंपा की तरह लरजती थी, तितलियों की तरह हल्की होकर फूलों के कानों में कुछ कहती तो वे खिलखिलाने लगते। वो नदी के पास जाती तो नदी उससे अटखेलियां करने लगती। पहाड़ की ओर जाती तो उसकी घाटियों में रंग बिरंगे फूलों का गुलिस्ता खिल उठता। वो खिलखिलाती और हर श्रृंगार झड़ने लगते। उसकी सांस की लय पर पेड़ सरसराने लगते। वो पूरब की ओर देखती तो धूप खिल उठती। वो जंगल की भाषा जानती थी और जंगल उसकी भाषा पहचानता था।

नानी से कहानी सुने बिना कोई रात वो सोती नहीं थी। नानी गजब की किस्सा गो थी। किस्सा गो उनकी तासीर में थी। वो ऐसे सुनाती कि चित्र चलने लगते। वे उस समय में दाखिल हो जाया करती मानो किरदार खुद अपनी बात कह रहे हों। नानी की कहानियां जैसे उसकी लोरी थी। नींद की घाटियों में वो उन किरदारों के बीच बहती रहती, घूम

रहती। फिक्रदार सपनों में अक्सर उससे बातें किया करते। कई बार ये भी होता कि किरदार उसके भीतर इस तरह बस जाते कि वो उनके प्रभाव से बहुत दिनों तक बाहर ही नहीं आ पाते। तब वो बेचैन सी नदी के तट पर जा बैठती, जैसे नदी से कुछ पूछ रही हो, गुमसुम सी, अनमनी और उदास, भीतर ही भीतर सुलगती हुई घंटों तक इसी तरह बैठी रहती। नानी की कहानी सुनने से पहले दो शर्त होती, शर्त नहीं तो कहानी नहीं। चंदा हर बार ये शर्तें मानती। पहली शर्त थी हुकारा, मतलब हाँ में हाँ मिलाते चलो। जब वे कहानी कहती तो जरूरी था कि सुनने वाला कुछ देर में हाँ हाँ कहता रहे। वे कहती कि हुंकारा टूटा तो कहानी की डोर भी टूटी।

नानी अक्सर छोटी कहानी सुनाती थी, पर कभी कभी कहानी लंबी हो जाती। नानी कहती कि ये उसके हाथ में नहीं है कि किसी कहानी को कहाँ खत्म करें, ये तो किरदार ही तय करते हैं, कहने वाले का उन पर कोई जोर नहीं चलता। कहानी सुनते हुए वो अक्सर नानी के देह के स्पर्श की आँच महसूस करती और इस आँच में नानी की तरह वो भी घुलने लगती। नानी की देह में नमक सी खुशबू थी जो उनके किरदारों में से उनमें आई होगी। लोक कथाएं हो या सीता, उर्मिला, मंदोदरी, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, गांधारी, राधा और मीरा की कहानी, इनके प्रेम और इनसे किए छल की कहानियां नानी इस अंदाज में सुनाती कि जैसे इनके दुख उसने अपने ही कलेजे में छुपा रखे हैं। वे कहती किसी समय में स्त्री मुक्त नहीं रही, न तब और न अब, हर दौर में उसे आग से ही गुजरकर परीक्षा देनी पड़ी। यही उसका भाग है, उसे हमेशा प्रेम की जगह छल ही मिला, फिर भी उसने प्रेम का अंकुर कभी सूखने नहीं दिया। अपनी आत्मा को आंसुओं की नमी और दुखों के ताप से उर्वर बनाए रखा। आषाढ़ के आखिरी दिनों की कोई रात रही होगी, ताप और उमस से भरी हुई, हवा जैसे कहीं थम गई थी, आंगन के ऊपर आसमान में तारे ही तारे थे। नानी उस रात उसे उर्वशी पुरुरवा की कहानी सुना रही थी, ईसा से 1600 साल पुरानी कहानी, पुराणों की पहली कहानी, आज से करीब 3500 साल पुरानी। नानी कहानी सुना रही थी, स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी उर्वशी। उर्वशी के पास सब कुछ तो था, लेकिन ऐसा सरल जीवन और मनोरम प्रकृति कहाँ। स्वर्ग में नृत्य, संगीत और आकर्षण की स्थिर सपनीली दुनिया से अलग, यहाँ धरती पर राग रंग, जीवन संघर्ष, मौसमों की आवाजाही और प्रकृति का पल पल बदलना। उर्वशी को धरती हमेशा लुभाती थी। एक दिन वो धरती की सुंदरता देखने आई और जंगल की झील में अपना अक्स देखने में ऐसी खो गई कि शाम से पहले वापस स्वर्ग लौटना ही भूल गई। धरती के जंगल है ही इतने सुंदर कि कोई भी रम जाए इनमें। चंदा ने हुंकारा भरा, हाँ ये बात तो है, जंगल है ही इतने सुंदर। नानी ने कहानी को आगे बढ़ाया तो शाम घिर आई, चांदनी रात में झील का सौंदर्य और बढ़ गया। उर्वशी के रूप गंध से जंगल महकने लगा, इससे केसी नाम के राक्षस का पुरुषत्व जाग उठा। उसने उर्वशी का हाथ पकड़ा और उसे जबरन ले जाने लगा। उर्वशी ने सहायता के लिए पुकारा, रात के नीरव सन्नाटे को चीरते हुए स्त्री का आर्तनाद जंगल में दूर दूर तक फैल गया। चंदा ने दोनों हथेलियां अपनी ठोड़ी पर रखते हुए पूछा, अरे फिर क्या हुआ नानी, कोई आया उसे बचाने? नानी ने अपनी आवाज को और भीतर तक ले जाते हुए कहा।

हाँ, थोड़ी दूरी पर पुरुरवा शिकार के लिए गुजर रहे थे। पुरुरवा एक प्रतापी राजा था, स्त्री और गरीबों का रक्षक। प्रतिष्ठानपुर का राजपाट होते हुए भी एकदम एकाकी। ओशिन सहित कई रानियां थीं, पर मन की बात कोई नहीं समझ पाती। राग रंग में मन नहीं लगता तो वो रात को शिकार पर निकल जाता। प्रेम से रीता इंसान कई बार लक्ष्यहीन हो जाता है। कैसी राक्षस से भिड़ जाते हैं पुरुरवा और बचा लेते हैं उर्वशी को। चंदा ने चहकते हुए हुंकारा भरा, हाँ ये हुई ना बात नानी। नानी को इस तरह कहानी की शुरुआत में ही चंदा का फैसला देने वाला अंदाज ठीक नहीं लगा, पर वो भी आखिर किस्सा वो थी। उसने अगले ही पल चंदा को फिर से बेचैन कर दिया। नानी ने आवाज बदली और वे कहने लगी, लेकिन यही आता है एक नया मोड़ जो बदलता है पुरुरवा और उर्वशी की जिंदगी को। केसी से छुड़ाने में कई बार पुरुरवा और उर्वशी का एक दूसरे से स्पर्श हुआ। दोनों के भीतर स्पर्श से तरंगित सितार के कई तार छिड़ गए। चांदनी रात के दूधिया उजाले में दोनों की आंखें मिली तो वे एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढने लगे। बरसों की आस घुमड़ आई, अनायास बारिश होने लगी। उस रात दोनों की बरसों से तपती अतृप्त देह अंधेरे और बारिश में एक होने को आतुर थी। दोनों की देह उस बियाबान में अकथ प्रेम की कहानी लिखती रही। चंदा ने हुंकारा देते हुए पूछा, हाँ तो फिर शादी हो गई दोनों की? नानी ने डपटते हुए कहा, अरे ऐसी आसान कहाँ होती है कहानियां चंदा। उर्वशी यहां धरती की नहीं, वो तो स्वर्ग की थी ना। नानी फिर शुरू हो गई, तो सुबह पुरुरवा ने भारी मन से उर्वशी को स्वर्ग भेज दिया। दोनों रीते रह गए, भीतर ही भीतर कुछ खो गया। न पुरुरवा का मन धरती पर लग रहा था और न ही उर्वशी का मन स्वर्ग में। एक का धरती पर राजसी ठाठ बाट तो दूसरे का स्वर्गिक आनंद, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रेम में झुलस रहे थे, दोनों अनमने से।

अनमनी उर्वशी, नानी कुछ कहती इससे पहले ही एक तारा टूटकर जमीन पर आने लगा और नानी ने कहानी वहीं रोक दी। चंदा शर्त से बंधी थी, वो कहानी के इस तरह अचानक बीच में रुक जाने से उदास हो गई, पर कहा कुछ नहीं। उसे पता था कि नानी अपनी शर्त कभी नहीं तोड़ती। अधूरी कहानी उसके भीतर देर तक घुमड़ती रही। नानी को तो नींद आ गई, पर उसकी आंखों में नींद कहाँ। वो सोने की जितनी भी कोशिश करती, हर बार निष्फली रहती। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चांदनी रात में पीपल के नीचे ओटले पर वो औरत बुत की तरह मुस्कुरा रही थी। उसने सोचा, हर औरत एक बुत ही तो है। महज मुस्कुराती हुई, क्या सांस लेना और दिल का धड़कना ही जीवन है। चंदा सोचती तो सोचती रहती देर तक। कोई भंवर उठता उसकी आंखों की झील में, कोई बवंडर उठता उसके मन में, गीली लकड़ी सी धू धू करके उसकी देह सुलगने लगती।

इस वक्त आकाश की याद में है, बड़ी शिद्दत से, मानो बीता हुआ सच अभी गुजर रहा हो उसकी आंखों के सामने। वो कहाँ होगा? क्या वो भी उसे याद करता होगा? पता नहीं। यही नदी के किनारे उन्होंने एक दूसरे को पहली बार देखा था। दोनों को नदी ने देखा था, पीपल की बुत वाली औरत ने देखा था, पहाड़ ने देखा था और जंगल ने भी। उसने उसे देखा तो वो देखती रह गई। ऐसा कोई इधर उसने कभी देखा नहीं। उसे लगा कि ये जंगल की कोई परी है, किसी ने तन्मय होकर तराशी है उसकी देह। बड़ी बड़ी आंखें, सुतवा नाक, लरसते से नाजुक होठ, सुराही का गला, काले बालों का लहरदार जूड़ा, लाल ओढ़नी, धानी घाघरा, जैसे वन देवी हो या राह में भटकी हुई कोई राजकुमारी। वो खो गया था। वो अब महसूस कर रही थी उसकी आंखें उसे भेद रही हैं, शायद भीतर आत्मा तक। उसकी आंखों में भी इंद्रधनुष तनने लगा था। सपनों से उसके जीवन में उतर रहा था प्रेम,

धीरे धीरे अपने अंक में लेती हुई आज थी वहां। वो उस ताप से अपने में ही बिखर रही थी और वो फैल रहा था उसके वजूद में हौले हौले। चंदा तिल तिल आकाश के वजूद में समा रही थी। उसका अपना सब कुछ विलीन हुआ जा रहा था। प्रेम में दो हो ही नहीं सकते, वहां अद्वैत है। आकाश की तरह उसने भी चंदा को अपने में समेट लिया था। आकाश के बिना चंदा तो चंदा के बिना आकाश कैसा। वे प्रेम में थे या उनके साथ पूरी

आकाश जिसके वजूद में चंदा तिल तिल समा रही थी, वही आकाश दरअसल यहां जंगल बचाने आया था। कुछ लोग जंगल को खत्म कर देना चाहते थे। वो जंगल को उसी तरह रखना चाहता था जैसे जंगल बरसों से था। वो नदी में मछलियों की आवाजाही देखता रहा। चंदा के पैरों को छूते हुए नदी का पानी अपनी धार में बह रहा था। तब से अब तक न जाने कितना ही पानी बह गया होगा इस धार में। वो सोचने लगता है, स्मृतियां दुख से भर देती हैं, जख्म हरे हो जाते हैं। क्यों नहीं भूल पाते हम दुखद स्मृतियों को, मानो कहीं भीतर फंसी रह जाती हैं ये दुखद स्मृतियां। सपनों से जीवन में आया प्रेम कब फिर सपनों में लौट जाता है, हम समझ भी नहीं पाते। प्रेम दुर्लभ है, शायद हवा के वर्जित फल की तरह। कुसुम

जो चंदा की प्रिय सहेली थी शुरू से ही इसके खिलाफ थी, पहले दिन से। वो कहती थी प्रेम कुछ भी नहीं है, बस छलावा है, एक भरम है, एक बहाना है। दोनों नदी के तट पर इसी जगह बैठी थीं। चंदा ने कुसुम से हंसते हुए कहा, कुसुम तुझे वो कहावत याद है ना, झड़त पान हसत पीपली, झड़त पीपली हसत पान। मतलब, कुसुम ने पूछा था। चंदा

पीपली झड़त पीपली हसत पान, मतलब कुसुम ने पूछा था। चंदा बोली, अरे जब पतझड़ में सारे पेड़ पौधों के पत्ते गिरते हैं तो पीपल उन नंगे दरख्तों पर हंसता है, और जब सारे पेड़ पौधे पर नई कोपले आने लगती हैं तो छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं, तब पीपल के पत्ते झड़ने लगते हैं और सारे उस पर हंसते हैं। चंदा ने हंसते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया। आज मैं प्रेम में हूं तो तू मुझे ऊंच नीच समझा रही है, कल जब यही तेरे साथ होगा तब मैं। कुसुम ने बीच में ही बात काट दी। ऐसा कभी नहीं होगा चंदा, मैं नहीं पढ़ने वाली तेरी तरह प्रेम रेम के चक्कर में, चंदा ने चहकते हुए कहा था। पगली, कोई सोच समझकर थोड़ी ही प्रेम करता है, ये तो बस हो जाया करता है। प्रेम दिमाग से परे होता है, वो तो मन की किताब में कैद होता है। प्रेम मन में होता है, अनजाने में, जानबूझकर नहीं। चलो चलो, प्रेम अंधा होता है, कुसुम ने कहा। नहीं कुसुम, प्रेम तो आंखें खोल देता है, चंदा बोली। प्रेम संकीर्ण कर देता है, कुसुम बोली। नहीं रे, प्रेम तो संकीर्णता को तोड़ता है, प्रेम सारी हदें तोड़ देता है। प्रेम निस्सीम है, निस्सीम, चंदा बोली। प्रेम समझ को ही खत्म कर देता है, ये एक तरह का पागलपन ही है चंदा। प्रेम जीवन को नए अर्थ देता है, वो दो दिलों को जोड़ता है, ये तो एक अलग अनुभूति होती है। प्रेम हमारे पागलपन का उपचार है, दवा है, प्रेम दवा है। चंदा, प्रेम आग है, आग। कुसुम, आग भी तो जरूरी है ना जीवन के लिए, आग से ही तो अनाज पकता है, आग से ही लोहा ढलता है, आग से ही सोना तपता है। आग नहीं तो जीवन कैसा, हर सर्जन आग की भट्टी से ही तो उपजता है। चंदा, प्रेम अपनों से तोड़ देता है, समझी? नहीं रे, प्रेम किसी को नहीं तोड़ता। कुसुम, जो प्रेम को नहीं समझ पाते वे खुद टूट जाते हैं, प्रेम तो हमेशा जोड़ता ही है। चल हट, तुझसे तो बात करना ही व्यर्थ है चंदा। अरे सिर्फ प्रेम की बात पर ही ना कुसुम, बाकी बातों में तो नहीं। ऐसा इसलिए है कि तूने प्रेम को अब तक सिर्फ दूर से ही देखा है, दूसरों की नजरों से ही ना, उसमें डूबना तो दूर तूने तो छुआ तक नहीं है, फिर उसके बारे में कैसे जान सकती है भला। चंदा उन पलों को शिद्दत से याद करती है तो उसके भीतर यादों की नदी मचलने लगती है, उसे अपने ही तन की खुशबू अब पराई सी लगती है। उसका पुरुरवा भी क्या उसे इसी तरह कहीं याद करता होगा? याद करता होता तो लौट आता अब तक। कभी कभी लगता है कुसुम सही कहा करती है, कभी लगता है उसका मन सही कहता है। अपने ही द्वंद्व में उलझी है वो, पर उसे भरोसा है अपने प्रेम पर, पूरा भरोसा है कि एक दिन लौट आएगा आकाश भी। चंदा और आकाश जब मिलते तो देर तक बातें करते रहते, उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थीं। उनके पास बातों का खजाना था, कभी वे बातें करते हुए जंगल में खो जाते तो कभी पहाड़ से उतरती नदी को देखते रहते। नदी का ये तट उन्हें सबसे अच्छा लगता, उनके पैर नदी के पानी में होते और इस तरह नदी प्रेम को सींचती थी। उनकी बातें नदी में गिरती रहती, नदी उन बातों के टुकड़ों को सहेज लेती। वे चिड़ियों से शब्द लेते, वे पपीहे से प्यास लेते और अपने प्रेम को गाढ़ा होते देख रहे थे। ये रात

आकाश को बुत वाली औरत की कहानी उसने ही सुनाई थी। आकाश का हाथ पकड़कर वो उसे बुत के पास ले गई थी। बुत वाली औरत मुस्कुरा रही थी। आकाश, ये बुत देख रहे हो ना? ये बुत नहीं है, सच की औरत है, इसी गांव की। करीब 400 साल पहले यही इसका घर था। हर दिन नदी के पास की पगडंडियों से पहाड़ की ओर बकरियां लेकर ये निकल जाया करती थी। कभी वो बहुत मीठा गाती थी, पहाड़ पर गाती तो गांव सुनता रहता। उसके गाने में ताकत थी कि गीत सुनते हुए कोई दूसरा काम नहीं कर पाता, जो सुनता वही ठहर जाता। उसकी आवाज में दर्द था, उसके दर्द से भीगे गीत पहाड़ की घाटियों में गूंजते रहते देर तक। नदी के साथ बहते हुए गीत बहुत दूर तक चले जाते। आकाश हतप्रभ था, ऐसा गीत, ऐसा गला कहां से सीखा था उसने? अपने ही दुखों से, अपने ही भीतर से। यह कौन किसको सिखाता है, सब अपने ही भीतर सीखते हैं। कहते हैं वो गले से नहीं गाती थी, अपने कलेजे को ही चीर लेती थी वो, वहीं से फूटता था गीत। चंदा की आंखें बुत पर टिकी थी। ऐसा क्या दर्द था उसका, प्रेम का दर्द, जिसका कोई उपचार उसके पास नहीं था, कोई दवा नहीं थी उसके पास। फिर क्या हुआ, आकाश बेताबी से पूछ रहा था। उसने भी किसी से प्रेम किया था, कहीं से सौदा बेचने यहां आया और प्रेम लेकर चला गया, फिर बरसों तक इधर नहीं लौटा। वो उसका इंतजार करती रही। इंतजार का दर्द सिमट आया था उसके गीतों में।

तो क्या वो फिर कभी नहीं लौटा? क्या वो उसे भूल गया? नहीं, वो उसे अपने देश, अपने गांव ले जाने को लौटा था, पर वो उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। उसे इस जंगल से इतना प्यार था कि कहीं जाने की बात कभी सोच भी नहीं पाती। हार कर सौदागर ने भी यहीं रहने का फैसला कर लिया। वो बहुत खुश हुई। वो संकोच में थी कि घर वालों को ये सब कैसे बताए। तभी एक किस्सा हो गया। किस्सा? कैसा किस्सा? एक रात नदी के तट पर ठीक यहीं वे दोनों अपने सपनों में खोए हुए थे। तभी गांव के कुछ लोगों ने उन्हें यहां इस तरह देख लिया। थोड़ी ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इस तरह किसी गैर पुरुष के साथ? गांव वालों में से किसी ने पहला पत्थर उछाला। फिर तो इतने पत्थर चले कि वही दोनों लहू लुहान हो गए। इतने पत्थर खाकर वे बचे नहीं। वे तो नहीं बचे, लेकिन उनका प्रेम जीत गया था जमाने से, अपने समय से।

उसके बाद गांव में जैसे मुर्दानगी छा गई, संकट पर संकट, गांव वाले परेशान। संकट में ही याद आते हैं अपने किए हुए बुरे कर्म। ये उसी औरत की वजह से तो नहीं, पूरे गांव ने नाक घिसी यहां आकर। किसी मूर्तिकार ने उसकी मूर्ति गढ़ी पत्थर में, तब से अब तक इसे लोग देवी की तरह पूजते हैं। लेकिन कुंवारी लड़कियों को यहां नहीं आने देने के पीछे क्या वजह है? डर, प्रेम से। उन्हें लगता है कहीं वे भी प्रेम में न पड़ जाएं। कोई मां अपनी बेटी को यह किस्सा तक नहीं सुनाती कि कहीं उसकी बेटी भी प्रेम न करने लगे। आकाश ने कहा था, तो क्या इन 400 सालों में कुछ भी नहीं बदला? बिल्कुल नहीं। शायद ये दुनिया का पहला ऑनर किलिंग रहा होगा। बहुत देर तक दोनों के बीच सन्नाटा सा रहा। वे भी धीरे धीरे पत्थर के शक्ल में ढल रहे थे। दूसरी रात नानी ने फिर शुरू की थी उर्वशी की कहानी, वहीं से जहां तारा टूटने पर छोड़ी थी। नानी कह रही थी, अनमने से उर्वशी नृत्य नाटिका में लक्ष्मी का अभिनय कर रही थी। उसके ध्यान में पुरुरवा थे। उसने नाटिका में जैसे ही विष्णु की जगह पुरुरवा कहा तो स्वर्ग में खलबली मच गई। नृत्य नाटिका के निर्देशक भरत मुनि ने

उसे शाप दे दिया, तू जिसके प्रेम में है जा उसे ही वरण कर। वो प्रेम में थी तो उसे ये शाप भी वरदान ही लगा। उसने पुरुरवा के पास संदेश भेजा। पुरुरवा ने उसे धरती पर बुलवा लिया। गंधमादन की रमणीक पहाड़ी पर दोनों प्रेम में रहने लगे। अच्छा, इस तरह तो प्रेम जीत गया नानी, चंदा बोली। नानी ने कहा, सरल नहीं होती जिंदगी की राह बेटा, वो कई मोड़ मुड़ती है। हाँ, प्रेम को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अब आगे सुन। पुरुरवा उर्वशी के लिए फल लेने जा रहे थे कि जंगल में उसकी आंखें पल भर के लिए नदी से झुककर पानी भरती हुई एक युवती पर ठहर गई। पुरुरवा को बिना बताए उर्वशी भी थोड़ी दूर पर उनके पीछे चल रही थी। एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है पर अपनी उपेक्षा नहीं। वो डाह से भर उठी और वहीं एक बेल में बदल गई। पुरुरवा परेशान, सब तरफ देखा ढूंढा पर कहीं नहीं। पुरुरवा विरह से बहुत दुखी हुए। एक मुनि ने देखा तो दया से भरकर उन्होंने पुरुरवा को एक मणि दी, जिसके छूते ही उर्वशी फिर से स्त्री बन गई। वो बेल में नहीं बदली थी, शायद वो बेलों के पीछे अपने में ही छुप गई थी। नानी कहे जा रही थी, बहुत मनाने पर उर्वशी उसके साथ रहने को तैयार तो हो गई, पर उस बार उसने पुरुरवा के सामने शर्त रख दी। कैसी शर्त नानी? प्रेम में शर्त? भला कैसे? चंदा के माथे पर बल पड़ गए थे। नानी की कहानियां ऐसे ही कई मोड़ों से भरी होती हैं, उसकी अपनी जिंदगी की तरह। ऐसा लगता कि बस अब कहानी का सुखांत होता ही है और तभी कोई एक नया मोड़ आ जाता उसमें। सुनने वाला अचरज में पड़ जाता है। नानी कहती, अरे मोड़ नहीं तो कहानी क्या? नानी ने कहा, हाँ प्रेम में शर्त। ये उसकी प्रेयसी बनकर तभी तो उसके साथ गंधमादन पहाड़ पर रहेगी, जब तक कि उनमें से कोई एक दूसरे को निर्वस्त्र नहीं देख लेते। जिस दिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को बिना कपड़ों के देखा, उसी पल उर्वशी उससे संबंध तोड़कर वापस स्वर्ग चली जाएगी। तो क्या पुरुरवा ने शर्त मान ली? चंदा कहानी के भंवर में धंसती जा रही थी। नानी ने कहा, अरे वो क्या करता, वो तो उर्वशी के प्रेम में था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था शर्त मानने के सिवा। उसने शर्त मान ली। अब वे दोनों उजाले में सामने नहीं पड़ते, पर रात के अंधेरे में दोनों एक दूसरे में खोए रहते। दोनों सुख से रहने लगे। राजपाट का काम भी पुरुरवा वहीं से देखते थे। वे बरसों तक अपनी राजधानी ही नहीं लौटे। फिर क्या हुआ नानी? क्या किसी ने उनके राज्य पर हमला कर दिया? चंदा की बेचैनी अब चरम पर थी। नानी ने कहा, अरे नहीं रे, पुरुरवा जैसे प्रतापी राजा के राज्य पर हमला करने की हिम्मत भला कौन करता? दूसरी बात हुई। उर्वशी के चले आने से स्वर्ग में उदासी फैल गई थी। नृत्य और संगीत बिना अधूरे हो गए थे। वहां नृत्य में चपलता नहीं, संगीत में सुर नहीं, लय ताल आरोह अवरोह सब भूलने लगे। वहां और भी अप्सराएं थीं, लेकिन नृत्य और संगीत की आत्मा तो जैसे उर्वशी में ही बसती थी। इंद्र के साथ बाकी देवता भी चिंता में पड़ गए। गंधर्व तो बिना आत्मा के शरीर की तरह हो गए थे। तभी उन्हें कहीं से उर्वशी की शर्त के बारे में पता लगा। उन्होंने एक खेल रचा, छल किया पुरुरवा से। नानी ने एक ठंडी सांस भरी। एक पल को अंधेरे में कुछ सोचती रहीं, फिर कहानी में लौट आईं, जैसे वो भी अपने अतीत से लौट रही हों। नानी ने कहा, उर्वशी ने बहुत ही सुंदर सफेद फर वाले दो मेमने पाले थे। उर्वशी उनका बहुत ध्यान रखती, उन्हें हमेशा अपने साथ रखती थी। एक रात जब वो
पुरुरवा के अंक में आराम कर

रही थी, तभी गंधर्व ने छल से एक मेमना चुरा लिया। चोरी करते हुए उन्होंने जानबूझकर कुछ खटर पटर किया, जिससे उर्वशी की नींद उछट गई। उसने पुरुरवा को उठाया कि कोई उसका मेमना चुरा कर ले जा रहा है। वे नींद से नहीं जागे तो उर्वशी उन्हें भला बुरा कहने लगी। छल की योजना पूरी होते न देखकर उन्होंने दूसरा मेमना चुराने का साहस किया। फिर उर्वशी ने उन्हें उठाया। इस बार पुरुरवा अपने आप को रोक नहीं सके और बिस्तर से खड़े हो गए। तभी देवताओं ने बिना मौसम की आसमानी बिजली चमका दी। पल भर को उर्वशी ने पुरुरवा को और पुरुरवा ने उर्वशी को निर्वस्त्र देख लिया। शर्त टूट गई थी, उर्वशी को फिर स्वर्ग लौट जाना पड़ा। पुरुरवा अकेला रह गया, अनमना और उदास। वो बिछोह की आग में जल रहा था और उर्वशी भी जल रही थी बिछोह में।

पुरुरवा का राजकाज में मन नहीं लगता था। रह रहकर उर्वशी की याद सताती। कई महीनों बाद उर्वशी एक बार फिर पुरुरवा को किसी निर्जन झरने में स्नान करते हुए दिखी। देर तक दोनों एक दूसरे को विछोह की कहानियां सुनाते रहे। पुरुरवा के प्रेम में उर्वशी को पिघलना ही पड़ा। उसने कहा, वो स्वर्ग के नियम से बंधी है, लेकिन हर साल के आखिरी दिन उससे मिलने धरती पर जरूर आएगी, और वो आती रही हर साल इसी तरह एक रात के लिए। चंदा ने फिर हुंकारा भरा, अच्छा फिर क्या हुआ नानी? नानी ने आगे कहा, एक बार देव और दानों का जोरदार युद्ध हुआ, बहुत बड़ा। देवता जितनी भी कोशिश करते, दानों फिर उन्हें पीछा कर देते। ऐसे समय उन्हें धरती पर रहने वाले पुरुरवा की याद आई। पुरुरवा ने युद्ध में देवताओं की मदद की। इंद्र ने लौटते समय उर्वशी को भी उनके साथ भेजा। उर्वशी स्वर्ग से मुक्त होकर हमेशा के लिए धरती पर आ गई। फिर जिंदगी भर दोनों

हमेशा साथ साथ रहे। उनके कई पुत्र हुए, फिर प्रेम की जीत हुई, स्वर्ग और धरती का मिलन हुआ हमेशा के लिए गंधमादन की पहाड़ियों पर।

0: नानी की कहानी तो पूरी हो गई थी, पर चंदा के भीतर बवंडर घुमड़ रहा था। वो सोच रही थी कि दुनिया की खिलाफत, नफरत और छल के बाद भी प्रेम किसी भी समय खत्म नहीं हुआ। कोई तो बात है कि हजारों साल के बाद भी प्रेम बार बार बचा रह जाता है। उसे लगा कि प्रेम उस अमर पंछी की तरह है जिसके बारे में उसे आकाश ने बताया था, सुनहरी पूंछ वाला रंग बिरंगा फिनिक्स पक्षी। सैकड़ों साल जीता है फिनिक्स, और आखिर में वो टहनियों और लकड़ियों से अपने आसपास घोंसला बनाता है, खुद अपनी चिता बनाता है और उसी में जल जाता है। इसी राख से एक नया पक्षी जन्म लेता है। शायद प्रेम भी फिनिक्स की तरह अपनी ही राख से बार बार उगाता है, और इसी तरह उगता रहेगा प्रेम हमेशा हमेशा।
1: सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखक थे मनीष वैद्य, संपादक स्नेहल भिसे, वाचन स्वर ममता सिंह, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर।
1: अभी आप विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। पेश है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं CF वन विभाग सरगुजा।

0: ಸಾಕ್ಷಿ ಮನೆ ಗಜರಾಜ್
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये बंसीपुर, बगड़ा, कोरंधा, दुर्ती, सोनगरा, दरहोरा, चंदौरा, सरहरी, करंजवार, हरिहरपुर, परमेश्वरपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर, राज

0: भोजपुर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये पिंडारी, कोटराही, कोल्हुआ, भगवानपुर, नवापारा, अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, बदौली, रेवतपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 23 है। ये पड़ौली, जमीरा, मसगा, अस्कला, दोरना, जरहाडी, सायर, लक्ष्मणगढ़, ससकालो, ढेकी डोली, एरन, नवापारा, गढ़गांव, बरडांड, दांती ढाप के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये अम्बाचुआ, जामटोली, टुकुपानी, बोडालता, कूड़े केला, खड़ा माचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 106 है। ये कूड़े केला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, कोयलार, सागरपुर, ढोढ़ा गांव, केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 13 है। ये गीत कुमारी, लबेद, गुरमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, मड़ई, कठ मोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये चारमार, नागदरहा, पंडरी पानी, चिमटा पानी, बंगूरसिया, जुनवानी, भैंस गढ़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी और रवान में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये मोहदा, सहिया भाटा, बरबसपुर, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, ताल दादर, खुदमुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 9 और गरियाबंद वन मंडल के मैनपुर में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये ओर, ताराझर, डडई पानी, कोलापारा, बुडार, जिडार, छिंदौला, लूठापारा, चालकी पारा, फरसरा, दबनई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।
2: हमर हाथी हमर गोठ ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी प्रसारित किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5:05 हुए हैं। पेश है चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में लीजिए सुनिए अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा, एआर रहमान का संगीतबद्ध किया, ताल फिल्म का ये गीत।

चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। लीजिए पेश है अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा, विजू शाह का संगीतबद्ध किया मोहरा फिल्म का।

चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। लीजिए पेश है पूर्णिमा और कुमार शानू की आवाजों में समीर का लिखा, आनंद मिलिंद का संगीतबद्ध किया, गोपी किशन फिल्म का ये गीत।

चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। लीजिए पेश है उस्ताद राशिद खान के स्वर में इरशाद कामिल का लिखा संदेश शांडिल्य का संगीतबद्ध किया जब वी मैट फिल्म का ये गीत।

चित्रपट संगीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं चित्रपट संगीत का अगला नगमा फिल्म अजनबी से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, आनंद बख्शी ने गीत लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत है। पेश है अजनबी फिल्म का ये गीत।

आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में आनंद बख्शी का लिखा आरडी बर्मन का संगीतबद्ध किया अजनबी फिल्म का ये गीत, और इसी के साथ चित्रपट संगीत समाप्त हुआ। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवा जगत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं युवा जगत और मैं हूं आपका साथी अभिजीत सिंह। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं प्रकृति के बारे में। अब आप सोचेंगे प्रकृति के बारे में क्यों? क्योंकि बरसात का मौसम आ गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 3 दिनों से बिलासपुर में जोरदार बारिश हो रही है। इसीलिए थोड़ी सी जानकारी प्रकृति के बारे में भी ले लेते हैं, क्योंकि ये जो मौसम है इसमें अब हमें शुद्ध जलवायु, स्वच्छ जल, हरियाली, छाया और जीवन देने के लिए आवश्यक संसाधन देने वाली चीज लगाने का समय आ गया है, यानी कि पौधे। जब तक हम पौधे नहीं लगाएंगे, तब तक हम अपने पर्यावरण को या होने वाले प्रदूषण को या जलवायु परिवर्तन को कैसे रोकेंगे? इसीलिए जब शहरीकरण बढ़ते हैं, जंगलों की कटाई होती है, प्रदूषण या जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण का संतुलन लगातार बिगड़ता है, तब हम बरसात आने पर छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, जिसको हम फिर सहेज कर बड़ा करते हैं। क्योंकि जैसा कि आपने देखा, अभी लगातार 3-4 महीने से गर्मी ने हमको कितना परेशान कर रखा था। इसीलिए इस भीषण गर्मी से बचने के लिए हमें पौधे तो लगाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं कि जो वृक्षारोपण यानी कि पेड़ पौधे लगाना पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे सरल और प्रभावी उपाय बनकर सामने आता है। लेकिन केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त है क्या? तो नहीं, उनकी देखभाल और संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। और यही काम अधिक प्रभावी ढंग से तब हो सकता है जब लोग एक ग्रुप बनाकर, समूह बनाकर, सामूहिक प्रयास कर इस दिशा पर काम करें। श्रोताओं, पेड़ केवल हरियाली बढ़ाने के लिए नहीं होता, वे हमारे जीवन का आधार है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड

को अपने अंदर समा लेते हैं, तापमान को संतुलित रखते हैं और वर्षा चक्र को बनाए रखने में मदद करते हैं। आज जब तापमान लगातार बढ़ रहा है और शहरों में कंक्रीट का विस्तार हो रहा है, तब पेड़ों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक बड़ा पेड़ कई छोटे एयर कंडीशनर जितनी ठंडक दे सकता है या देने की क्षमता रखता है। इसलिए पेड़ लगाना केवल पर्यावरण का कार्य नहीं या फिर पर्यावरण बचाने का कार्य नहीं, बल्कि जीवन बचाने जैसा कार्य है। दोस्तों, आपको पर्यावरण के बारे में और आगे जानकारी देंगे, पर उससे पहले आज के हमारे कार्यक्रम में समय हो गया है कि हम आपको एक प्यारा सा गाना सुनाएं, जिसे गाया है सुनिधि चौहान ने, लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत से सजाया है संदेश शांडिल्य ने। ये गाना है फिल्म चमेली से।

दोस्तों, अब हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि जून के महीने में खेल जगत में क्या-क्या बड़ी खबरें हैं या क्या-क्या नया या बड़ा हुआ है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे एथलेटिक्स से। भारतीय लंबी कूद खिलाड़ी एनसी सोजान ने जून के अंत में शानदार प्रदर्शन करते हुए 22 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोस्तों, उन्होंने 6.88 मीटर्स की लंबी छलांग लगाकर एक नया इतिहास रचा। यह उपलब्धि भारतीय एथलेटिक्स के लिए बहुत बड़ी मानी जा रही है। दोस्तों, सर्वेश कुशरे ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। अब नया रिकॉर्ड बना किस में, तो ऊंची कूद में। जून का महीना उनके लिए बहुत बढ़िया रहा। लॉन्ग जंप की बात करें तो मुरली श्रीशेखर चोट से वापसी करते हुए 8.38 मीटर्स की छलांग लगाई और एशियन गेम से पहले उनकी ये परफॉर्मेंस भारत के लिए बहुत ही सकारात्मक संदेश लेकर आ रही है। दोस्तों, हॉकी से जुड़ी सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेंस अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल में भारत ने मेजबान जापान को 4-1 से हराकर ट्रॉफी जीत ली। दोस्तों, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि इस अंडर 18 टीम में हमारे बिलासपुर छत्तीसगढ़ के एक युवा खिलाड़ी भी थे जिनका नाम अवि मानिकपुरी है। दोस्तों, साथ ही भारतीय अंडर 18 महिला हॉकी टीम ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्होंने कोरिया को 3-0 से हराया। ये दिखाता है और ये हम सबको बहुत खुश भी करता है कि वापस से हॉकी अपने भविष्य को उज्जवल बना रही है और हम सबके दिलों पर वापस से छाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, अब बात करेंगे राष्ट्रीय पुरस्कारों की। तो देखा जाए तो इस महीने मतलब जून के महीने में हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों को एक राष्ट्रीय सम्मान मिला। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे रोहित शर्मा को खेलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। उन्होंने वर्षों तक भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। साथ ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, इनको भी पद्मश्री से नवाजा गया। साथ ही साथ भारतीय महिला हॉकी टीम का की अनुभवी गोलकीपर सविता पुनिया को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनकी मेहनत, समर्पण और भारतीय हॉकी में योगदान को दर्शाता है। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय खेल जगत में नीरज चोपड़ा का नाम लगातार चर्चा में रहा। उन्होंने हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स में बेस्ट मेल एथलेटिक के सम्मान से नवाजा गया। उनका प्रदर्शन युवाओं के लिए लगातार प्रेरणा बना हुआ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों, जून 2026 भारतीय खेल जगत के लिए काफी खास रहा। इसी के साथ चलते हैं एक और गाने की ओर, जिसे गाया है के ने, लिखा है मयूर पुरी ने और संगीत से सजाया है प्रीतम चक्रवर्ती ने। यह गाना है फिल्म जन्नत 2 से।

तो साथियों आपको सुनाते हैं एक और प्यारा सा गीत जिसे गाया है अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने, लिखा है मयूर पुरी ने और संगीत से सजाया है प्रीतम ने। ये गाना है फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा यह गीत, जिसे गाया है अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने, और संगीत से सजाया है इरशाद कामिल ने। तो साथियों, हम और आप कहाँ थे? हम और आप बात कर रहे थे वृक्षारोपण की, पर्यावरण की, प्रकृति की और पौधे लगाने की। तो दोस्तों, अब मैंने तो कह दिया कि सामूहिक प्रयास हमेशा अधिक प्रभावशाली होता है, तो सामूहिक तौर पर ही क्यों? तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है दोस्तों। मैं अभी कुछ दिनों पहले शहर से होते हुए आ रहा था, तब मैंने एक स्कूल को क्रॉस किया और देखा कि स्कूल में छोटे छोटे बच्चे कुछ ग्रुप बनाकर, उनके टीचर्स उनको ग्रुप बनाकर पौधे लगाना सिखा रहे थे कि कैसे पौधों के लिए गड्ढा खोदा जाता है और कैसे वो अनेक पौधे लगाकर स्कूल को हरा भरा बनाया जा सकता है। तब मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जब सामूहिक तौर पर ग्रुप बनाकर काम कर रहे थे, उस पौधे को लगाने के लिए एक बच्चा अपने हाथ से उस मिट्टी को हटा रहा था जिसे खोदा गया था, एक बच्चा उस पौधे की प्लास्टिक की पन्नी को हटा रहा था, एक बच्चा पानी डालने के लिए पानी लेके आ रहा था, और ऐसे ही करके सब अपना अपना अपना काम बांट लिए थे। तब मैंने सोचा कि भाई, अगर एक व्यक्ति पौधा लगाएगा तो देखभाल करना कितना कठिन हो जाएगा, लेकिन यदि हम अपने

मोहल्ले में, कॉलोनी में, स्कूल में, कॉलेज में, या खुद फ्रेंड सर्कल में, या फिर कई महिलाओं का अपना एक ग्रुप होता है, समूह होता है उसमें, या सामाजिक संगठन जो होते हैं हमारे अपने अपने क्षेत्र के, वो अगर मिलकर काम करें तो कैसा रहेगा? तो अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं, बल्कि उनकी नियमित देखभाल भी बहुत अच्छे से की जा सकती है। अब अगर नियमित देखभाल की जा सकती है तो कैसे की जा सकती है? तो देखिए, अगर हम अकेले पौधे लगाएं तो हमें ही सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है, पर अगर सामूहिक तौर पर वो जिम्मेदारियां बांट ली जाएं तो पौधे लगाने का कार्य कोई और करेगा, पानी देने का कार्य कोई और करेगा, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई और उठाएगा, साथ ही साथ जागरूकता फैलाने की भी जिम्मेदारी कोई लेगा। इससे अभियान अधिक व्यवस्थित और सफल बनने लगता है। पौधारोपण अगर हम करना चाहें तो समूह बनाने की शुरुआत, जैसा कि मैंने कहा, आसपास से की जा सकती है, मोहल्ले से की जा सकती है, या अपने मित्रों को बोला जा सकता है, या अपने परिवारजनों को बोला जा सकता है। तो ऐसे में आपको देखकर आपके पड़ोसी भी जुड़ सकते हैं, या आप जहाँ पर कार्य करते हैं उस कार्यस्थल के आसपास के लोग भी जुड़ सकते हैं। ऐसा करके आप स्कूल और कॉलेजेस में जाकर इको क्लब्स के जो मेंबर होंगे उनको चुन सकते हैं, उनसे आप मदद ले सकते हैं। ऐसी ही करते करते हम सामाजिक संस्थाएं, समाज सेवी संगठनों, या फिर किसी भी तरह से जो सामाजिक तौर पर एक्टिव हों, उनसे हम सहयोग ले सकते हैं, या हम उनको सहयोग कर सकते हैं। तो समूह का उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए हमें कि पौधे जीवित रहें और बड़े होकर वृक्ष दें। इसीलिए तो हम पौधे लगा रहे हैं कि वो बड़े हों, विकसित हों, फलदार बने, छायादार बने, और हमें बहुत ज्यादा जो एसी है, कूलर है, पंखा है, उस पर डिपेंडेंसी कम हो जाए। तो श्रोताओं, कोई भी अभियान तभी सफल होता है जब उसमें भागीदारी हो। अगर हर नागरिक यह सोच ले कि वह अपने जीवन काल में कुछ पौधे या पेड़ अवश्य लगाए, जैसे कि अब हम हर समय तो नहीं लगा सकते, तो जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उसका स्कूल रिजल्ट आया, अगर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आया, या उसकी अचीवमेंट अच्छी आई, या कोई बच्चा खेल में ज्यादा अच्छा है, या संगीत में, कहीं भी उसने कुछ अचीव किया, तो उसके पेरेंट्स उसके नाम पर पौधे लगा सकते हैं, या उस बच्चे का जन्मदिन है तो उसके पेरेंट्स उसके नाम पर कुछ पौधे लगा सकते हैं। जैसे कि 8 साल का अगर आपका बच्चा हुआ तो 8 पौधे लगा दीजिए। सुनने में ये आंकड़ा बड़ा छोटा लगता है 8, लेकिन सोचिए अगर एक मोहल्ले में इतने बच्चे हों, कोई 4, कोई 8, कोई 10 का हो, तो ऐसे करके एक साल में कितने पौधे लग जाएंगे। इसीलिए हमें अपनी खुशियों में पौधे लगा लेने चाहिए। जैसे कोई दाम्पत्य है, उनकी एनिवर्सरी है, या उनके जीवन में कोई बड़ी खुशी का पल आया है, उनका इंक्रीमेंट हुआ है, उस समय भी हम पौधे लगा सकते हैं। हम अपनी खुशी प्रकृति के साथ बांट सकते हैं, और बड़ी सरलता से ये बच जाएगा। आपके घर में जगह है, गमले हैं, कोई खाली जमीन है, वहां लगा दीजिए। बस देखभाल करना है, और बरसात के समय लगाने पर देखभाल करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी तो नहीं डालना, बस हमें उसे संरक्षित करना है। और ये संरक्षित करने के लिए हम अपने जीवन काल का कुछ समय, रोज हम 10 मिनट, 5 मिनट दें, तो बहुत अच्छे से हम एक पौधे की देखभाल कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति के प्रयास प्रेरणा हो सकती है, हर एक समूह का प्रयास आंदोलन बन सकता है, और आज आवश्यकता केवल इन्हीं चीजों की है कि हम कैसे भी प्रेरणा और आंदोलन के तरह इस वृक्षारोपण को एक वृक्ष संरक्षण की तरह उपयोग करें। हम जैसे अभी वृक्षारोपण की बात कर रहे हैं, वैसे वृक्ष संरक्षण भी बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि हम रोप रहे हैं, उसके बाद जब वो जो छोटा सा पौधा है वो 4 साल 5 साल बाद देखा जाए तो वो एक काफी विकसित तौर पर दिखता है। तो हमें उसके आसपास फेंसिंग करनी चाहिए ताकि कोई पशु पक्षी उसको खराब ना कर सके। जनरली पशु ऐसे होते हैं कि कभी आपके पौधों के ऊपर चढ़ गए किसी हड़बड़ाहट में, या किसी चीज में, या कभी कभी ऐसा होता है कि पौधे कमजोर हो जाते हैं। तो अगर हम उनके आसपास थोड़ा सा देखें या चीजों को समझें तो फिर हम कर सकते हैं प्रयास। इसी साथ आपको एक और गीत सुनाने का समय हो गया है। फिल्म का जो स्वर है वो दिया है मोहम्मद रफी ने, गीत है हसरत जयपुरी की, और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने। सुनिए गबन फिल्म का ये गीत।

तो साथियों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, पर जाते जाते सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आज का लगाया एक पौधा आने वाले कल की जीवनदायिनी सांस बन सकती है। इसी के साथ इजाजत दीजिए अपने दोस्त अभिजीत सिंह को, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय जोहार।

युवा जगत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में पहले हम जानकारी दे रहे हैं आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। ईमेल पर आधारित कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने प्रसारित होगा 6:20 पर और फिर 7 बजे से। ग्राम सभा कार्यक्रम सुनिएगा 7:20 पर। इसमें बेरा के गोट का विषय होगा बदलत पर्यावरण और हमर जीवन संग खेती में प्रभाव। फोन इन कार्यक्रम में दलहनी तिलहनी फसलों में जल प्रबंधन विषय पर डॉक्टर दिनेश पांडे वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि महाविद्यालय बिलासपुर द्वारा दी गई जानकारी प्रसारित की जाएगी। भेंट करता होंगे राजू भैया। साथ ही सुनिएगा मंडी और मौसम पर जानकारी। सुगम संगीत प्रसारित होगा रात्रि 8 बजे से। कलाकार होंगे अनुराग शर्मा। रजनीगंधा कार्यक्रम प्रसारित होगा रात्रि 8:15 पर और विविध भारती के कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 9:15 से। आइए अब आपको जानकारी दे दें कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। कल प्रातः 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम खेती की बात सुनिएगा 6:30 पर। इसमें कल जानकारी सुनिएगा गोबर और गौमूत्र का जैविक खेती में उपयोग, इस विषय पर वाचन स्वर चित्रलेखा तिवारी का होगा। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह सुनिएगा 7:05 पर। समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। समय होगा 8:30।

कार्यक्रम बातों बातों में सुनिएगा सुबह 9 बजे से, इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। छत्तीसगढ़ी गीतों का कार्यक्रम अमराई प्रसारित होगा सुबह 10 बजे से। कलाकार होंगे उमेश साहू, सरस्वती साहू, तीरथराम गढ़ेवाल और साथ ही नए तराने कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा सुबह 10:30 पर। विविध भारती के कार्यक्रम सुनिएगा 9:15 पर, 11 बजे और फिर 12 बजे से संध्या 5 बजे तक। संध्या 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट प्रसारित होगा। ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम प्रसारित होगा शाम 5:35 पर, 6:20 पर और फिर 7 बजे से। ग्राम सभा कार्यक्रम सुनिएगा 7:20 पर।

संध्या 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट प्रसारित किया जाएगा। ईमेल कर गीत सुने कार्यक्रम सुनेगा शाम 5:35 पर, 6:20 पर और फिर 7 बजे से। ग्राम सभा कार्यक्रम होगा 7:20 पर और किसानवाणी कार्यक्रम सुनेगा 7:30 से। इसमें आप सुन सकेंगे भेंट वार्ता, विषय होगा बदलते मौसम में किसानों का सुरक्षा कवच कृषि वानिकी। वार्ताकार होंगे अजीत विलियम्स, वैज्ञानिक कृषि महाविद्यालय बिलासपुर, और भेंट करता होंगे महंगू भैया। रात्रि 8 बजे सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा, कलाकार होंगी पिनाज मसानी। रजनीगंधा कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 8:15 पर और विविध भारती के कार्यक्रम प्रसारित होंगे रात्रि 9:15 से। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। रायपुर में आज ले दो दिन के राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन शुरू होइस। सहकारिता विभाग डहार ले आज राजधानी के तेलीबांधा मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ के आयोजन करेगीस। राज्य सरकार है खंड और अल्प वर्षा के संभावना ला देखत किसान मन ले धान के रोपा पद्धति के बजाय सीधा बोआई यानी DSR तकनीक अपनाए के अपील करीन है। और नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में काली 4 जुलाई ले चिंतन शिविर के आयोजन करे जाही। अब समाचार विस्तार ले। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में सहकारिता मंत्रालय के 5 बच्छर पूरा होए के मौका में आज ले 2 दिन के राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन शुरू होइस। शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुईन। ए मौका में ओमन कहिन के सहकारिता किसान के आमदनी ला बढ़ाए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ला मजबूत करे के सबले प्रभावी माध्यम बनत है। ओमन कहिन के सहकारिता के जरिया विकसित छत्तीसगढ़ के मजबूत नींव तैयार होही। मुख्यमंत्री है बताइन कि प्रदेश में अब तक 1300 ले ज्यादा नवा सहकारी समिति मन के गठन करे जा चुके हैं। सहकारिता के माध्यम ले पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, वनोपज, मत्स्य पालन और ग्रामीण उद्यमिता ला घलो बढ़ावा दे जाते। मुख्यमंत्री है ए मौका में उत्कृष्ट समिति मन ला सहकार प्रेरणा पुरस्कार दिन। संग्रहण पछर 2023 के 7 लाख ले ज्यादा तेंदुपत्ता संग्राहक मन पर 100 करोड़ रुपया ले ज्यादा के पारिश्रमिक राशि के वितरण के शुभारंभ करें। एकर अलावा मुख्यमंत्री है कार्यक्रम में सहकारिता विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के शुभारंभ घलो करें। सहकारिता विभाग डहार ले आज राजधानी रायपुर के तेलीबांधा मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ के आयोजन करेगीस। कार्यक्रम के शुभारंभ सहकारिता मंत्री केदार कश्यप हरा झंडी दिखा के करें। ए दौड़ में युवा, विद्यार्थी, किसान, सहकारी संस्था के सदस्य, महिला समूह और आने आने वर्ग के लोगन मन हिस्सा लें। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज बिहनिया जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल रद्दा मन ले शुरू हो गए है। पूरा देश ले लाखों श्रद्धालु 57 दिन के तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करें। उपराष्ट्रपति

0: शासन ह नागरिक मन ले अपील करीन है कि बरसा और गरज चमक के दौरान खुला जगह और पेड़ के नीचे खड़ा होए ले बांचे और संग्रह सुरक्षित जगह मन में शरण लेके अपील करीन है। रायपुर के वरिष्ठ पत्रकार सुखनंदन बंजारे के आज निधन हो गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सांसद संतोष पांडे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सुखनंदन बंजारे के निधन ऊपर गहरा दुख जताइन है। ओमन सुखनंदन बंजारे के निधन ले पत्रकारिता जगत पर अपूर्णीय क्षति बताइन। दुर्ग पुलिस बीमा पॉलिसी रिफंड के नाम में करीबन 1,60,00,000 रुपया के साइबर ठगी करैया अंतर्राज्यीय गिरोह के पर्दाफाश करे है। ये मामला में पुलिस दिल्ली ले 3 आरोपी मल्ल गिरफ्तार करे है। पुलिस के अनुसार आरोपी खुदला बीमा अधिकारी बता के बंद पड़े बीमा पॉलिसी के राशि लहुटाए के झांसा देत रहीन और अन्य अन्य बैंक खाता में रकम जमा करा के ठगी करत रहीन। आरोपी मन के कब्जा ले मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, चेकबुक और सिम कार्ड बरामद करे गए है। और अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग अवैया 24 घंटा के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो जगह में गरज चमक के संग भारी ले अति भारी वर्षा होए के संभावना जताए है। उन्हें एक दो जगह में गाज गिरे के चेतावनी दे गए है। प्रदेश के अधिकांश जगह मन में काली हल्का ले मध्यम वर्षा हो सकत है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घंव फेर। रायपुर में आज ले 2 के राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन शुरू हुई। सहकारिता विभाग दहा ले आज राजधानी के तेलीबांधा मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ के आयोजन करेगी। राज्य सरकार है खंड और अल्प वर्षा के संभावना ला देखत किसान मन ले धान के रोपा पद्धति के बचाए सीधा बुआई यानी DSR तकनीक अपनाए के अपील करी है। और नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में काली 4 जुलाई ले चिंतन शिविर के आयोजन करे जाही। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। पेश है फरमाइशी फिल्मी नगमों का ईमेल पर आधारित कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमें गीत सुनने के लिए ईमेल किया है फ्रांसी हिसार से राजकुमार प्रमोद कुमार पुष्पेंद्र सिंह डूडी, रायगढ़ से नरेंद्र कुमार महेंद्र जोई यामिनी और उमा तिवारी, हांसी से राजू मिगलानी बब्बू डब्बू बबीता मिगलानी सुभाष योगी, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति ओजस्वी यादव, राजेंद्र नारंग अंजू मोहित तानिया नारंग आप सभी मंडी डबवाली से, धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद देव नवीन युवराज साहू, मोहम्मद सईद अब्बासी निघत परवीन शाहनवाज सरफराज फरदीन सुहान अरजान अब्बासी अबान अब्बासी बुलंदशहर से, खमरिया से साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति सावित्री देवी प्रतीक कुमार, मुरादाबाद दुल्लापुर से मुकेश सोनू सुरेश पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह, पानीपत से नरेश लक्ष्य कोयल और नानक चंद मल्होत्रा, निजामाबाद तेलंगाना से शेख अल्लाह बख्श राबिया शेख रहीम मुन्ना, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया एंजल सोनू पप्पी भाटिया, राजकोट से राजेश कृष्णा स्वाति और ख्याति कुमारी सुहाना सब आप हैं। वडशिंकी महाराष्ट्र से अमोल शोभाताई दीपाली श्लोक कुमार मानकर, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह अनुपम और राकेश कुमार, उत्तम कुमार बघेल रुक्मणी साहिल और भारती बघेल लगान पंडरिया से, राजस्थान से धर्मेंद्र कपिल छीपा और पूजा परिहार, नारायण खर्चे ललिता गणेश कार्तिक परी खर्चे और स्वाति प्रयाग चौधरी कुमारी देवी चौधरी और मालती चौधरी आप सभी इंदौर से, भाटापारा से बचकामल मोतीलाल यादव सियाराम चोवाराम वर्मा सूरज बोरकर नारायण यदु भुवन कामरी, मुरलीधर साहू लक्ष्मी देवी योगेश संध्या कीर्ति डिकेश वासु डाली पूर्वेश साहू

सभी ग्राम रसेड़ा से, नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवानकर, निर्मला और विशाल, सुभाष गोदारा, विमला इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, हीरावली फजिलका पंजाब से, नीलू मेघ वंदना कुमार, बिट्टू कुमार रायपुर से, यावतमाल से जयराम शिंगणकर, दीक्षांत और अर्पिता राजकोट से, जूली जगदीश, प्राची और प्रवीण पुजारी, जमानिया गाजीपुर से सुरेश, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल, सहारनपुर से सैयद मशरूर शाइना, हसन नाजिया इब्राहिम,

आप सभी श्रोता साथियों ने लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा आर्ट और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत बद्ध किया रोटी फिल्म का ये गीत।

0: प्रथम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: ईमेल करें गीत सुने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के लिए हमें ईमेल प्राप्त हुआ है भिलई नगर से अशोक प्रमिला आशमा श्याम कुमार का, लूत्रा खमरिया से नकुल श्याम मोहम्मद अकरम मोहम्मद अजीज, लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह दलजीत सिंह राजदीप गुरनूर सिंह गुरलाल सिंह अविराज सिंह, कवर्धा लोहारेडी से अशोक कुमार दिलेश्वरी ललिमा खुशांत साहू निशांत साहू, झारखंड गिरिडीह से मोहम्मद यासीन अनजाना साइमा नवाज हसन नवाज अहद मिफ्रा नवाज चाहत, पलारी से नितेश कुमार दुर्गा प्रसाद पराग पूना राम कृष्णा देवांगन, लूत्रा खमरिया से अकरम अमीन अर्श अतिका देवशंकर तामुरिया अजय देव अलकबीर आप सभी डोंडी लोहारा बालोद से, सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद हबीब मोहम्मद इरफान मोहम्मद, बागबहरा भद्रसी से पन्नालाल सेन खुशबू तारा कौशल सेन, दिल्ली से आसमा परवीन आमना वली भाई अंसारी, सावंतपुर से ऋषि रितेश कंचन और माही सेन, बरकाकाना से अफजाल ताज शाहिन सुल्ताना सोनू तस्नीम निप्पी साहनी मोहम्मद अफजल मलिक, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी नंदा हनुमान बोर्ड के, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी सोनाली सोनम आशीष विश्वकर्मा विश्वनाथ साहू पंकज तिरुपति साहू आप लक्षणपुर से, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद गुलाम साबिर राही मेहराज जहां, नवशहर पंजाब से गगनदीप थांदी तृप्ता प्रियंका प्रशांत प्रियम वामिका और वानी थांदी, मुंबई से अदीबा नाज फातिमा नसरीन आलिया और सबा अंसारी, मस्तानपुरा पूर्णा जंक्शन से अनंता अरुणा सुलोचना और चेतन भगत, बागपत से संजय अपार नमन ढींगिया, पलारी से प्रकाश वर्मा निखिल यशस्वी अन्नपूर्णा वर्मा, पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे वीणा विनय शंकर पांडे, मिश्री लाल विश्वकर्मा मीरा देवी विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा आप तखतपुर से, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख नाजिया नासिर साजिद शाहिद, राजस्थान शादुल शहर से राम कुमार चंद्रकला रेवाड़, मलोट पंजाब से राज मीना योगेश नवीन सौरव सानिया और मैंडी शर्मा, दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान मोहम्मद सलमान इरफान मोहम्मद इसरार नरगिस खातून, झारखंड से नजमूल एस एम जावेद और शगुफ्ता अंजुम, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास आशा देवी राघव भानुप्रिया माधुरी किरण, झज्जर हरियाणा से बिट्टू रीटा रजत मंजू भाटिया और मयंक भाटिया, कुरासिया कालरी चिरमिरी से इंद्रभान अनुभव ऋषभ राम सहोदर सिंह नारायण प्रसाद लहरे दिनेश प्रसाद कालिंद्री लहरे, जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह जतिंदर कौर गुरप्रीत लवप्रीत और करमजीत कौर, वैशाली शैलेश गवा

गवांडकर, टुकटुक गवांडकर, प्रिंस एकांश, सुमित और ध्वनि, आप सभी बहादुरा नागपुर से, पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु, जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से, प्रकाश नर्मदा और सुजाता पोहरकर तेल्हारा से, मुंगवाल कांकेर से भरत राम, जयंती हेमंत, उमंग और मोक्ष पडोटी,

कल कांकेर से भरत राम जयंती हेमंत उमंग और मोक्ष पडोटी, जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव प्रशांत संचित प्रथमेश देशमुख प्रणाली सर्वद और सानवी देशमुख, अजीम वकार माहिरा अजीम और नगमा अजीम आप दिल्ली से, जागेश्वर देवांगन कचरीबाई दीपक जयश्री ऋषभ और ऋचा देवांगन गंडई टिकरी से, कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम उषा और ऋषभ सिंह, अकोला से रमेश कटनकर वैशाली धनंजय कटनकर, दिल्ली से सोनम सना और अदीबा, दुर्ग से आरसी कामड़े करुणा मीना अश्विनी और विपुल कामड़े, जालंधर से रोशन जहां मन्नत जहां इशरत जहां और मक्कार जहां। आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में जावेद अख्तर का लिखा आर डी बर्मन का संगीत बद्ध किया 1942 से लव स्टोरी फिल्म का गीत।

0: महेंद्र दुष्यंत राघवेंद्र साहू, यावतमाल से लक्ष्मण राव कल्पनाताई शैलेश प्रतीक्षा स्वप्नील रक्षता लोखंडे, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोमान वसंतराव निवृत्ति आडोकर, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन पल्लवी प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विन शाह, साथ में है मंगलाबेन और राजेंद्र शाह, धरदेई सरगांव से चंदुलाल पटवा सुनीता हर्ष विनीत और क्रिस्टी पटवा, पंजाब वडिंग खेड़ा से मिंटू पिंकी लवली आरती अरोड़ा, अड़ार नांदघाट से माखन चांदनी भूपेश और दीपेश वर्मा, उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत सरिता प्रिंस एकांश गवहणकर, पैठण से सुरेश अनीता आरती पूजा प्रसाद सोनल और सिया जाधव, नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश उषा अमित कुमार और हैप्पी राय, हीरामणि वर्मा पारसमणि पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा आप दतरेंगी भाटापारा से, सनावत से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद मोहम्मद शाकिर अलकमा खत्री मोहम्मद अल्तमिश खत्री रमेश और शदाब खत्री, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता दीपा और रिमझिम गुप्ता, जालौन से सत्येंद्र कुमार आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौलिया, राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद दिव्या सुमन कोमल परी कृतिका रमेश चंद्र डांगी, यावतमाल से पंजाब यशोधरा और श्राव्या रामटेके, परमेश्वर साहू राजबत्ती काजल पूर्वी हेजल राजेश रेशमा साहू बठेना पाटन से, करजत मुंबई से अब्दुल कलाम और अब्दुल सलाम राइन, जीवन लाल रजक निम्मी शिवम सतीश मुकेश कुमार साहू और रामजी साहू आप लच्छनपुर से, नांगर कोहरा राजनांदगांव से बबलू जामुन देवी प्रेम पूजा दुष्यंत प्रांजल समीक्षा और आराध्या साहू, धर्मेंद्र छिपा कपिल पूजा परिहार भोपालगढ़ राजस्थान से, रिंगनी से दिनेश और करुणा वर्मा, अशोक दले सविता दले अनिकेत रोहिणी ऋषिकेश और जीविका दले आप सभी श्रीरामपुर से। आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है मोहम्मद रफी के स्वर में आनंद बख्शी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया देश प्रेमी फिल्म का ये गीत।
1: शिमारू फिल्मी गाने के सारे

ईमेल करें गीत सुने। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत पसंद किया है आप सभी श्रोता साथियों ने। आप हैं महाराष्ट्र से रूपेश, महेश, प्रज्ञेश और पित्रेश संघई, यवतमाल से राहुल, मनवर, सलरा, विशाल, चेतन, रोशनी और प्रियांशी, भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेन्द्र।

देश प्रेमी फिल्म के इस गीत के साथ ही ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का ये अंक यहीं समाप्त होता है। इसका शेष भाग आप सुनेंगे शाम 7 बजे से। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाल केंद्र है। 6:45 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
5: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
6: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
7: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
6: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ

0: जाकर मक्खी मारता हूँ। 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। रायपुर में आज से शुरू हुआ सहकारी सम्मेलन। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे प्रभावी माध्यम बन रही है। राज्य सरकार ने खंड और अल्पवर्षा की आशंका को देखते हुए किसानों से धान की रोपा पद्धति के बजाय सीधी बुआई करने की अपील की है। IIM रायपुर में कल से होने वाले चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज से राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन शुरू हुआ। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सहकारिता किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे प्रभावी माध्यम बन रही है।
6: सहकारी सप्ताह चल रहा है और उसी तारतम्य में आज यहाँ पर कृषि मंडपम में ये 2 दिन का प्रदेश स्तर का सम्मेलन आयोजित है, जिसमें प्रदेश भर से सहकारिता से जुड़े हुए विभिन्न समिति के लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं। और इसमें हमारे विभिन्न तरह के जो समिति हैं, दूध उत्पादक हैं, मत्स्य उत्पादक हैं, उनके जो विशेषज्ञ हैं वो भी आए हुए हैं। उनका अलग से सत्र चलेगा, तो निश्चित रूप से और भी विभिन्न क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं सबको और जानकारी मिलेगी।
5: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उत्कृष्ट समितियों को सहकार प्रेरणा पुरस्कार प्रदान किए। साथ ही संग्रहण वर्ष 2023 के 7 लाख से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की पारिश्रमिक राशि के वितरण का शुभारंभ किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सहकारिता विभाग के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम को सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने भी संबोधित किया। इस बीच सहकारिता विभाग द्वारा आज सुबह राजधानी रायपुर के तेलीबांधा मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ मंत्री केदार कश्यप ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौड़ में युवा, विद्यार्थी, किसान, सहकारी संस्थाओं के सदस्य, महिला समूह और विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लिया। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। राज्य सरकार ने खंड और अल्प वर्षा की आशंका को देखते हुए किसानों से धान की रोपा पद्धति के बजाय सीधी बुआई यानी DSR तकनीक अपनाने की अपील की है। सरकार के अनुसार DSR तकनीक से लगभग 20% पानी की बचत होती है, प्रति एकड़ करीब 5,000 रुपए तक लागत कम आती है और फसल 12 से 15 दिन पहले तैयार हो जाती है। सरकार ने धान के स्थान पर अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, तिल, रामतिल और सोयाबीन जैसी दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती अपनाने पर जोर दिया है। किसानों से बीज उपचार, संतुलित उर्वरक उपयोग, वर्षा जल संग्रहण तथा ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को अपनाने के लिए भी कहा गया है। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार मानसून की स्थिति के मद्देनजर किसानों को खेती संबंधी सलाह पर

0: कृषि मौसम विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर गोपी कृष्ण दास से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 4 जुलाई को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय PIB द्वारा आज रायपुर में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी पर मीडिया वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने इस योजना को रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: जो मनरेगा चल रहा था उसको रिफॉर्म करके हमारे VBG राम जी स्कीम, इसको लाया गया है और बहुत सारी तकनीकी खामियां जो उस योजना में थी उनको पूरी तरह से परिष्कृत करके यह नए भारत 2047 में हमारा भारत विकसित भारत होगा, तो उस दिशा में काम करने के लिए इस जो गारंटी है उसके साथ में हमारे VBG राम जी स्कीम को लाया गया है।
0: इस अवसर पर विषय विशेषज्ञ नितेश उपाध्याय और डॉक्टर अनंत रघुवंशी ने इस योजना के विभिन्न पहलुओं और इसकी विशेषताओं के बारे में मीडिया कर्मियों को विस्तार से जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में कल 4 जुलाई से चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। 2 दिवसीय इस शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे। इस शिविर का उद्देश्य बदलते तकनीकी परिवेश के अनुरूप शासन को और प्रभावी बनाना है। शिविर में सरकार की अब तक की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की प्राथमिकताओं की समीक्षा की जाएगी। राज्यपाल रमन डेका से आज लोकभवन में डॉक्टर मणिभद्र महाराज के नेतृत्व में संचालित सर्वोदय शांति पदयात्रा से जुड़े संतों ने सौजन्य मुलाकात की। गौरतलब है कि ये पदयात्रा नेपाल से प्रारंभ होकर लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए छत्तीसगढ़ पहुंची है। यात्रा का उद्देश्य शांति, सद्भाव, अहिंसा और मानवीय मूल्यों का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस अवसर पर आयोजित अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बस्तर संभाग में विभाग की योजनाओं का प्रचार प्रसार गोंडी और हल्बी भाषा में करने के निर्देश दिए हैं, जिससे दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों के पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं की जानकारी आसानी से पहुंच सके। मंत्रालय में आज हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई है। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के पतरापारा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से मां बेटी की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये दोनों खेत में काम कर रही थीं। इसी दौरान तेज बारिश शुरू होने पर दोनों एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई, तभी आकाशीय बिजली गिरने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सक्ती जिले के डभरा थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव में भी आज आकाशीय बिजली गिरने से एक दंपत्ति की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये पति पत्नी खदान में मजदूरी करने गए थे, इसी दौरान तेज बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस और प्रशासन ने नागरिकों से बारिश और गरज चमक के दौरान खुले स्थानों तथा पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की है। दुर्ग पुलिस ने बीमा पॉलिसी रिफंड के नाम पर करीब 1,60,00,000 रुपए की साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने दिल्ली से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी खुद को बीमा अधिकारी बताकर बंद पड़ी बीमा पॉलिसियों की राशि वापस दिलाने का झांसा देते थे और विभिन्न बैंक खातों में रकम जमा कराकर ठगी को अंजाम देते थे। आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, चेकबुक और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को अपने श्रमिक कार्ड में दर्ज जानकारी का समय समय पर सत्यापन कर आवश्यक सुधार कराने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि श्रमिक कार्ड में संशोधन कार्य के लिए मात्र 20 रुपए का निर्धारित सेवा शुल्क लिया जाएगा। इसके लिए श्रमिकों को आधार कार्ड की मूल प्रति तथा सहमति पत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। श्रम विभाग ने पंजीकृत श्रमिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने श्रमिक कार्ड की जानकारी अपडेट कराएं। रायपुर के वरिष्ठ पत्रकार सुखनंदन बंजारे का आज निधन हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सांसद संतोष पांडे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने सुखनंदन बंजारे के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने

0: सुखनंदन बंजारे के निधन को पत्रकारिता जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर कल हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक 8 जुलाई को सुबह 11:30 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में होगी। और कबीरधाम जिले के भोरमदेव में पर्यटकों के लिए भोरमदेव इको ट्रेल की शुरुआत कल 4 जुलाई से होगी। वन मंडलाधिकारी निखिल अग्रवाल ने बताया कि इको ट्रेल के दौरान पर्यटकों को अनुभवी नेचर गाइड के साथ भोरमदेव के वनों का भ्रमण कराया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रायपुर में आज से शुरू हुआ सहकारी सम्मेलन। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे प्रभावी माध्यम बन रही है। राज्य सरकार ने खंड और अल्पवर्षा की आशंका को देखते हुए किसानों से धान की रोपा पद्धति के बजाय सीधी बुवाई करने की अपील की है। IIM रायपुर में कल से होने वाले चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं। पेश है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का शेष भाग। कार्यक्रम के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में गीत सुनने के लिए हमें ईमेल भेजा है जूना बिलासपुर कतियापारा से सुशील, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रेयांश, कान्हा और आदित्य देवांगन ने। बुड़गहन से राम दुलारी, रामशरण, चंद्रेश, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति। अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, रंजीत, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह, राहुल। पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन, आप सभी गंडई पंडरिया से। सुरेश, आशु और सोनाली नारंग सहारनपुर से। चनहेटी बरेली कैंट उत्तर प्रदेश से। विनेश कुमार, रागिनी और मुस्कान सरगांव से। राजेश हीरोमन, पल्लवी और राजेश्वरी वर्मा। जीवधन सिंह पैकरा, घुड़नी करिश्मा, सोमार साय, कलेश्वर सुखराम, हीरामणि, ऐश्वर्य पैकरा, आप सभी उदयपुर सरगुजा से। भिलई चरोदा से नौशाद अहमद, हमीनुद्दीन, जिशान, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी। बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता श्रीवास, रजन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी, आप सभी बिलासपुर से। भाटापारा से दान सिंह, पद्मिनी, नीरज, शुभम और सौरभ रावत। ग्वालियर से सुरेश, किरण, लव्या, आरव और एस के पप्पी। मोताला महाराष्ट्र से विजय, रतनमाला और ओम कुमार सुरलकर। करजत मुंबई से अहमद भाई, दुखनी सदफ, आरजू, जूही इकबाल, इमरान अहमद, आमना नसरीन बागवान, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूलवाले, प्रमिला हेमा और अंतरा सिंह, आप सभी दिल्ली से। वलीउल्लाह अंसारी, सोनम वली और आसमा वली डुमराव से। आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है राजेंद्र कृष्ण का लिखा रवि का संगीतबद्ध किया, महेंद्र कपूर के स्वर में अनमोल मोती फिल्म का ये गीत।
2: हुस्न बेखबर तुझे तक

कार्यक्रम का अगला ईमेल हमें मिला है नरगोड़ा से कीर्तनपुरी लक्ष्मी देवी जोगेश ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी का, छत्रपति शंभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल राजदीप राशि शीतल राजेश मोहाली चंडीगढ़ से टी महलोत्रा डी ऋतिक प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह और अमनदीप वीरमगांव राजकोट से रुचि गुप्ता ट्विंकल और उमा गुप्ता खीकराम देवांगन रेनू रजनी प्रियंका देवांगन आप सभी बिलाईगढ़ से राष्ट्रपाल राधिका अनिष्का और तन्मय गजबिये डोंगरगांव से कमल बालूजा मधु और सागर बालूजा आप सभी मजनू का टिल्ला से सौगा मगरलोट से फनेश कुमार चंदन सावित्री मोहित देविका रानी गजेंद्र कुमार हेयांश कुमार चंदन पौड़ी भाटा अकलतरा से दिलीप चोवा राम यदु निखिल वसुंधरा और प्रांजल चंदन। आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में समीर का लिखा हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया तेरे नाम फिल्म का ये गीत।

ईमेल करें गीत सुने। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत पसंद किया है हमारे इन श्रोता साथियों ने। हमें ईमेल भेजा है मदनपुर से श्रवण कुमार, योगेश और राहुल साहू, कुम्हार गली कोलगांव से पांडु, उषा और प्रतीक्षा चंदन, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र, मोहिनी, कल्पित, गर्व और हिमाक्ष, पांडर कावड़ा से अनिल, उषा, अनुश्री और धनश्री बुरांडे, बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिम्मू, एकम, दमन और अभिजोत, तीव्रता डबरीपारा कोरबा से महेंद्र प्रताप, जया, जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र, मोहन सिंह, सहोद्रीबाई, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई, चंद्रपाल मरावी और लक्ष्मी थदवानी, तुलसी मस्किन, वीना, चैतन्य और मेघा मस्किन आप दिल्ली से, नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे, टिकरापारा बिलासपुर से रवि तिवारी, भरत तिवारी, प्रदीप केवट, शंभुदयाल शर्मा, कृति और सरिता तिवारी। आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की आवाजों में समीर का लिखा, नदीम श्रवण का संगीत बद्ध किया आशिकी फिल्म का ये गीत।

आशिकी फिल्म के इस गीत के साथ ही ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय 7:20 हुए हैं। आइए चलें ग्राम सभा में।

सबो संगवारी मल्ला बैसाखू के जय जोहार। संगवारी हो रेडियो के तीर माजा हा और जेकर नंग रेडियो नहीं है बता था ना आप मन बड़का मोबाइल ही टच वाला उहमा सुन सका था तो उमा जैसे गूगल में जहा AIR बिलासपुर आप मन उमा लिख देहा तहां वो छू देहा तहां शुरू हो जाते एक ठीक ऐप घलो है ओला डाउनलोड करके घलो मैं सुन सका था न्यूज ऑन AIR NEWSON AIR। और संगवारी हो हम देखी कि सबो डहर तो कच्चा कच्चा जनात है अने धरती हर बढ़िया हरियार जाते तो छत्तीसगढ़ में मानसून के आगमन घलो हो गए है। अब बिलासपुर और कई जिला में बने वर्षा हुआ थे कभो अने बूंदाबांदी हुआ थे संगे संग कतको जगह फुहारा पड़ा थे तो कतको जगह बने पानी गिरा थे खेत में हलू हलू पानी भरत जाते अने किसान मन के खुशी के ठिकाना नहीं है। अब आजे कतको संगवारी मन के जिन खेत है न जेमा नांगर चल सकत है और नांगर पहली ले जोत डारे हवा ओमन धान घलो ओमा बोए गए नहीं है न जेमा बनत है ओमा धान बो डालना है और कतको ठीक जेन है खेत है एमा थरहा घलो लईहरा ले हमार देहे के तैयारी कर डालना है संगे संग ज़्यादा पानी भरत हवा तो एमा ध्यान रखना है पानी निकाल के फिर एमा बूता कर सकत है खेती किसानी का न फिर खुशी के संग तो बने हैं और बने रही पानी गिरत हवा अब एक ठीक चिंता घलो हो गए अब चिंता का बात के बैसा तो भैया का ऐसे कहत हो

तो बात यही करत रहा संगी हो बदलत पर्यावरण के बात है ना। अब मौसम पहले जैसा नहीं है, अने भरोसा मंद नहीं रही है। अब कहिया कि मौसम कैसे भरोसेमंद नहीं है, हमने काना ने संगी हो कभो कस के पानी गिरते बेमौसम बारिश हो जाते कही था ना, तो कभो कई कई दिन बरसात घलो नहीं हुआ अने बंद हो जाते। गर्मी के दिन आगे ऐसे घलो लगे लगा थे बीच बीच में, कभो सावन आ गए कभो भादो आ गए, अलग अलग महीना के एहसास होए लगते। अब देखी जिन किसान संगवारी है ना, तो पानी का गोरा रही से, अब जाके पानी गिरी से कतका दिन वसन 15 जून ले पानी आए बर शुरू हो जाए, तो ए असमय बदलत मौसम के असर खेती किसानी में तो पड़ते। बिलासपुर अंचल में भी होवत वर्षा बरसात ले किसान मन खेती के काम में तो भरतराज जात हैं। और धान के नर्सरी घलो तैयार कर डाली है संगी हो है ना, कौन कौन बीज के आप मन उपयोग करिया अपन खेत के जन माटी जांच कराया है, जैसे गर्मी के समय कहत रहे माटी की जांच करावा संगी हो ऐसे कह के। और कृषि महाविद्यालय है ना, कृषि विस्तार अधिकारी इनकर से संपर्क करा कह के, तो माटी जांच कराया हो, एक अनुसार धान की किस्म लगा हा, माटी के अनुसार लगा हा, जिन अनुशंसा करे गए है और बढ़िया हो सके फसल ये धान लगा हा। कतको संगवारी मन हाइब्रिड धान के घलो खेती करते, तो ला देख लिया कि कौन फसल के उत्पादन बढ़िया हो ही। फिर धान लगा समय बात के चेत रखे बर पड़ते कि उन्नत बीज के उपयोग करी संगे संग उपचारित करके लगाई। अने उपचारित करे के कई ठीक विधि है, नून वाला विधि घलो है ना, नमक में उपचारित कर दे जाते। कतको संगवारी मन बावस्टीन है थायरम है, प्रति किलो बीज के हिसाब ले है ना 1 ग्राम दवाई लेथिन और उपचारित करके बढ़िया ओला लगातीन। जब थरहा घलो लगाना है ना, उहुल उपचारित कर दे जाते, ओकर जरील उपचारित कर देहा तो कई प्रकार के बीमारी हमारी नहीं आवे, तना छेदक घलो ले है ना बचत होते। ये सब बात के हमला चेत करना है, संगे संग जिन हरियर खाद है एकर उपयोग करना है ना, जिसे बरसीम है लूसर्न है ना, उहुला चारा बना दे जाते और उच्च चारा के बाद एक अलग खाद घलो बना सका था है ना। तो जिन बाचे रथे डुठवा ओला सरो देवा, और संगे संग जई है मक्का के जिन बाचे रथे तो उहु हर हरियर खाद बन जाते। और हरियर खाद के दाना घलो मिलते कई ठीक किस्म है ना, जैसे ढेंचा के बीजा है ओला ले लावा, ढेंचा के बीजा आप मन लगा देवा और कन्हिया अतका छाती अतका हो जावा तब ओला बढ़िया फतका के वो मथरहा लगा देवा, बढ़िया हो जाते उत्पादन। अब पर्यावरण के जैसे बात करबो ना, पर्यावरण के असर घलो हर देखी है ना मनखे ऊपर पड़त है, संगे संग फसल ऊपर घलो पड़त है, काबर के वही पर्यावरण के कारण पृथ्वी हर टिके हवा। अही मले शुद्ध हवा जम्मो जीव नामा ले मिलते, मनखे ले मिलते है ना, और पेड़ पौधा घलो एक से जियत रहते। कारखाना है वहू मल्ले देखिया कुहिरा जात रथे, तो कई प्रकार के कारण है जिन पर्यावरण प्रदूषित हो जाते। और पर्यावरण का प्रदूषित होए ले रोके बर कई प्रकार के उपाय हमला करे बर पड़ते। सबले बड़का उपाय हम बतातन के रूख राई लगाई, कई जगह देखी एक पेड़ माँ के नाम है ना, यू बूता हुआ थे ए बूता में पेड़ लगाए जाते। तो जगह जगह एक एक पेड़ कोहो आप मन पौधा लगावा जाता है ना, वह बड़का पेड़ बनते वो सुरता घलो रहते कि हाँ एला फलाना सियान मन लगाए, तो अपनो सुरता बर कम से कम लगावा और वो सुरता रही है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाते। संगे संग हमला खेती किसानी में बूता करथन तो मेड़बंदी के काम घलो करना है, और तालाब में वर्षा जल संग्रहण के बूता करना है ना, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है इहुल अपनाना है। रासायनिक खातू के उपयोग ज्यादा हमला नहीं करना है, सरकार घलो कहते संतुलित उपयोग करी, संगे संग जैविक के खेती डहर ज्यादा ध्यान दी, गोबर खातू है नहीं है तो व्यवस्था कर डाली। और कीटनाशक जैसे बनाना है तो जैविक कीटनाशक है एला बना सका था, आनी बानी की विधि आजकल तो मोबाइल में देखिया तो सब पता मिल जाते। और प्रशिक्षण घलो जाके आप मन कृषि महाविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ के डॉक्टर से संपर्क करके

0: सका था। तो बरसात के मौसम में किसान भाई मन ला खेत के पानी निकासी, कीड़ा रोग के फसल में निगरानी और कृषि विभाग के सलाह अनुसार खेती करे के जरूरत पड़ते। सही बेरा में सही निर्णय लेहे ले खेती के नुकसानी कम हो जाते और फिर उत्पादन बढ़िया होते। एकर से किसान समृद्ध होते और छत्तीसगढ़ हर खुशहाल बनते। अब सुनी ये संदेश आला।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: संगी हो, बेरा बाचे है और आप मल्ला सुनावत हन संदेशा। संदेशा मतलब आप मल्ला बताबो फोन इन कार्यक्रम के बारे में। अवैया बृहस्पति और शुक्रवार के जिन फोन इन कार्यक्रम के प्रसारण होते है ना, यही बेरा और कतको कार्यक्रम तो संझौती घलो होते 5 बजे। तो आप मन रेडियो ले जुड़े रह कै बजे होते एला छेद करिया। फोन इन कार्यक्रम बृहस्पति के जिन हो है ना, एकर रिकॉर्डिंग हो ही कब हो ही बृहस्पति के सुबह 10:30 से 11 बजे। और हेलो किसानवाणी के विषय रही जैव नियंत्रक कारकों का खरीफ फसलों में उपयोग और महत्व। एक घाव सुनिया, जैव उर्वरक नियंत्रक कारकों का खरीफ फसलों में उपयोग और महत्व। और 11 से 11:30 के विषय रही जैव उर्वरकों का खरीफ फसलों में उपयोग और महत्व। पहली जैव नियंत्रक के कारक के रही और दूसर रही जैव उर्वरकों का है ना, एकर उपयोग का है महत्व फसल में। और विशेषज्ञ रहीन श्री जयंत साहू, आप हाउ विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के। और आप मन फोन लगा हा, 2 ठीक नंबर बतावा था, 1 ठीक मा नहीं लगत रहा है तो दूसर मा तो लगबे करही संगी हो। तो पहली फोन नंबर है 266-592 जुन्ना वाला नवा है ना, और नवा वाला बता दे थन 3126। फिर एक घर बतावा था जुन्ना वाला नंबर 266-592 और नवा वाला है 3100026। दोनों नंबर ला आप मन लगावा था तो पहली STD कोड बिलासपुर के लगाए पड़ते 0752। एक बार फिर आप मन ये नवा नंबर मा और पुराना नंबर मा लगा हा, फिर लग जाही फोन। और कंझट झन हुआ कोनो प्रकार के है ना, बने नेटवर्क रहे ये बात के ध्यान रखना है। और फोन इन कार्यक्रम घलो हमार शुरू होते जिन बृहस्पति के यानी काली रिकॉर्डिंग करे गए रही से। और विषय है दलहनी तिलहनी फसल मा जल प्रबंधन। तो कैसे करना है जल प्रबंधन, विशेषज्ञ हमारे डॉक्टर दिनेश पांडे वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के। तो आवा चलथन कार्यक्रम मा और कार्यक्रम के संचालन करत हमें राजू भैयामन।
4: दलहनी तिलहनी फसल के गोठ लगोठिया बुन, दलहनी तिलहनी फसल के गोठ लगोठिया बुन। किसान भाई हो, अब आप मनला फोन इन कार्यक्रम सुनवाबो। स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है, जय जोहार, राम राम। आज के हमार फोन इन कार्यक्रम के विषय है दलहनी तिलहनी फसलों में जल प्रबंधन। विशेषज्ञ ग्रुप में आज आए डॉक्टर दिनेश पांडे जी, जन्मन है वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान कृषि महाविद्यालय बिलासपुर में। डॉक्टर दिनेश पांडे जी, आपके हमार फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। झोंका हमार जय जोहार, राम राम ला।
5: राम राम भैया।
4: भारत सरकार हा दलहनी और तिलहनी विकास कार्यक्रम चलाते, निश्चित रूप से हमार किसान भाई मान इस समय खुर्रा बोनी के बूता लत शुरू कर दे। फिर अल्प वर्षा के स्थिति के जहाँ तक बात करबो सर, हमार किसान भाई मान जे दलहनी तिलहनी फसल के बात करबो तो उमा जल प्रबंधन कैसे करे विस्तार ले जानकारी दो।
5: हमार छत्तीसगढ़ में धान हा मुख्य फसल है
4: जी,
5: और धान के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं
4: जी जी जी।
5: धान बहुत अच्छा उत्पादन है, लेकिन हमर छत्तीसगढ़ में जो 3 प्रकार के जमीन है, उच्चहन जमीन, मध्यम और निचली जमीन। तो जो उच्चहन जमीन है
4: जी,
5: ये उच्चहन जमीन है हमार दलहन तिलहन या और अधिक आर्थिक लाभ वाली फसल पर बहुत ही उपयुक्त है। एक जल धारण क्षमता कम होते, धान के फसल ला जल के ज्यादा जरूरत पड़ते
4: जी जी।
5: तो हम ये जो उच्चहन जमीन है जिला हमन भाटा भर्री
4: जी
5: मटासी जो कथन, तो ये जमीन में हमर किसान भाई मल्ला धान के बजाय दलहन तिलहन के फसल लगा के

0: अपन अधिक आर्थिक लाभ और अपन जरूरत के चीज केवल चावल खाए से हमार काम नहीं हो पाए, हमार ला दाल के भी जरूरत है, तेल के भी जरूरत है,
1: सिर्फन कथा
0: तो हमार दाल और तेल के जो आवश्यकता है ये ला हमन ये उच्चहन जमीन ला प्रबंधन करके और अच्छा उत्पादन ले सकत हन।
1: दलहनी फसल के बात करबो सर, तो हमार किसान भाई मन अभी कौन कौन फसल लगा सकत है?
0: बहुत बढ़िया, यदि हमन दलहनी फसल खरीफ बर सोची तो राहेर के दाल सब किसान भाई बहन जानत है, राहेर के फसल है, हमार मूंग है
1: जी,
0: उरीद है,
1: हाँ,
0: है और तो ऐसे दलहन के फसल ला प्रमुख रूप से लगा सकते हैं। इस प्रकार से तिलहनी फसल है
1: जी,
0: जैसे सोयाबीन है,
1: भोरू मूंग है,
0: तिल है, मूंगफली है, मूंगफली है हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा होते और मूंगफली के खेती अच्छा आर्थिक लाभ के साथ किसान भाई मन ये दलहनी फसल उच्चहन जमीन में
1: ले सकते, ले सकते। जिन किसान भाई बहन दलहनी और तिलहनी फसल लगा रहे हैं डॉक्टर दिनेश पांडे जी, उनका जल प्रबंधन के

0: अच्छा होते और मूंगफली के खेती अच्छा आर्थिक लाभ के साथ किसान भाई मन ये दलहनी फसल उच्चहन जमीन में ले सकते, ले सकते।
1: जिन किसान भाई बहन दलहनी और तिलहनी फसल लगा रहे हैं डॉक्टर दिनेश पांडे जी, उनला जल प्रबंधन के बात में का सलाह देना चाहता हूँ आप?
0: बिल्कुल किसान भाई मन, जल प्रबंधन के मतलब होते कि जब जरूरत हो तब हम सिंचाई करी और पानी के अधिकता होए तो जल की निकास करी। तो किसान भाई मन मतलब मोरा ये संदेश है कि अपन खेत के तैयारी ऐसे करें कि जल भराव की स्थिति में हमन पानी ना निकाल सकी और यदि हमन खेत हा सुखत है, पौधा हा पानी के मांग करत है तो उमा बढ़िया सिंचाई कर सकी। ये हिसाब से अपन खेत ला तैयार करो, सिंचाई के उमा व्यवस्था पूरा होए, जल निकास के व्यवस्था पूरा होए, ये दोनों व्यवस्था करे के बाद जो हमार दलहनी फसल है कोई भी फसल मा जल के क्रांति का अवस्था होते। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं, फूल आए के फूल आही वो समय यदि आपके खेत में नमी के कमी है तो फूल झड़ जाही या फूल से पौध नहीं बन पाही। तो जो क्रिटिकल अवस्था होते क्रांतिक अवस्था जैसे कंसा आय के अवस्था है तना थे, तो ये सब अवस्था में हमारे खेत में नमी के कमी मत हो, तो वो क्रांतिक अवस्था ला ध्यान रखते हुए किसान भाई मन दलहन तिलहन के फसल में जल प्रबंधन कर सकते हैं। जल प्रबंधन में सिंचाई के साथ साथ जल निकास ला भी ध्यान देवे। अभी पानी नहीं गिरा थे लेकिन अचानक मानसून अच्छा बारिश हो जाही, जल भराव हो जाही, तो वह हमार दलहनी फसल पर घातक रही,
1: मतलब सड़े गले के खतरा बढ़ जाए,
0: खतरा बढ़ जाए।
1: तो जे कोई किसान भाई शुरू ले दलहनी तिलहनी फसल लगा चुके हुए सर, उनमन अगर अभी अल्प वर्षा की स्थिति है और साधन है पल्लो के तो कावला स्प्रिंकलर या फब्बारा विधि से सिंचाई कर सकते?
0: बहुत बढ़िया रही, जेकर करा स्प्रिंकलर है वो हर यदि हमार बड़े एरिया में लगाए हैं
1: जी
0: 2-4 एकड़ में उमा स्प्रिंकलर लगा देवे और जहाँ पानी के कमी दिखत है या उमा लगत है कि मोर खेत में नमी के कमी है उमा कम पानी के मात्रा में अच्छा सिंचाई के उपयोग कर सकत है और यह लाभकारी सिद्ध हो।
1: कभू कभू कम पानी की स्थिति में फसल मान ला देखे सर तो पीला पीला दिखे लगते है, अनुभवी तो किसान भाई मान ला का कहना चाहता था?
0: कम पानी की स्थिति में नत्रजन के प्रबंधन है एक मुख्य प्रबंधन है। हमन यूरिया डालथन तो हमारा नमी के पर्याप्त मात्रा होना आवश्यक है। यदि नमी के मात्रा नहीं है
1: जी।
0: तो किसान भाई मन थोड़ा सा पर्णीय छिड़काव में जावे,
1: अच्छा
0: 2% यूरिया के जो घोल है ये ना यदि पर्णी छिड़काव करही तो ए मल्ला ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सकत है। इस प्रकार से जैसे दलहनी या तिलहनी फसल है तो एमा डीएपी के छिड़काव कर सकत है, 19-19-19 से एकर छिड़काव कर सकत है। तो पर्णी छिड़काव के अल्प वर्षा की स्थिति में डायरेक्ट यूरिया के डाले के बजाय ज्यादा लाभ किसान भाई मन प्राप्त कर सकते है और यूरिया के मात्रा ला कम कर सकते।
1: जिसे सर हम बोएन अपन दलहन तिलहन फसल ला और पानी पलो दे नोकर संग संग में नींदा घलो जाम जाते सर, हन भाई तो कैसे करे किसान भाई मन?
0: किसान भाई मन मोर बिल्कुल सलाह है, खरपतवार खरपतवार है हमर जो दलहनी तिलहनी है एकर बहुत बड़े शत्रु है
1: जी।
0: ओकर बढ़वाल ला रोक देते, बने बढ़े नहीं देवाए, पानी खाद ला खुदे उपयोग कर लेते, वह ज्यादा उपयोग नहीं कर पाए। तो किसान भाई मन जमन बो डा रहे हैं वो मन तो अब विदाई हाथ से कर सकत है
1: जी।
0: या कोई पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड डाल के कर सकत है
1: जी।
0: जे मन अभी बुआई नहीं करे हैं
1: हाँ।
0: जैसे हमार अरहर

0: भाई मन एक तो अपन घर में रखे हुए बीजा ला उपयोग करते जेकर अंकुरण प्रतिशत कम रहते तो कोशिश करें बीजा के खर्चा ला झंडेरावे और जो प्रमाणित और आधार बीज है एला खरीद के और ओला उपयोग करें। दूसर मोर सलाह है किसान भाई मन दलहन तिलहन के बीजा ला बुए के पहली बीजोपचार जरूर करें।
1: हाँ हाँ।
0: बीजोपचार में जो हमार फफूंद नाशक है ओकर उपयोग कर सकते हैं, कीटनाशक है एकरे प्रकार से चूंकि दलहनी फलहनी फसल मा से हमार नत्रजन स्थिरीकरण के क्षमता रहते राइजोबियम कल्चर के 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बढ़िया बीज ला उपचारित करके और बुआई के मोर सलाह है के लाइन से बुआई करें ताकि हमार जल के भी सदुपयोग हो सके
1: जी,
0: पौधा के बढ़वार अच्छा हो सके और साथ ही साथ खरपतवार के नियंत्रण करे मा हमला आसानी हो।
1: अब बात आए सर दलहनी तिलहन में जल प्रबंधन के बात आते अलग अलग छत्तीसगढ़ में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग माटी है ना भाई, कौन माटी में नमी धारण करे के क्षमता ज्यादा रहते हमारे किसान भाई मतलब बतावा जे मामन बो सके।
0: जैसे हमार भरी जमीन हम जो कथन काला जमीन रहते
1: जी
0: डोरसा कन्हार है
1: हाँ।
0: तो ये जो उच्चहन जमीन है
1: जी
0: जेमा बंस नहीं बने रहे ज्यादा
1: हाँ हाँ हाँ।
0: खुला रहते
1: हाँ।
0: राइस के खेत में मेड़ बने रहते
1: जी जी
0: एमा ज्यादा बड़े बड़े मेड़ नहीं रहे
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो एकल जल धारण क्षमता हर जो हमार ब्लैक भरी जमीन है काला
1: मिट्टी वाला
0: चिकनी मिट्टी है तो एकर मा जल धारण क्षमता ज्यादा रहते बनिस्पत जो भाठा जमीन है
1: जी जी।
0: या जे थोड़ा ललहू डोरसा
1: हाँ,
0: हमन जिला कथन
1: हाँ,
0: ओकर से एमा जल धारण क्षमता ज्यादा होते और एमा जो है
1: जी।
0: हमन दलहनी तिलहनी फसल
1: हाँ,
0: जेकर जल मांग कम होते
1: जी।
0: यदि हमन सिंचित अवस्था में भी लगाबो
1: हाँ,
0: तो 2 से 3 सिंचाई के साधन हो जाए तो हमन भरपूर पैदावार ले सकत हन। तो ऐसे दलहन तिलहन के फसल ला ही उच्चहन जमीन में लगाए।
1: हेलो फोरिन कार्यक्रम ले मैं राजू भैया बोला था, आप कौन बोला था?
2: हाँ राजू भैया मैं जोहित बोला था अविनाश।
1: हाँ जोहित भाई राम राम।
2: राम राम भैया
1: हमारे फोरिन कार्यक्रम में आप उनके स्वागत है।
2: हाँ धन्यवाद भैया।
1: और हमारे विषय है दलहनी तिलहन फसल में जल प्रबंधन ए विषय में जानकारी दे बार डॉक्टर दिनेश पांडे जी मन हवा ले पूछो अपन सवाल ला जोहित भाई।
2: जल प्रबंधन के संबंध में जानकारी लेना रे भैया।
1: हाँ दलहनी तिलहनी के जल प्रबंधन के बारे में।
2: हाँ
1: हाँ तारी मन दलहनी तिलहनी के जल प्रबंधन के बारे का जानकारी ले बतावा तो
2: का भी हम तो पार में नया नया पार में लगा था तिल।
1: हाँ
0: हाँ बहुत बढ़िया चोहित जी आप वन में वन के उपयोग करा था एकर बधाई के पात्र है आप। जल प्रबंधन हाँ, के हाँ। मतलब है सिंचाई की व्यवस्था और जल निकास के व्यवस्था। यदि आप नमी के कमी है यानी आप में नमी बनाए बर पानी पलावा और यदि बरसात ज्यादा हो जाते पानी भर जाते तो पानी ला निकासी के व्यवस्था करा सबो फसल बर। दलहनी तिलहनी फसल में एकर प्रभाव ज्यादा पड़ते लेकिन कोई भी फसल है उमा जल भराव की स्थिति धान ला छोड़ के धान जल मांग वाले फसल है ओला अधिक पानी चाहिए तो वहाँ पानी भरा सकते है बाकी दलहन तिलहन सब्जी वाले फसल में जल भराव की स्थिति नहीं आना चाहिए।
1: आपके पाली क्षेत्र अलगी डांड क्षेत्र में बढ़िया पानी गिरे रहेगा?
2: पानी नहीं कहाँ पानी गिरे भैया बहुत कम गिरे रहेगा।
1: कते कर्म में हम आप मन दलहनी और तिलहनी फसल लगा है जोहित भाई?
2: कम से कम 1 किलो के आसपास भैया दाना है।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ मतलब एक खेत के चारों मुड़ा पूरा घिंच के देवा। तो बीज उपचारित कर रहा आप मन?
2: दुकान वाले बीज है भैया।
1: अच्छा अच्छा अच्छा तो पूछा ना डॉक्टर साहब करा सवाल ला यही विषय में।
2: ठीक ठीक उपचारित कर कुछ बताइए का भैया।
0: हाँ यदि आप दलहन तिलहन के फसल कोई भी बीजा चाहे बाजार से लाना या आप कहीं बीज निगम से लाना या हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के केंद्र
1: तो चाहे कहूँ लावा
0: हाँ। बीजोपचार के मतलब होते हमन बीज के ऊपर में एक फफूंद नाशक के या कोई जैव उर्वरक के या हमन कोई इंसेक्टिसाइड के एक परत तैयार करथन समझा ना एकर से बीज के अंकुरण बीज के सुरक्षा हो जाते बीज जनित रोग नहीं हो पाए तो कोई भी बीज ला हमला उपचारित करके ही लगाना चाहिए। कोशिश करें बीजोपचार के बाद ही बीज के बुआई करें।
1: चलो जोहित भाई अलगी डांड पाली ले अपन फोन लगाया हमारे फोन इन कार्यक्रम में स्नेह मया प्रीत बना के फोन लगाते रहे बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद भैया।
1: सर अल्प वर्षा की स्थिति सबे डर है जिसे मन कोरबा जिला ले फोन करें है। फिर जहाँ तक बात करते जिन किसान भाई मन जेठ के महीना में भूरमूंग लगा डरे हो तिलहनी फसल और सिंचाई के साधन गदगद ले मन पानी यहाँ डाल दिन को हो मन भाई तो भूरमूंग के स्वास्थ्य में का ओकर प्रभाव पड़े?
0: जल भराव की स्थिति है फसल एक तो आप बताए हैं
1: हाँ।
0: पीला

0: जिला पड़ जाते फसल
1: जी जी
0: है, कई जगह पौधा ज्यादा जल की स्थिति में मर भी जाते। तो जल भराव की स्थिति से बचना है, हमला नमीला बनाए रखना है, टी चढ़ाई उमा करना चाहिए
1: जी।
0: तो एकर से कहा होते मूंगफली में जो हमारे पेगिंग होते और नीचे में जाके फली लगते तो मिट्टी भराई कर दे मा हमार पौधा के बढ़वार अच्छा होगी और मूंगफली मा फली के संख्या बढ़ सकत है।
1: हाँ।
0: एकर फायदा ये भी है
1: जी।
0: कि हमार जो मूंगफली मा खरपतवार है वो खरपतवार हर भी नियंत्रित हो जाए
1: जी जी जी।
0: जैसे आप एक दलहनी फसल बता रहा कुलथी
1: जी,
0: जो हमार
1: फिरवा
0: आदिवासी भाई मन के मुख्य दलहनी फसल है, तो यह हमार अगस्त मतलब फर्स्ट सप्ताह अगस्त के
1: और बहुत कम पानी में हो जाते,
0: बहुत कम पानी और ऐसे जमीन जेला वन छोड़ देते
1: जी जी।
0: ऐसे जमीन में भी लगा के हमन हिरवा के खेती कर लेते
1: हैं। हाँ हाँ।
0: तो ए मन के अवधि है 80 से 90 दिन 100 दिन तक ये फसल पक के तैयार हो जाते। एक दो पानी की व्यवस्था हो गए तो मन के बहुत अच्छा पैदावार हमन ले सकते।
1: अच्छा अच्छा। तो जल प्रबंधन के बाद दलहनी तिलहनी फसल में चलत है डॉक्टर साहब, तो हमर किसान भाई मन जिसे पानी गिर ही ओकर बाद मन खातू माटी की व्यवस्था कर सकते का?
0: बिल्कुल सही है, हमार दलहनी तिलहनी के फसल में किसान भाई मन धान ल छोड़ के दूसर फसल में ध्यान कम दे पाते
1: जी।
0: तो मोर ये कहना है धान के साथ साथ दलहनी तिलहनी फसल में भी उर्वरक प्रबंधन खरपतवार प्रबंधन करो
1: जी।
0: हमार जो दलहनी तिलहनी के फसल है उमा नत्रजन के कम मात्रा लगते
1: जी।
0: जैसे अरहर के बात में करो तो अरहर मा 45 से 50 किलो नत्रजन
1: जी,
0: 20 से 25 किलो नत्रजन, 45 से 50 किलो स्फूर और 20 किलो पोटास।
1: रोकना चाहो संगवारी मन के फोन फोन इन कार्यक्रम ले, मैं राजू भैया बोलत हूँ, आप कौन बोलत हो?
2: मैं सुंदर बारा रोहासी ले डगेसा राम बोलत हूँ भैया।
1: डगेसा राम साहू के हमारे फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है, आवाज के हमारे विषय है डगेसर भाई दलहनी तिलहनी फसल में जल प्रबंधन। तो राहेर तिली और दलहनी फसल लगा है आप मन जी?
2: हाँ भैया, राहर तिल बोहन गा।
1: अच्छा, लेवा दिनेश पांडे जी मन हवाए हमारे स्टूडियो में, सीधा उखर तो प्रश्न रखा भैया आप मन।
2: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार जी, राहर बुआई हो गई का?
2: हाँ, राहर तिल बो रहे भैया, देख रहे जल प्रबंधन के बारे में जानकारी जाते हैं भैया।
0: बहुत बढ़िया, और पानी का साधन है आपका नहीं है?
2: हाँ भाई भैया, ऐसे बोर है तो अभी मन में ऐसे है कथन भैया।
0: हाँ, तो मोर वही कहना है कि यदि आपके राहर तिली है बढ़िया जाग गए है।
2: हाँ हाँ भैया,
0: जन अंकुरण ला पहले चेक कर लेवा सब कति घूम के खेत मा।
2: ये मेरे पार मार रहेंगे तो देखा था भैया, कोनो को जगल खोदल के दैसी जा रही आवाज है वह।
0: हाँ, तो यदि हमन बुआई करे हन ओकर बाद एक हल्का पानी दे के जरूरत पड़ते वाला अंकुरण होए बर।
2: हाँ हाँ भैया,
0: पानी भरना नहीं है, केवल एक हल्का सिंचाई, एक दो सेंटीमीटर नमी बन जाए।
2: हाँ हाँ,
0: तो ओकर से 100% जर्मिनेशन हो जाते।
2: हाँ,
0: यदि अंकुरण नहीं हो पाई आप घुमा था खेत में और अच्छा सा देख लेवा तो उमा अभी 10 दिन के अंदर रीसोइंग कर देवा, पुनः बुआई।
2: हाँ हाँ भैया,
0: तो ओकर से पौध संख्या आपके खेत में अच्छा हो जाएगी। और राहेर माँ नत्रजन के कम मात्रा चाहिए, 20 किलो ले ज्यादा हमला नत्रजन नहीं देना है। 20 किलो नत्रजन के मतलब होते लगभग 40 किलो यूरिया
2: जी जी जी।
0: और गोबर खाद डाले रहा का शुरू में?
2: गोबर खाद नहीं डाल भैया, इसी यूरिया डीएपी मतलब डाल के।
0: हाँ, तो अब यूरिया डीएपी के भी हमला कम उपयोग करना है
2: जी,
0: तो एकर बार आप पर्णी छिड़काव भी कर सका था, जैसे एक नैनो यूरिया थे
2: जी जी जी।
0: तो नैनो यूरिया दो बोतल जो है आप यदि पर्णी छिड़काव कर दे हा, तो
2: जी,
0: आपके
2: जी,
0: यूरिया के मात्रा और कम पड़ जाही। ऐसने डीएपी के आते जो लिक्विड फर्टिलाइजर है या 19-19-19 है
2: जी जी,
0: तो पर्णीय छिड़काव हर भी दलहन तिलहन में अच्छा परिणाम देते
2: जी जी।
0: दूसरा अनुरोध वही है, आप खेत लग घूम लेवा और जल भराव की स्थिति नहीं होना है, एला आप इसे ध्यान दिया, पानी अभी गिर ही आगे मा
2: जी जी,
0: तो पानी गिर ही, पानी अब भरत है तो पानी हम निकाल सकी, अतका व्यवस्था आप मन जरूर कर ले।
2: हाँ,
0: स्पेयर में, स्पेयर में जैसे नैनो यूरिया एक बोतल आप लिया ना
2: जी जी जी,
0: तो जैसे एक एकड़ में कै पानी टंकी छीट था आप छिड़काव?
2: 10-12 स्पेयर के हिसाब से।
0: बहुत बढ़िया डगेश्वर जी, आप ला जानकारी है, हम उनके अनुसार 12 से 14 टंकी पानी एक एकड़ में देना चाहिए
2: जी जी।
0: तो हम 12 टंकी एक बोतल जो आपके नैनो यूरिया है
2: जी जी,
0: 12 भाग में बांट लेवा
2: जी जी,
0: और एक एक टंकी में एक एक भाग ला डारा जावा, 12 टंकी एक एकड़ में आप छिड़काव कर देवा
2: जी जी जी,
0: है ना भाई?
2: जी जी जी

0: तो चला बहुत दुरिया रोहासी जिला बलौदा बाजार ले आपन फोन लगा डगेश्वर राम साहू जी और दलहनी तिलहन के बारे में बढ़िया जानकारी ले है। निश्चित रूप ले डॉक्टर साहब मन आप बढ़िया जानकारी दी से इसने माया पित लगा के हमार फोन इन कार्यक्रम में फोन लगाते करते थे आप बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद भैया, धन्यवाद डॉक्टर साहब लगा लो धन्यवाद।
0: सर यहाँ तक बात करते हैं हमारा दलहनी तिलहनी फसल बोए के बाद जिसे अंकुरण की चर्चा चलती से पौधा को एक अंगूर के हो गए है भाई, तो कतेक मात्रा में हमारे किसान भाई मन में जल के प्रबंधन करे।
2: बिल्कुल, यदि हमारे दलहनी तिलहनी फसल पौध के बढ़वार हो चुके हैं, यदि नमी के कमी है
0: जी,
2: हमन अभी शुरू में तो पानी दे है अंकुरण बार
0: जी,
2: अंकुरण बार पानी दे है पौधा है, यदि हमार 25-30 दिन के हो जाते और पानी नहीं गिरा थे तो हल्का एक सिंचाई बिल्कुल देना चाहिए।
0: हाँ हाँ।
2: ताकि पौधा के बढ़वार हो सके
0: और भुया मां नमी बने रहे,
2: नमी बने रहे, पौधा सूखे मत। यदि हमारे नमी के कमी हो जाए, जड़ के विकास अब प्रॉपर नहीं हो पा रही और नमी है कम हो गए तो पौधा सूख के मर सकते है।
0: अच्छा अच्छा,
2: उड़ा बचाना है और नमी ला मेंटेन रखना है, नमी हाँ बरकरार रही तो पौधा और हमर बिल्कुल बढ़वार करी और अच्छा होकर विकास हो सकत है।
0: सर यहाँ तक बात कर वो दलहनी तिलहनी फसल ला बोए के बाद जल के कमी या जल के अधिकता में कोनो किस्म के अने पौधा मन कमजोर हो जाते तो कुछ टॉनिक के छिड़काव हमारे किसान भाई मन कर सकते का सर?
2: हाँ, जैसे जल के कमी हो गए
0: हाँ
2: और पौधा कहूँ सूख गए
0: जी
2: तो उमर तू कुछ टॉनिक डालिया वह पुनः जीवित नहीं हो सके।
0: अच्छा, ये बात का ध्यान
2: रखे, बात है
0: हाँ।
2: यदि हमार पौधा मरे नहीं है
0: हाँ,
2: हल्का पीला पड़े है
0: जी जी,
2: ऐसे अवस्था में
0: हाँ,
2: जो मैं बताए हूँ डीएपी
0: हाँ,
2: के छिड़काव पड़नी छिड़काव
0: जैसे गुल्लाराम साहू जी मन कतरी है नैनो यूरिया के
2: छिड़काव, नैनो यूरिया
0: जी जी
2: 19-19-19 या कुछ नहीं है तो 2% यूरिया के घोल एकर पड़नी छिड़काव करे से जो पीलापन है जल भराव की स्थिति में सबले पहली पौधा हा पीला पड़ते।
0: अच्छा सर, कतको जी किसान भाई मन दलहनी तिलहनी के व्यवसायिक खेती करते बड़े रकबा में करते, उमन जल प्रबंधन कैसे करे?
2: यदि बड़े रकबा में करते हैं
0: हाँ,
2: कम पानी में हमारा ज्यादा और अच्छा उत्पादन लेना है
0: जी, जी।
2: तो स्प्रिंकलर में जा सकते हैं
0: हाँ, हाँ।
2: स्प्रिंकलर के उपयोग कर ही तो कम पानी में अधिक से अधिक पैदावार बढ़िया बढ़वार के साथ किसान भाई मन ले सकते हैं।
0: पाछू बार सर हम आपके कृषि विद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र हम घूमे गए रहे तो देखे वहाँ टपक सिंचाई के माध्यम ले घलो राहर के खेती करते बड़े बड़े भोगार है पौधा थे, एक राज का है बताओ आप?
2: एक्चुअल अरहर के खेती जो है
0: जी जी,
2: खरीफ और रवि दोनों में हाँ, किए जा सकते हैं
0: जी जी,
2: तो राहर के जो रवि के फसल है
0: जी,
2: जला हम रवि में रह रहे
0: हाँ, हाँ,
2: हाँ। यदि हम ड्रिप के उपयोग करबो
0: जी,
2: तो एकर से एकर तना बड़ा मजबूत होते
0: हाँ, हाँ, हाँ।
2: बढ़िया कंसा फेंकते
0: जाते
2: उमा फली के संख्या ज्यादा ही और दाना हा पोठा ही और दाना हा वजन कर ही तो कर उत्पादन अच्छा ही। तो यदि हम ड्रिप करके राहेर ला लगाबो, ड्रिप टपक सिंचाई के उपयोग जो है यह मुख्य रूप से जो हमार हार्टिकल्चर उद्यानिकी के पौधा रहते एमन पर ज्यादा उपयोग थे, लेकिन एकर हमार पानी के औसत उपयोग करना है हमार राहेर और अन्य फसल में भी टपक सिंचाई के उपयोग कर सकते,
0: मतलब एक बूंद पानी और अधिक उत्पादन
2: हाँ।
0: जिन हमारे प्रधानमंत्री जी मन के सोच
2: हाँ, वन ड्रॉप मोर ड्रॉप
0: ये मैं दिशा में बढ़ सकता
2: बढ़ सकता
0: था भाई। और फिर अभी बहुत बढ़िया समय है हमारे किसान भाई मन ला दलहनी तिलहनी फसल ला लगाए बर जल प्रबंधन के गोटा तो गोठी आते छन डॉक्टर साहब, बीजा के उपचार कैसे करा हमारे किसान भाई मन बोए के पहले?
2: कोई भी बीज किसान भाई मन लावा थे तो बीजोपचार करना बहुत आवश्यक है
0: जी,
2: एकर बर हो जाते ताकि हमार जो बीज जनित रोग है
0: जी जी,
2: उकर संभावना खत्म हो जाए। तो एकर बा मुख्य रूप से तीन प्रकार के हमन बीजोपचार कर सकत हन
0: जी,
2: पहला है फफूंदनाशक कार्बेंडाजाइन
0: जी,
2: दूसरा है कीटनाशक
0: जी
2: जेमा इमिडाक्लोरपीड है
0: हाँ हाँ।
2: 1.5 ml प्रति केजी सीड, और तीसरा बायो फर्टिलाइजर
0: जी
2: जेमा हमार जो राइजोबियम है एजोटोबैक्टर है
0: जी जी,
2: ये बायो फर्टिलाइजर के उपयोग करके हमन बीजोपचार करके यदि हमन उपचारित बीज लबोबो तो एकर से अंकुरण भी अच्छा ही और बीज जनित रोग से हमन निजात पा सकत हन
0: जी जी। चला बहुत बढ़िया बढ़िया बात ला हमर फोन इन कार्यक्रम के माध्यम ले दुरिया दुरिया ले हमारे श्रोता संगवारी मन किसान संगवारी मन फोन करें डॉक्टर साहब आप मन छत्तीसगढ़ी भाखा में बढ़िया जानकारी दे है। डॉक्टर दिनेश पांडे जी आज हमारे बीच में आके हमारे किसान भाई मन दलहनी तिलहनी फसल में जल प्रबंधन के बारे में विस्तार ले जानकारी दे है, आप बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, राम राम।
2: जय जोहार, राम राम।

0: किसान भाई मन ला
1: और एक संग आज के फोन इन कार्यक्रम सिरा थे। ये कार्यक्रम ला आप तक पहुंचाए मा तकनीकी सहयोगी से सिल्वेरियस लकड़ा के और अवैया बृहस्पत के ठीक 10:30 बजे ले 11:30 बजे के बीच आप मन फोन लगा बर झनिझ भुला हो झनिझ भुला हो। हमार फोन नंबर है 3100026। ओकर पहले आप मन बिलासपुर के स्टडी कोड 07752 इला लगा बर झनिझ भुला हो। और एक संग आज के फोन इन कार्यक्रम ले राजू भियाला दोविदा जय जोहार राम राम।
2: संगी हो ए तो रही से आप मन के फोन इन कार्यक्रम और फोन इन कार्यक्रम के संचालन करीन राजू भैया मन। दलहनी तिलहनी फसल में जल प्रबंधन डॉक्टर दिनेश पांडे वरिष्ठ वैज्ञानिक रहीन सस्य विज्ञान कृषि महाविद्यालय बिलासपुर। अब पानी उनी तो बढ़िया गिरत है है ना। अरपा घलो हलू हलू भरत चले जाही तो सुनत हन ममता चंद्राकर और संगवारी मन के गाए ए गीत ला।

संगी हो आज बिलासपुर के न्यूनतम तापमान रही से 26 डिग्री सेल्सियस और बिलासपुर के अधिकतम तापमान हुई से 32 डिग्री सेल्सियस। खेती किसानी के बूता बढ़िया रिकम के आप मन करत रही हा। मौसम आधारित खेती हमन ला करना है और एक गीत आप मन सुना था, एक गीत ला सुनाई ममता चंद्राकर और संगवारी मन ए राज्य गीत है और एक संग सिरा थे आज के एक ग्राम।

ग्राम सभा, ये कार्यक्रम अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। पेश है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज कलाकार हैं अनुराग शर्मा। आइए सुने उन्हीं के स्वरों में ये रचना।

सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। सुगम संगीत में आज कलाकार हैं अनुराग शर्मा। आइए सुने उन्हीं के स्वर में कार्यक्रम का अगला गीत।

सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। सुगम संगीत में आज कलाकार हैं अनुराग शर्मा।

अनुराग शर्मा की गाए इस नज्म के साथ ही सुगम संगीत समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है कार्यक्रम रजनीगंधा।

रजनीगंधा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज का रजनीगंधा आरंभ करते हैं इन पंक्तियों से। फिर दिन ढल गया और रात आ गई, फिर दिन ढल गया और रात आ गई, तन्हाई में बैठने की बात आ गई, अभी बैठे ही थे तारों की पनाह में, अभी बैठे ही थे तारों की पनाह में, चांद को देखा तो आपकी याद आ गई।

उनका वादा है कि वो लौट आएंगे, उनका वादा है कि वो लौट आएंगे, इसी उम्मीद पर हम जिए जाएंगे, ये इंतजार भी हमें उन्हीं की तरह प्यारा है, कर रहे थे, कर रहे हैं और किए जाएंगे।

नहीं कहते, किस्मत से मिलते हैं दोस्त जिंदगी में, दोस्ती को कभी इत्तेफाक नहीं कहते।

ये दोस्ती के रिश्ते अजीब होते हैं, ये दोस्ती के रिश्ते अजीब होते हैं, सबके अपने अपने नसीब होते हैं। होते हैं जो निगाहों से दूर, वही अक्सर दिल के करीब होते हैं।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: कभी इनका हुआ हूं मैं, कभी उनका हुआ हूं मैं। कभी इनका हुआ हूं मैं, कभी उनका हुआ हूं मैं। खुद के लिए कोशिश नहीं की, पर सबका हुआ हूं मैं। मेरी हस्ती बहुत छोटी, मेरा रुतबा नहीं कुछ भी, लेकिन डूबने के लिए सदा तिनका हुआ हूं मैं।

0: यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। समाचार संध्या और अंग्रेजी में समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
2: India's position on the Indus Waters Treaty.
3: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
1: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
2: India's development assistance.
3: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
1: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
4: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है।

0: इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहाँ संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
1: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
3: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

0: और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। IMD के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। IMD ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए 2 संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा सिंधु जल संधि अभी भी

स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है मेरे हुजूर।

कार्यक्रम का अगला गीत है महेंद्र कपूर की आवाज में, गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, धुन है रवि की, फिल्म का नाम है हमराज।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है लाल पत्थर।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: यह हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

0: स्पेशल प्रोग्राम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने जानी राजकुमार पर।
1: दिल गया रौनके है।

0: गए।
1: राजकुमार यानी कुलभूषण पंडित। राजकुमार फिल्मों में आने से पहले मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर थे। उस जमाने में ये ओहदा अपनी आन बान के साथ सुसज्जित करने के बाद उसी चाल से वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। अपनी अनोखी अदाकारी और खास शैली के डायलॉग डिलीवरी से अपना एक मुकाम बनाया और उसे जिस बुलंदी पर पहुंचाया उसे छुपाना फिर किसी और की बस की बात नहीं रही। शुरुआत तो कोई धमाकेदार नहीं हुई मगर रंगीली में उन्हें पहला मेजर ब्रेक मिला। वर्ष था 1952। उनकी नायिका थी रेहाना। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं मर्यादा फिल्म का ये गाना जो बनी थी 1971 में।
0: कहते हैं हर दयार में आती है फिर बहार, खिलते हैं फूल भी वहां दौरे खिजां के बाद।

राजकुमार एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने हर भूमिका को सजीव कर दिया है, वो फिर मदर इंडिया का मजबूर किसान हो या दिल एक मंदिर का कैंसर ग्रसित मरीज हो। जिस भूमिका को कुछ भी स्कोप नहीं होता, उसमें भी वो अपनी अदाकारी व लाजवाब संवादों की अदायगी से जैसे रंग भर देते।

राजकुमार देखने में एक साधारण व्यक्तित्व के मालिक थे। न हीरो जैसा रंग रूप था उनका, पर फिर भी अपनी बेमिसाल अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसे पाने में हर कोई सफल नहीं होता। फूल बने अंगारे इस फिल्म में वो फौजी बने हैं। इस फिल्म के गाने भी काफी पॉपुलर हुए हैं और उन्हें पर्दे पर गाया है राजकुमार ने। गाने का रोमानी अंदाज और राजकुमार की पुरकैफ अदायगी से जैसे चार चांद लग गए हैं।

1959 में उनकी तीन फिल्में आई थीं, उजाला, अर्धांगनी और शरारत। और भी कई फिल्में आती रही थीं, जैसे 1960 में दिल अपना और प्रीत पराई, दिल एक मंदिर और काजल।

0: राजकुमार अपने असली रंग में आए 1965 में बीआर फिल्म्स की प्रस्तुति मल्टी स्टारर फिल्म वक्त में। निर्देशक थे यश चोपड़ा। वास्तव में इसी फिल्म से लोगों को उनकी अनोखी संवाद अदायगी के दर्शन हुए।
1: माल आखिर खरीदार के पास ही जाता है चिनॉय सेठ।
2: माल क्या लाए?
1: आज फिर अपने आप को बेचने आया हूं।
2: ओ, कीमत?
1: चिनॉय सेठ रवि मेरा भाई है।
2: तुम्हारा भाई?
1: सगा भाई।
2: ये रात कब मालूम हुआ तुम?
1: मंगनी से एक दिन पहले। उस रात जब मैं गुस्से में रवि की जान लेने की नियत से गया था, और आज वो सब खुशियां लुट गईं। मीना और रवि की मंगनी टूट गई। रवि घर छोड़कर चला गया। मित्तल रवि के बाप का नाम जानना चाहता है, और वो नाम सिर्फ मैं बता सकता हूं।
2: फिर बताते क्यों नहीं?
1: इसलिए कि मेरा एक माजी है, और वो माजी सिर्फ एक आदमी जानता है।
2: और वो आदमी मैं।
1: हाँ, सौदा ये है चिनॉय सेठ कि मैं अपनी आत्मा आपके हाथ बेचता हूं। जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा। जो कहेंगे आप वही करूंगा। और आप अपनी जबान बंद रखेंगे ताकि मेरे गुनाहों का साया रवि के आने वाली जिंदगी पर न पड़े।

बीआर फिल्म्स के साथ उनका रिश्ता इस प्रोडक्शंस की अगली फिल्म हमराज में भी रहा, जो आई थी 1967 में। इस फिल्म का उन पर फिल्माया गया ये गाना आज भी उतना ही पॉपुलर है।

पर आधारित फिल्म नीलकमल में एक पेचीदा रोल उन्हें मिला। उस रोल को भी उन्होंने अपनी अद्भुत अभिनय क्षमता से ऐसा साकार किया कि बयान करना मुश्किल।

1970 में आई फिल्म हीर रांझा अपने तरह की एक अद्भुत फिल्म है, जिसका हर किरदार डायलॉग पोएट्री के रूप में बोलता है। फिर भी कहीं पर भी नाटकीयता नजर नहीं आती। ये चेतन आनंद के निर्देशन का तो कमाल था ही, पर मेन रोल कर रहे फिल्म के रांझा यानी राजकुमार की एक्टिंग का भी लोहा हर एक को मानना ही पड़ा है।

1972 में फतेहपुर शीखरी के बैकग्राउंड पर एक ऐतिहासिक लगने वाली फिल्म बनी थी लाल पत्थर। वो भी एक जीता जागता नमूना है राजकुमार की

इसी साल यानी 1972 में रिलीज हुई थी कमाल अमरोही की यादगार फिल्म पाकीजा। हर दृष्टि से संपन्न ये फिल्म भी एक दस्तावेज है। कमाल अमरोही के कमाल के डायलॉग राजकुमार ने बाकमाल तरीके से कहे हैं कि भुलाए नहीं बनते। आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे।

0: भारतीय हवाबाजों पर चेतन आनंद ने एक फिल्म बनाई थी हिंदुस्तान की कसम। इसमें राजकुमार अपने जख्मी साथी जवान को देखकर यह ऐलान फरमाते हैं, इस जवान की कसम, जवाब देने आऊंगा हिंदुस्तान की कसम।
1: हर तरफ अब

राजकुमार एक रहमदिल मगर मुंहफट अक्खड़ मिजाज अव्वल दर्जे के फनकार थे जो पब्लिसिटी से हमेशा दूर रहे। फिल्मी आडंबर उन्हें नहीं सुहाता था। इतनी

0: इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का।

0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है।
0: तो सुनिए हर रोज रात 9:30 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। जब कभी अनमनी सी होकर शाम दिन के आंचल को झटक देती है, खुद को समेट लेती है अपने खेमे में, तो क्षितिज गुनगुना कर उसे मनाता है। कोई दिलकश सा नगमा चुनकर उसके उदास मन को गुदगुदाता है।

दिल का खोना कभी आसान नहीं होता। उसकी धड़कनें बता देती हैं वो छिपा है कहाँ। हर लम्हा समंदर की लहरों की तरह उठती गिरती है, जैसे आवाज लगाती हैं, कभी देखो तो यहाँ। इन्हीं लहरों की रवानी में गूंज उठता है दिल को चुराता हुआ कोई मीठा नगमा।

कैसे बताए कि चंद अल्फाजों से एक गुलशन किस तरह खिल उठता है, उम्मीदों का दरख्त कैसे झूम उठता है, किस तरह उस पर फूलों की तरह दुनिया के तमाम हसी रंग सज जाते हैं, और कैसे उसकी डालों पर बैठे ख्वाबों के पंछी सरगोशियां करते हैं, गुनगुनाते हैं।

रात जब चांद अपनी ही धुन में कुछ बुझा बुझा सा हो, धुंधलाया आसमान शांत झील सा लगता हो, सितारे तैरने लगते हैं यूं जैसे बत्तखों के झुंड, और कभी कश्तियों का रूप धर लेते हैं। इन्हीं कश्तियों पर जब बैठने को मचलता है दिल, तो चांद की बेदिली खुद ब खुद मिट जाती है। भीनी भीनी चांदनी के संग वो छेड़ देता है कोई अफसाना दिलकश सा।

हर रोज कुछ ऐसा ही होता है, दिन कुछ दिल फरेब नगमे कलम बंद करता है और फिर बड़े जतन से उन्हें वक्त के आंचल में संजो देता है। देर रात की छाया में हर रोज ये सुरीले गीत जाग जाते हैं। दिन की पेशानी पर रखते हैं मीठा सा बोसा और पलकों पर सुकून सजा जाते हैं।

0: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजे हैं। कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह।

0: भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।